कितना सुंदर संदेश है सुबह की पहली किरण में, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह का उजाला अपना रास्ता बना ही लेता है। उसी तरह जीवन में निराशा, असफलता या कठिन समय हमेशा नहीं रहता, समय बदलता है और परिस्थितियां भी बदलती है।

0: नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते।
1: और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि अंधेरों से घबराकर सफर छोड़ा नहीं करते, उम्मीदों के दिए जलाकर रास्ते खोजा करते हैं। हर सुबह यही पैगाम लेकर आती है, जो बीत गया उसे भूलो, नई शुरुआत तुम्हें बुलाती है। जल्द मुलाकात होगी, आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, सुप्रभात। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 15 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 33 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है।

0: वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 123 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या के बिना मनुष्य धन नहीं कमा सकता, धन के बिना व्यक्ति के मित्र नहीं होते और मित्र के बिना जीवन में सुख नहीं मिल सकता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान भाग 342 सुनिएगा। 6:45 सुबह और शाम संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला राग समय चक्र भाग 2। कलाकार हैं गायिका मंजरी आलेगांवकर, प्रस्तुति मनीषा जैन की। 7:00 भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के 8:15 पर त्रिवेणी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर पर, आलेख और प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10:00 पिटारा में आज के मेहमान फिल्म लेखक निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान की। 11:00 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1:00 सुनिए सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 2:30 पर सदाबहार नगमे, सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली। 3:00 से सुनिएगा कहानी पद्मश्री की, बीरूबाला रंभा, मुझे कुछ कहना है, ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां, उपयोगी टिप्स, घरेलू नुस्खे रखेंगे सुंदर त्वचा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। शाम 4:00 हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5:00 छाया गीत। 5:30 पर शाम तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। 7:45 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम में सुनेगा अभिनेत्री एवं लेखिका असीमा भट्ट से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 8:00 में रात 8:00 सुनिए नाटिका बड़े दिनों के बाद, अजहर अफसर लेखन और निर्देशन है। 9:00 आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। 10:00 छाएगी, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग। आपको फिर याद दिला दें हवा महल में रात 8:00 सुनिए नाटिका बड़े दिनों बाद, लेखक और निर्देशक हैं अजहर अफसर। 10:00 प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 342। आज आप सुनेंगे लंका कांड।

युद्ध में जांबवान के पद प्रहार से मूर्छित होकर रावण धरती पर आ गिरता है। रात हो गई देख सारथी उसे रथ में डालकर युद्ध स्थल से दूर ले जाकर उसकी मूर्छा दूर करने के उपाय करता है। भयभीत राक्षस वहां आतंकित खड़े हैं। त्रिजटा अशोक वाटिका में सीता को युद्ध की गति का विवरण सुनाती है। वाणों से कटने के बाद भी रावण के सिर और भुजाएं बढ़ने की बात सुनकर सीता उदास हो जाती हैं और माता के समान स्नेह देने वाली त्रिजटा से पूछती हैं कि किस प्रकार रावण का वध हो पाएगा। त्रिजटा कहती हैं कि हृदय में बाण लगने से वो मर सकता है, किंतु श्री रघुनाथ उसके हृदय को लक्ष्य इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहां उसने तुम्हारी छवि बिठा रखी है, लेकिन बार बार सिर कटने से उसका ध्यान तुम्हारी ओर से हट जाएगा और तब श्री राम वहां बाण मारेंगे। उधर मूर्छा टूटने पर रावण युद्ध भूमि से अपने को दूर पाकर सारथी पर क्रुद्ध होकर उसे धिक्कारने लगता है।

0: राग समय चक्र। नमस्कार श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार जानी मानी शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। लीजिए आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विदुषी मंजरी आलेगांवकर जी।
2: नमस्ते।
1: मंजरी जी, कल की कड़ी में जयपुर घराने की विशेषता को उजागर करने वाली बंदिश हमने सुनी जो सावनी राग में थी
2: जी।
1: आज समय चक्र में पहला प्रहर है दिन का, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है
2: जी।
1: उस समय कौन कौन से राग गाए जाते हैं और इसमें किस राग की विशेष रूप से चर्चा हमें करनी है, उस राग के चलन के बारे में, आरोह अवरोह के बारे में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, बताती हूँ। यह राग समय चक्र हम सुबह के 4 बजे से यानी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करते हैं
1: जी।
2: सुबह 4 बजे से 7 बजे तक गाए बजाए जाने वाले रागों को प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। वो सुबह शुरू होने का पहला जो समय होता है उसको संधि प्रकाश कहते हैं। इसमें शुद्ध मध्यम सागमा, यह शुद्ध मध्यम है
1: जी।
2: यह शुद्ध मध्यम का ज्यादा महत्व है और इस समय भैरव, कालिंगड़ा, जोगिया, ललित, रामकली, विभास और भैरव के सब प्रकार गाए जाते हैं। राग भैरव एक प्रमुख रागांग राग है, यानी भैरव के अनेक प्रकार होते हैं। नट भैरव है, प्रभात भैरव है, बैरागी भैरव है, शिवमत भैरव, बहुत सारे प्रकार है, इसीलिए उसको रागांग राग कहा है। थाट पद्धति के अनुसार यानी 10 थाट होते हैं
1: जी।
2: व्यंकट मखी जी ने 72 थाट मेल करता है वो, और भातखंडे जी ने 10 थाट बताए हैं। वो 10 थाट के पद्धति के अनुसार यह भैरव थाट का राग है। ये थाट भी भैरव है और राग भी भैरव है, इसीलिए उसको आश्रय राग भी कहते हैं। और राग रागिनी पद्धति के अनुसार 6 रागों में से एक पुरुष राग है। इसमें ऋषभ धैवत कोमल लगते हैं। सा रे रे रे, ये कोमल ऋषभ है। हाँ, सा रे रे, ये शुद्ध ऋषभ होता है। और ये ऋषभ और धैवत वादी संवादी है और आंदोलित है। आंदोलित यानी

0: यानी धारा ये आंदोलन है। मैंने ऐसा नहीं बताया, सारे धा ये खड़ा सुर है।
1: अच्छा,
0: धारा इसमें गोलाई है, इसीलिए उसको आंदोलित सुर कहते हैं। ये ऋषभ और धैवत वादी संवादी है और दोनों आंदोलित है। ये उत्तरांग प्रधान राग है, यानी पंचम के

0: ये पंचम के बाद आने वाले सुर है
1: हाँ हाँ हाँ
0: वो उत्तरांग होते हैं। राग का उत्तरांग पूर्वांग सारे गामा ये पूर्वांग है, पारानी सा ये उत्तरांग है। ये उत्तरांग राग है, उत्तरांग प्रधान है, लेकिन इस राग पूर्वांग उत्तरांग यानी तीनों सप्तकों में इसका विस्तार मंद्र मध्य और तार तीनों सप्तकों में किया जाता है। और भैरव राग के लिए

0: तानसेन जी कहते हैं, कहे मियाँ तानसेन सुनो शाह अकबर, सब रागन में प्रथम राग भैरव। उसको प्रथम बताया है, पहला राग बताया है। भैरव का स्वरूप वैराग्य, भक्ति एवं शांत रसों को व्यक्त करने में समर्थ जरूर है। इस भैरव राग में मैं एक पारंपरिक सुनाने वाली हूँ
1: जी,
0: जो तीन ताल में निबद्ध है। भैरव राग का आरोह अवरोह है

0: क्या बात है मंजरी जी, ये बंदिश जो आपने सुनाई,
1: हाँ।
0: इसको सुनकर के याद आ रहा है राग परछाई के बारे में चर्चा हुई थी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: इसी राग की परछाई कलिंगड़ा में देखने को मिलती है,
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
1: कलिंगड़ा भैरव के सम प्राकृतिक राग है
0: जी।
1: यह भक्ति रस प्रधान भैरव थाट का सुपरिचित राग है। भैरव के ही सुर इसमें लगते हैं, लेकिन उसका चलन अलग होता है। वो सीधा सरल है और भैरव जैसा वो गंभीर नहीं, थोड़ा चंचल है। तो हम कालिंगड़ा को भैरव राग की परछाई कहेंगे। यहाँ रागों के बारे में परछाई शब्द का प्रयोग किया है। हर राग का अपना एक ढंग होता है, स्वरूप होता है
0: जी।
1: और जैसे ही जैसे राग गाया जाता है तो आपके दिल में उसकी तस्वीर उभर आती है। उस राग की छवि हमारे मन में बन जाती है और यही छवि जब अलग रूप से किसी दूसरे राग में भी नजर आने लगती है तो हम उसे उस राग की परछाई कह सकते हैं। तो इसमें कालिंगड़ा राग भैरव राग की परछाई है।
0: जी जी।
1: तो कालिंगड़ा राग का चलन कैसा है देखिए, वो ही सुर है भैरव के सब,
0: हाँ। हाँ?
1: लेकिन चलन अलग है। सा रे गा रे सा, वो आंदोलित नहीं है ऋषभ दैवत, बिल्कुल आंदोलित नहीं।

0: कलिंग देश में गाया जाने वाला भैरव यानी कलिंगड़ा, और आज भी लोक समाज में प्रातःकालीन भजन गायन में इस राग का अधिकतर प्रयोग होता है।
1: क्या बात है मंजरी जी, आपने कहा कि भैरव के सुरों को सुनकर के जो तस्वीर मन में उभरती है, ऐसा ही हुआ है कि एक गाना दिल में उभर रहा है और सुनाई दे रहा है। ये दिव्य स्वर लता जी का है और खूबसूरत रचना शैलेंद्र जी की, संगीतकार सलील चौधरी। जागते रहो फिल्म का ये गीत राग भैरव पर आधारित है, अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।
0: जरूर जरूर।

0: राग समय चक्र। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबले पर इनका साथ दिया बालकृष्ण अय्यर ने और हारमोनियम पर शुभांगी भावसार ने। तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत सरिता FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की मोक्षदायिनी धरा पर श्री महाकालेश्वर का दरबार सदैव दिव्य ऊर्जा से स्पंदित रहता है। मंदिर में गूंजता डमरू का नाद और वेद मंत्रों का पाठ हृदय को परम शांति देते हैं। कालों के काल की शरण में आकर आत्मा तृप्त हो जाती है। आइए शिव की इसी महिमा का स्मरण करते हुए सुनते हैं ये मधुर भक्ति रचना साधु शरण तिवारी के स्वर में।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज का महाकाल वंदन अब यहीं संपन्न होता है। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। सुबह 8:30 पर आज आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। नौ बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चित्रकथा। बॉलीवुड बीट्स नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 9:30 पर। श्रोताओं, सुबह 10 से होगा विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें आप हमें फोन लगाकर अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकेंगे। हमारा फोन नंबर है 07344051 और हमारा आज का विषय है जीवन की पाठशाला। आपके अंदर का विद्यार्थी आज क्या सीखना चाहता है। सुबह 11 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग। यादों की महफिल आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 पर और दोपहर 1 सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 सुनिए महिला श्रोताओं के लिए विशेष कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 पिटारा में आज सुनिए हेलो फरमाइश। युववाणी युवा श्रोताओं की पसंद का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र की सांध्यकालीन सभा के आरंभ में शाम 5। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम फिल्मी बातें। शाम 6 समय होता है भक्ति संगीत के कार्यक्रम भजन संध्या का। पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम उज्जैन डायरी। शाम 7:21 पर सुनिए मालवी समाचार। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुन सकेंगे शाम 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही हम आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा रात 8। आठ बजकर 35 पर सुनिए फिल्म संगीत। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात 9:30 पर और प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10। रात 11:10 से सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM गोल्ड के कार्यक्रम। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें आज सुबह 10 होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें फोन लगाकर आप अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकेंगे। फोन लगाने के लिए हमारा नंबर है 07344054191। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में 3,350 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एशियन गेम्स के भारतीय खिलाड़ियों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिन के अशोकनगर दौरे पर, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। दिव्यांग पेंशन के नियमों में किया गया बदलाव, अब 40% दिव्यांगता वाले भी होंगे पात्र। न्यूनतम उम्र की सीमा भी खत्म। और प्रदेश के 15,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ, 45 साल या उससे अधिक उम्र वालों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड से छूट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में करीब 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें लेह एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, 298 किलोमीटर लंबी निम्मू पुदुम दारचा सड़क जल विद्युत परियोजना और ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। वहीं दोपहर शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी यहां खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में हुए एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के लिए आभार जताया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना से देशभर के 3,20,00,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों की पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव का भी स्वागत किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बताया था कि अब 40% दिव्यांगता वाले लोग भी पेंशन के पात्र होंगे।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27,00,000 दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मंदिरों में दर्शन, जनसंपर्क, विभिन्न बैठकों और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री सिंधिया कल मुंगावली में दिशा समिति की बैठक और हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ वितरित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 17 अक्टूबर को अशोकनगर में नए डाकघर का उद्घाटन करने के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा वे शासकीय विधि महाविद्यालय में कौशल विकास केंद्र की नींव भी रखेंगे। रीवा के लक्ष्मणबाग परिसर में कल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पुल से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस पुल से लक्ष्मणबाग की नदी के दोनों ओर की जमीनें और रामानुज संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर आपस में जुड़ सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल बनने से संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लक्ष्मणबाग पहुंचकर मंत्रोच्चार और गौ सेवा करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि संस्कृत के विकास के लिए यहां पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय का कैंपस शुरू किया गया है और पुराने संस्कृत विद्यालय को भी दोबारा शुरू किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उमरिया जिले के गुरवाही गांव में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी की, जिसके तहत प्रदेश की करीब 1,25,00,000 पात्र महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये प्रति महिला के हिसाब से राशि अंतरित की गई। इसके साथ ही पात्र लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस रिफिल के लिए अनुदान राशि

0: भी दी गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर यादव ने आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही।
1: वो श्रीनावा टनल जो हमारे पूरे इस विंध्य के क्षेत्र में बदलाव लाएगी, हमारी सरकार ने आगे बढ़ करके उस टनल का लाभ भी यहाँ मिलेगा। पर्यटन का क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए आप होम स्टे भी करो, आप अपने मकान में एक दो कमरे बनाना चाहो तो आपको होम स्टे में पंजीयन कराओगे तो 3 लाख रुपया ट्राइबल क्षेत्र में सरकार के माध्यम से देंगे।
0: भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को नया कुलगुरु मिल गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यवसाय प्रबंध संस्थान के प्रोफेसर दीनदयाल बेड़िया को बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु नियुक्त किया गया है। इस संबंध में कल आदेश जारी किया गया। प्रदेश में करीब 15,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए निर्देश जारी कर 45 साल की उम्र पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीपीसीटी स्कोर कार्ड की अनिवार्यता से छूट दी है। वहीं अन्य पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद कंप्यूटर से जुड़ी जरूरी योग्यताएं हासिल करने के लिए अधिकतम 5 साल का समय मिलेगा। ये छूट केवल विभागीय पदोन्नति पर लागू होगी। वहीं सीधी भर्ती में कंप्यूटर योग्यता की शर्त पहले की तरह अनिवार्य रहेगी। प्रदेश में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिसमें करीब 2800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नगरी विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी। इनमें इंदौर की जल प्रदाय और सीवरेज व्यवस्था, उज्जैन में मंदिर क्षेत्र का विकास और रीवा की जल प्रदाय योजना शामिल है। इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों के साथ अनुबंध किए जाएंगे और निवेशकों, स्टार्टअप्स तथा युवाओं को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा। छिंदवाड़ा में आज दोपहर 2 बजे भाजपा की संभागीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और पांडुना जिलों में संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, सेवा संकल्प अभियान और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कमजोर मंडलों और बूथों की पहचान कर संगठन के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी विचार किया जाएगा। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में कल 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सांसद लता वानखेड़े ने सेमरा, गोपालमन, चादौनी, करैया और जयसीनगर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने और मातृ मृत्यु रोकने के लिए कल राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूएनएफपीए के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में सुमन रोडमैप 2030 के तहत सुरक्षित मातृत्व सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश का दौर चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर और चंबल संभाग में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जबकि उज्जैन, सागर और रीवा संभाग के कुछ जिलों में भी बारिश की संभावना है। वहीं आज ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर में बारिश हो सकती है। अब रुख करते हैं क्रिकेट का। वेस्टइंडीज ने हैदराबाद में खेले गए 4th T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 24 रन से हराकर श्रृंखला में 2-2 की बराबरी कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 247 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 223 रन ही बना सकी। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 56 और तिलक वर्मा ने 43 रन बनाए, जबकि वेस्टइंडीज के कीमो पॉल ने 5 विकेट झटके। अब निर्णायक मुकाबला 17 तारीख को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में मद्य निषेध सप्ताह के दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक और प्रेरक गीतों के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। मंदसौर के गांधी सागर जलाशय के बैक क्वार्टर्स पर आज से गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 5वें संस्करण की शुरुआत हो रही है। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर क्षेत्र के खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। सतना जिले के रैगांव में सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने शासकीय सांदीपनी विद्यालय के विद्यार्थियों को पुस्तकें और अध्ययन सामग्री वितरित की। भोपाल के ISBT बस टर्मिनल पर DRI की टीम ने दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एक महिला को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 2 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए। कटनी जिले में फसलों की नरवाई को जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। नियम तोड़ने पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। शाहजहांपुर जिले में किसानों की फसलों को वन्यजीवों से नुकसान से बचाने के लिए काले हिरणों का रेस्क्यू कर उन्हें स्थानांतरित करने का अभियान जारी है। बैतूल जिले के आमला और मुलताई में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 16 अक्टूबर को जनसंवाद शिविर आयोजित किया जाएगा। धार जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए जल संरक्षण, पेयजल प्रबंधन और नहरों के रखरखाव की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एशियन गेम्स के भारतीय खिलाड़ियों से भी करेंगे मुलाकात। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 4 दिन

के अशोकनगर दौरे पर, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। दिव्यांग पेंशन के नियमों में किया गया बदलाव, अब 40% दिव्यांगता वाले भी होंगे पात्र, न्यूनतम उम्र की सीमा भी खत्म। और प्रदेश के 15,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ, 45 साल या उससे अधिक उम्र वालों को CPCT स्कोर कार्ड से मिली छूट। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: नमस्कार, सुप्रभात श्रोताओं। आज इस पावन समय में चारों ओर भक्ति का रंग है। आज शारदीय नवरात्र का पांचवा दिन है जो माँ स्कंदमाता की आराधना को समर्पित है। माँ का ये स्वरूप प्रेम, करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। उनकी उपासना से मन को शांति मिलती है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। आज की ये सुबह एक नई उम्मीद और ताजगी लेकर आई है। सूरज की पहली सुनहरी किरणें और पक्षियों की मीठी आवाज़ हमें ये याद दिलाती है कि हर नया दिन जीवन में कुछ नया करने का अवसर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो कल की चिंताओं को पीछे छोड़कर आज के पलों को पूरे उत्साह के साथ जिए। आइए आज के सुखद सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म देवदास के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मन्ना डे और गीता दत्त ने।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, हर साल 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करना व उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ग्रामीण क्षेत्रों की रीढ़ और कृषि की असली नायिकाएं वास्तव में हमारी ग्रामीण महिलाएं ही हैं। क्या आप जानते हैं कि विकासशील देशों की कुल कृषि श्रम शक्ति का लगभग 43% हिस्सा इन्हीं महिलाओं का है? ये दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक वैश्विक आह्वान है। फसल उत्पादन से लेकर पशुपालन और खाद्य सुरक्षा तक ये महिलाएं हमेशा सबसे आगे रहती हैं। भारत में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे लखपति दीदी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आजीविका सुधार करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। जब एक ग्रामीण महिला आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार, समाज और अंततः पूरा राष्ट्र स्वतः ही प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म लाल पत्थर से ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

श्रोताओं, सुप्रभात। उज्जैन में अब समय है कार्यक्रम के उस भाग का जिसका नाम है समाचार पत्रों से, और इस भाग में हम आपके लिए लेकर आते हैं उज्जैन के समाचार पत्रों से आज की कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबरें। आइए आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं। खेल प्रतिस्पर्धा में उज्जैन की उपलब्धियों को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। खेल विभाग के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय मलखंब प्रतियोगिता में कई पदक जीतकर उल्लास भर दिया है। इसी सकारात्मक प्रदर्शन के आधार पर उज्जैन संभाग ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले लगभग 8 खिलाड़ियों का चयन अब राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए किया गया है। 6 से 10 अक्टूबर तक विदिशा में आयोजित इस प्रतियोगिता में उज्जैन के खिलाड़ियों का ही दबदबा रहा। युवाओं ने व्यक्तिगत और टीम चैंपियनशिप दोनों में पदक हासिल किए हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम में आयोजित अखिल भारतीय मलखंब स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। खेल जगत से जुड़ी एक और सुखद खबर हमारे सामने है। शहर के अक्षत इंटरनेशनल स्कूल में 10वीं जिला जंप रोप प्रतियोगिता का उत्साह के साथ शुभारंभ हो गया है। इस प्रतियोगिता में जिले भर के लगभग 150 खिलाड़ी पूरे जोश से हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा मैदान में साफ दिखाई दे रही है। इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है, साथ ही उन्हें उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए मानसिक रूप से तैयार करना है। रोलर स्केटिंग में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी सूचना है। आज गुरुवार को शहर में जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग स्पर्धा का आयोजन होने जा रहा है। ये प्रतियोगिता सुदामा नगर में जैन मंदिर के पीछे चामुंडा माता चौराहे के पास आयोजित की जा रही है। संस्था द्वारा आयोजित इस स्पर्धा की शुरुआत लगभग सुबह 9:30 से होगी। इस प्रतियोगिता में जिले भर से तकरीबन 100 से अधिक खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। अगली खबर है हमारे किसान भाइयों के लिए। किसानों की उन्नति और सुविधा के लिए शासन निरंतर प्रयासरत है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अब किसान कोल्ड स्टोरेज और निजी नर्सरी की स्थापना के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र किसानों को इसके लिए किसान पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई उपसंचालक उद्यान कार्यालय कोठी से संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर है लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई। इसी दिशा में प्रथम बार पात्र होने वाले मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने का काम अभियान के रूप में किया जा रहा है। नए मतदाता अब फॉर्म 6 भरकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अच्छी बात यह है कि फॉर्म 6 जमा करने के बाद किसी भी अलग घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। शहर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हस्तशिल्प मेले की ओर से खबर आ रही है कि मेला जल्द ही लगने वाला है। इस बार मेला 3 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कालिदास अकादमी परिसर में आयोजित किया जाएगा। मेले में दुकान और स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए जल्द ही लगभग 10 दिन तक लिंक ओपन की जाएगी। इस बार मेले में साउथ और पूर्वोत्तर राज्यों के व्यापारियों तथा शासकीय ब्रांड उत्पादन से जुड़ी इकाइयों को आमंत्रित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगली खबर त्योहार के समय यात्रा करने वालों के लिए है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक अच्छी पहल की है। आगामी त्योहारों के दौरान यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगभग 6 ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। अजमेर बांद्रा मार्ग की ट्रेनों में 18 से 25 अक्टूबर के बीच एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा। इसी तरह जोधपुर इंदौर मार्ग की ट्रेनों में भी 16 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच लगभग 2 स्लीपर और 3 जनरल कोच बढ़ाए जाएंगे। कुछ अन्य ट्रेनों में भी कोच की संख्या बढ़ाई गई है। खेल जगत से हमारे उज्जैन के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर सामने आई है। शहर की अंडर 19 क्रिकेट टीम आगामी 19 अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका के लगभग 10 दिनी दौरे पर जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय दौरे के लिए हमारे शहर के होनहार खिलाड़ी आरुष अग्रवाल को टीम की कमान सौंपी गई है। उनके साथ प्रियम और विराट को भी इस टीम में जगह मिली है। इस विदेशी दौरे में टीम कुल लगभग 6 मैच खेलेगी। ये उपलब्धि स्थानीय खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो श्रोताओं, आज के समाचार पत्रों से बस इतना ही। चलिए माहौल को थोड़ा संगीतमय बनाते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और आमिर बाई कर्नाटकी के स्वर में फिल्म समाधि से ये गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का प्रसारण। ये कार्यक्रम है सुप्रभात उज्जैन और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हर साल 15 अक्टूबर को विश्व श्वेत छड़ी दिवस मनाया जाता है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि दृष्टि बाधित लोगों की स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सम्मान का एक शक्तिशाली प्रतीक है। सफ़ेद छड़ी किसी मजबूरी या लाचारी का संकेत नहीं है, ये दृष्टि बाधितों के लिए दुनिया को अपने कदमों से नापने और पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 1921 में जेम्स बिक्स द्वारा यातायात से बचने के लिए अपनी छड़ी को सफ़ेद रंगने से लेकर आज भारत में अल्ट्रासोनिक सेंसर वाली स्मार्ट केन के वितरण तक इस छड़ी ने एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा तय की है। आइए इस अवसर पर हम एक जिम्मेदार समाज के रूप में ये संकल्प लें कि जब भी सड़क पर कोई सफ़ेद छड़ी थामे व्यक्ति दिखे तो हम रुक कर उन्हें सुरक्षित रास्ता दें। इस जानकारी के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।
2: कैसे समझा बड़ी ना समझ हो

हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में लहराते हैं। कैसे समझाऊं, बड़ी ना समझ हो।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: श्रोताओं, आज भारतीय डाक सप्ताह का अंतिम दिन है, अर्थात समापन दिवस। भारतीय डाक विभाग द्वारा हर साल 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला विश्व डाक सप्ताह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसकी शुरुआत 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस से होती है। ये सप्ताह देश के विशाल डाक नेटवर्क की ऐतिहासिक विरासत, वित्तीय समावेशन में इसकी भूमिका और आधुनिक डिजिटल सेवाओं के विस्तार को आम जनता तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। इस सप्ताह के दौरान डाक सेवा ऐप, डाक मित्र ऐप और आधुनिक एन जेन पोस्ट ऑफिस जैसी तकनीकी पहलों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और डाकघर बचत योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग और बीमा सेवाएं पहुंचाने के विशेष शिविर लगाए जाते हैं। लगभग 1,65,00,000 से अधिक डाकघरों के साथ भारतीय डाक दुनिया की सबसे बड़ी डाक प्रणाली है। आज डाकघर केवल पत्र पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आधार अपडेट, सरकारी पेंशन वितरण और सुकन्या समृद्धि जैसी बचत योजनाओं के जरिए देश के कोने कोने को सशक्त बना रहे हैं। और अब बारी है कार्यक्रम के अगले गीत की। फिल्म वक्त से इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य बनकर चमकने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुण्यतिथि पर आज पूरा राष्ट्र उन्हें नमन करता है। 15 अक्टूबर 1961 को इस भौतिक संसार को विदा कहने वाले निराला जी केवल एक कवि नहीं बल्कि एक सच्चे युग प्रवर्तक थे। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक होने के साथ साथ उन्होंने हिंदी कविता को छंदों के कड़े बंधनों से आज़ाद कर मुक्तक छंद की अनमोल सौगात दी। उनका अपना जीवन भले ही असीमित संघर्षों और दुखों की भट्टी में तपा, लेकिन उनकी लेखनी कभी नहीं झुकी। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और कुकुरमुत्ता जैसी कालजयी रचनाओं ने समाज की कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उनकी कविताओं में जहां एक ओर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की गूंज है, वहीं शोषितों और वंचितों के प्रति अगाध करुणा भी झलकती है। उनकी लिखी ये सरस्वती वंदना तो आप सभी को याद होगी। वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वरदे।
2: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
3: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
4: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
5: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
1: श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन और ये कार्यक्रम है सुप्रभात उज्जैन। मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र रश्मि बजाज। श्रोताओं, आज भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी है, जो पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है। रामेश्वरम की गलियों में अखबार बांटने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का उनका सफर हर भारतीय के लिए अतुलनीय प्रेरणा है। वे केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश का असली भविष्य युवाओं में बसता है। उनका वो प्रेरक वाक्य आज भी दिलों में गूंजता है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। उनके सम्मान में इस दिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज हम उनके सादा जीवन, अथक परिश्रम और उच्च विचारों को अपनाने का संकल्प लें। भारत के इस अनमोल रत्न को शत शत नमन।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: श्रोताओं, आज का सुप्रभात उज्जैन अब यहीं संपन्न होता है। अपनी सखी रश्मि बजाज को कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन से दीजिए अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। FM 102.5 MHz पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं और अब समाचार प्रभात का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: जालिम लोशन,
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जाँच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए

0: मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
2: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
3: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
2: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
4: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ, वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
2: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
5: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर।

0: के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
0: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
2: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत का रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
0: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा आधुनिक भारत के इतिहास के एक ऐसे चरित्र की, जिन्होंने समय की देहरी पर खड़े होकर अपने युग को देखा और आने वाले समय के लिए भाषा, राष्ट्र चेतना और संस्कारों के ऐसे दीप जलाए जिसके उजाले में भारत की आत्मा आलोकित है। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का ताप सहा, जेल यात्राएं की, दूसरी ओर साहित्य की शीतल छाओ में समाज को विचार दिए। उनकी कलम में भारतीयता का स्पंदन है और मातृभाषा उनके लिए केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, अपनी मिट्टी से जुड़ी पहचान थी। भारत के वो महान सपूत थे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास का जन्म 16 अक्टूबर सन 1896 को जबलपुर में हुआ था। ये एक अत्यंत समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार था। उनके दादाजी राजा गोकुलदास महाकौशल और मध्य प्रांत के सबसे धनाढ्य मालगुजार और समाजसेवी थे। ब्रिटिश हुकूमत ने उनके परिवार के जनहितैषी कार्यों और उनके प्रभाव को देखते हुए उन्हें राजा की वंशानुगत उपाधि प्रदान की थी। सेठ गोविंद दास के पिता का नाम सेठ जीवन दास था, जिन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। ऐसे राजसी वातावरण में पलने बढ़ने के बावजूद गोविंद दास जी का रुझान सादगी, अध्यात्म और ज्ञानार्जन की ओर रहा। उनकी आरंभिक शिक्षा किसी औपचारिक विद्यालय में नहीं, बल्कि उनके घर पर ही बड़े विद्वान आचार्यों के सानिध्य में हुई। घर पर ही शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती भाषाओं पर असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिया था। स्वाध्याय की अद्भुत ललक के कारण उन्होंने किशोरावस्था में ही वेद, उपनिषद, महाभारत, पुराण, बौद्ध तथा जैन दर्शन का विशद अध्ययन कर लिया था। साथ ही उन्होंने शेक्सपियर, इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे पश्चिमी साहित्यकारों को भी पढ़ा। जब सेठ गोविंद दास युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब संपूर्ण भारतवर्ष स्वाधीनता आंदोलन की ज्वाला से सुलग रहा था। सन 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया, तब उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता विरासत से प्राप्त सुख सुविधाओं के भोग का था और दूसरा गांधी जी के आह्वान पर स्वाधीनता आंदोलन में कांटों भरी राह पर चलने का। सेठ गोविंद दास ने दूसरा मार्ग चुना।

इस तरह सेठ गोविंद दास भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके परिवार को मिली राजा की उपाधि और सरकार द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं का बहिष्कार किया। सेठ गोविंद दास ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और खादी को जीवन भर के लिए अपना लिया। सन 1921 में जब गांधी जी जबलपुर आए तो सेठ गोविंद दास के इस त्याग और स्वाधीनता के प्रति उनके समर्पण को देखकर वो भाव विभोर हो गए। सन 1923 में जबलपुर से झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ। ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को लेकर आरंभ हुआ था। इसकी शुरुआत 18 मार्च सन 1923 को जबलपुर के टाउन हॉल से हुई। सेठ गोविंद दास ने इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी धन शक्ति और संगठन क्षमता से इसे राष्ट्रव्यापी बनाने में विशेष योगदान दिया। झंडा सत्याग्रह में उनकी भूमिका ऐसी थी कि वो तभी से महाकौशल की जनता के प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर उभरे। सभी ने उन्हें प्रेम से काका साहेब कहकर पुकारना शुरू किया। सन 1929 में सेठ गोविंद दास ने द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ लोकमत नामक राष्ट्रवादी हिंदी समाचार पत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में वो सघन रूप से सक्रिय हो गए। असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने सभी में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने महाकौशल और मध्य प्रांत का कुशल नेतृत्व किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वो बार बार गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 8 साल से अधिक का समय जेल के भीतर काटा। जेल की कठोर यातनाएं, पारिवारिक संपत्ति की कुर्की और बिगड़ते स्वास्थ्य ने भी उनके संकल्प को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वो महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास और सरदार पटेल जैसे नेताओं के निकट संपर्क में रहे। इतना ही नहीं, देश की संसदीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी उनका विशेष योगदान था। मात्र 27 वर्ष की आयु में ही वो केंद्रीय विधानसभा के सदस्य चुने गए, जहां वो लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज नेताओं के साथ ब्रिटिश हुकूमत की जन विरोधी नीतियों को बेनकाब करते रहे। वो भारत की आज़ादी से पहले केंद्रीय असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के निरंतर सदस्य रहे। भारत की आज़ादी के बाद जब भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया तो सेठ गोविंद दास को मध्य प्रांत से इसका सदस्य चुना गया। संविधान सभा के भीतर उन्होंने एक अत्यंत प्रखर और दूरदर्शी नीतिकार की भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, पंचायती राज व्यवस्था, कृषि संरक्षण और भाषाई अस्मिता को शामिल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता के बीच उनकी अपार लोकप्रियता थी। जबलपुर संसदीय क्षेत्र से वो लगातार सांसद निर्वाचित होते रहे। सन 1957, 1962 और 1967 में उन्हें लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसद के भीतर वो केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि देश की व्यवस्था को सुचारू बनाने वाले नीतिकार थे। उन्होंने सदैव भारत और भारतीयता के जय विजय की कामना की।

संस्कृति के अमर संवाहक थे। यदि स्वाधीनता संग्राम उनके जीवन का मुख्य अध्याय था तो हिंदी को उसका राष्ट्रव्यापी गौरव दिलाना उनके जीवन की परम उपलब्धि थी। संविधान सभा में राजभाषा का प्रश्न सबसे अधिक संवेदनशील और बहस का विषय था। सेठ गोविंद दास ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, गोविंद वल्लभ पंत आदि के साथ मिलकर हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिलवाने के लिए ऐतिहासिक मोर्चा संभाला। संविधान सभा के भीतर उन्होंने अंग्रेजी के वर्चस्व का अकाट्य तर्कों से खंडन किया। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि भारत को एक सूत्र में पिरोना है और लोकतंत्र को भारत के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है तो शासन प्रशासन की भाषा हिंदी और अन्य प्रांतीय भाषाएं ही होनी चाहिए। सेठ गोविंद दास का मानना था कि जब तक भारत अपनी शासन व्यवस्था और संसद का कार्य अपनी राष्ट्रभाषा में नहीं करेगा तब तक भारत के आम नागरिक को इस बात की अनुभूति नहीं होगी कि देश वास्तव में आजाद हो गया है। सेठ गोविंद दास, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद वल्लभ पंत जैसे दिग्गज नेताओं के प्रयास से ही अंततः 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। सेठ गोविंद दास का व्यक्तित्व अद्भुत था। वो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, संसदीय व्यवस्था के अग्रणी नेता थे, तो दूसरी ओर वो हिंदी साहित्य के सबसे उर्वर और महान नाटककारों में से एक थे। राजनीतिक और सामाजिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने साहित्य सृजन के लिए समय निकाला और हिंदी साहित्य को अपनी अनमोल कृतियों से समृद्ध किया। सेठ गोविंद दास ने 100 से अधिक नाटकों और एकांकियों की रचना की। उनके नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखे गए थे बल्कि उसमें भारतीय इतिहास, पौराणिक मूल्यों, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन और युगबोध की गूंज थी। उनके प्रमुख ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों में कर्तव्य, हर्ष, शशिगुप्त, अशोक, कुलीनता और शेरशाह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल चरित्रों को पुनर्जीवित कर राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। उनके सामाजिक नाटकों में प्रकाश, विकास, बड़ा पापी कौन और गरीबी या अमीरी प्रमुख हैं, जिनमें उन्होंने सामाजिक विसंगतियों और वर्ग संघर्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत जैसे एकांकी संग्रहों की भी रचना की। इसके साथ ही उन्होंने उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। उनकी आत्मकथा एक कालजयी रचना है जो आत्मनिरीक्षण शीर्षक से 3 खंडों में प्रकाशित हुई। ये कृति 20वीं सदी के पूर्वार्ध के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन का अत्यंत प्रामाणिक, निष्पक्ष और ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने छुआछूत और जातिभेद के निवारण के लिए अभियान चलाए। वो भारतीय कृषि का आधार गौवंश को मानते थे, इसलिए उन्होंने सदा ही गौ संरक्षण के लिए आवाज उठाई। इसके साथ ही वो स्त्री शिक्षा के भी प्रबल पक्षधर थे। सेठ गोविंद दास को सन 1961 में पद्मभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। आजीवन भारत और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करते हुए उन्होंने 18 जून सन 1974 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि सेठ गोविंद दास का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, सेठ गोविंद दास का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 9 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रकथा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन और आपके साथ हूं मैं आपकी अपनी रेडियो सखी रश्मि बजाज। दोस्तों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में चित्रकथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसमें प्यार है, तकरार है, हंसी के ठहाके हैं और जज्बातों का वो समंदर है जो आपको बहा ले जाएगा। पर हमेशा की तरह कहानी शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा हिंट। जरा सोचिए, एक ऐसा पिता जो रद्दी बेचकर लखपति बना हो लेकिन कंजूसी में जिसका कोई सानी ना हो, और कॉलेज की वो दुश्मनी जहां हीरो हीरोइन लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ याद आया? जी हाँ, आज हम चित्रकथा में पन्ने पलटेंगे 1990 की उस ब्लॉकबस्टर फिल्म के जिसने पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों की धड़कन बढ़ा दी थी, फिल्म दिल। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर।

तो श्रोताओं, कहानी की शुरुआत होती है हजारी प्रसाद से, जिसका रोल निभाया है अनुपम खेर ने। हजारी प्रसाद एक कबाड़ी वाला है और रद्दी बेचकर लखपति बना है, लेकिन उसकी कंजूसी माशाल्लाह। वो इंसान पाई पाई का हिसाब रखता है। उसी का इकलौता बेटा है राजा, जो बिल्कुल बिंदास और मस्त मौला है। दूसरी तरफ है मिस्टर मेहरा, जो शहर के बहुत बड़े और रसूखदार अमीर इंसान हैं। उनकी एक ही बेटी है मधु, जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसे अपनी दौलत का थोड़ा गुरूर भी है। राजा और मधु एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों के बीच प्यार नहीं, 36 का आंकड़ा है। ये कोई आम तकरार नहीं है दोस्तों, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी राजा मधु को बेवकूफ बनाता है तो कभी मधु राजा को सबके सामने जलील करती है। इधर हजारी प्रसाद का सपना है कि उसकी बहू एक अमीर खानदान की बेटी हो, और ऐसे में उसकी मुलाकात होती है मिस्टर मेहरा से, जो मधु के पिता हैं। वो मिस्टर मेहरा के सामने खुद को एक अमीर सेठ बताने के लिए नाटक करता है, और मिस्टर मेहरा को हजारी प्रसाद ये यकीन दिलाता है कि वो एक रईस आदमी है। दोनों पिता मिलकर अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते हैं, और जब मधु और राजा को वो मिलवाते हैं ये कहकर कि तुम्हारा रिश्ता तय किया जा रहा है, दोनों अपने कॉलेज की दुश्मनी के चलते हुए इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। राजा और मधु की ये दुश्मनी कॉलेज में हंसी मजाक तक तो ठीक थी, पर फिर मधु ने राजा को बर्बाद करने के लिए एक ऐसी चाल चली जिसने खेल को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। आखिर मधु ने ऐसा क्या किया, आखिर उनके रिश्ते का हुआ क्या, जानेंगे इस गीत के बाद।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रकथा, और चित्रकथा में मैं यानी रश्मि बजाज आपके लिए लेकर आई हूँ फिल्म दिल की कहानी। कहानी में आगे बढ़ते हैं मधु राजा से बदला लेने के लिए उस पर छेड़खानी का एक बहुत ही संगीन और झूठा इल्ज़ाम लगा देती है। राजा को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। उस झूठे इल्ज़ाम और अपनी बेइज्जती से राजा का खून खौल उठता है। वो बदला लेने के लिए सच में मधु पर हमला करने का नाटक करता है ताकि उसे एहसास हो कि एक लड़की की इज्जत कितनी कीमती होती है। जब मधु डर के मारे कांपने लगती है और अपनी गलती मानती है, तब राजा उसे छोड़ देता है और समझाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। मधु को राजा की सच्चाई और अच्छाई दिख जाती है। अब मधु का पश्चाताप प्यार में बदलने लगता है, और फिर दोस्तों वही होता है जो अक्सर होता है, भयंकर दुश्मनी बे इंतहा प्यार में बदल जाती है। दोनों प्यार में तो पड़ गए, पर क्या हजारी प्रसाद का नाटक लंबा चल पाएगा? जब मिस्टर मेहरा को उसके सच का पता चलेगा तब क्या होगा? क्योंकि दोनों बच्चों ने जब हाँ कर दी तो उनकी सगाई तय हो जाती है। चलिए बताते हैं, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, राजा मधु की सगाई तो तय हो जाती है, लेकिन झूठ के पैर कहाँ होते हैं। सगाई की शानदार पार्टी में मिस्टर मेहरा को पता चल जाता है कि हजारी प्रसाद कोई बड़ा उद्योगपति नहीं, बल्कि एक मामूली रद्दी वाला है। बस फिर क्या था, भरी महफिल में मेहरा हजारी प्रसाद की बेइज्जती करता है और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। दोनों पिता एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। राजा और मधु का रिश्ता टूट जाता है और दोनों जुदा हो जाते हैं। दोस्तों, झूठ की नींव पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। आप जो हैं वही बनकर रहिए, दिखावा एक दिन आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देता है। सगाई तो टूट गई, पिताओं की दुश्मनी ने राजा और मधु को एक दूसरे से दूर कर दिया। तो क्या राजा और मधु ने हार मान ली? आखिर क्या हुआ उन दोनों के प्यार का, जानेंगे इस गीत के बाद।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: प्यार का दुश्मन जमाना है। प्यार कब किसी की सुनता है। लेकिन मधु के पिता गुंडों से राजा को पिटवाते हैं और मधु को घर में कैद कर देते हैं, लेकिन राजा हार नहीं मानता और मधु के घर आ जाता है और वहीं उसके पिता की आंखों के सामने मधु की मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाकर उससे शादी कर लेता है। राजा और मधु अपने पिताओं की दुश्मनी को ठुकरा कर घर से भाग जाते हैं। दोनों परिवारों ने उनसे नाता तोड़ लिया है। अब वो राजा जो अपनी मस्ती में मस्त रहता था और वो मधु जो रेशम के गद्दों पर सोती थी, एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं। राजा अपनी मधु को भूखा ना सोना पड़े इसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगता है। मधु भी रूखा सूखा खाकर मुस्कुराती है। सच्चा प्यार सिर्फ गुलाब के फूलों में नहीं महकता, वो तब निखरता है जब आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ कसकर थामे रखते हैं। संघर्ष ही रिश्ते की असली कसौटी है। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, लेकिन किस्मत को शायद उनका ये सुकून बर्दाश्त नहीं था। कंस्ट्रक्शन साइट पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी में तूफान ला दिया। आखिर ऐसा हुआ क्या, बताएंगे आपको इस गीत के बाद।

दोस्तों साइट पर काम करते वक्त राजा एक बहुत बुरी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसकी हालत बेहद नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है और मधु के पास पैसे नहीं हैं। मधु रोती हुई गिरती पड़ती अपने पिता मिस्टर मेहरा के पास जाती है, लेकिन मिस्टर मेहरा उस समय शहर से बाहर होते हैं और इसलिए मधु राजा के पिता हजारी प्रसाद के पास मदद मांगने जाती है और राजा की जान की भीख मांगती है। लेकिन वो अहंकारी पिता पैसे देने के बदले एक बहुत ही क्रूर शर्त रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी बेइज्जती का बदला लेने का सही समय है। वो मधु से, अपनी बहू से कहता है कि पैसे तो मिलेंगे पर तुझे राजा की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। मधु अपने सुहाग की जान बचाने के लिए ये जहर का घूंट पी लेती है और राजा को हमेशा के लिए छोड़ देती है। जब राजा को होश आता है और मधु नहीं मिलती तो हजारी प्रसाद उसे झूठ बोलते हैं कि मधु उसे गरीबी के कारण छोड़कर चली गई। राजा टूट जाता है, उसे लगता है कि मधु ने उसके प्यार को पैसों के लिए बेच दिया। राजा के दिल में मधु के लिए नफरत भर जाती है और वो टूट जाता है। लेकिन क्या राजा को कभी मधु के बलिदान का सच पता चल पाएगा? जानेंगे इस गीत के बाद।

आखिरकार वो दिन आता है जब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। राजा दुख में डूबा हुआ नशे की हालत में एक फुटपाथ पर पड़ा रहता है। इसी बीच एक लाश राजा के घर पहुंचती है। पुलिस के अनुसार उस लाश पर मिले सामान के हिसाब से वो राजा की लाश होती है और राजा की माँ उसे देख देख कर रोती है और अपने पति से कहती है कि लो अब इस लाश का भी सौदा कर दो। तभी राजा वहाँ पहुँच जाता है। इसी गहमा गहमी में राजा को अपनी माँ से सच का पता चलता है कि मधु ने उसे छोड़ा नहीं था बल्कि उसकी जान बचाने के लिए खुद के प्यार की कुर्बानी दे दी थी। राजा का दिल रो पड़ता है। उस लाश को देखकर और अपने पत्नी के शब्दों से हजारी प्रसाद को भी एहसास हो जाता है कि उसका अहंकार और पैसा उनके बच्चों की जान से बढ़कर नहीं है। दोनों पिता अपनी नफरत भूलकर एक हो जाते हैं और अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि दौलत, हैसियत और अहंकार की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच्चे प्यार के आगे वो एक दिन ढह ही जाती हैं। परिवार का साथ और एक दूसरे पर अटूट विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।

तो दोस्तों, इस खूबसूरत फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्र कुमार ने, प्रोड्यूस किया था इंद्र कुमार और अशोक ठकेरिया ने, फिल्म के गीत लिखे थे समीर ने और इसे संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने, और इस फिल्म के गानों को आवाज़ दी थी उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम और सुरेश वाडकर ने। पर्दे पर इस जादू को उतारा था आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, सईद जाफरी और देवेन वर्मा जैसे बेहतरीन कलाकारों ने। तो दोस्तों, ये थी 1990 की यादगार फिल्म दिल की कहानी। मुझे यानी अपनी दोस्त रश्मि बजाज को आज की चित्रकथा से दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रकथा FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

0: वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार, उज्जैन रेडियो की इन तरंगों के जरिए आपके दिलों तक पहुंचने का ये खूबसूरत सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बॉलीवुड बीट्स और मैं हूं आपकी हम कदम रश्मि बजाज। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, आज सुबह 10 बजे से होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

जिसमें फोन लगाकर आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फोन लगाने के लिए हमारा फोन नंबर है 0734-405-4191, 0734-405-4191। तो चलिए अपने मन की खिड़कियां खोलिए और संगीत की ताजी हवा को महसूस कीजिए। कभी कभी एक अनजाना सा चेहरा या एक अनजानी सी आवाज दिल के इतने करीब आ जाती है कि वो अजनबी होकर भी अपना सा लगने लगता है। अनु मलिक की वो मीठी सी सदाबहार धुन और देव कोहली के लिखे मासूम लफ्ज, के इस चित्रा और के की उस बेहद सुरीली आवाज में फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं से सुनिए प्यार की इसी मीठी सी उलझन को बयां करता ये गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो दोस्तों, आज के दौर के इश्क में भले ही थोड़ी चालाकियां हों, लेकिन प्यार का खुमार और पागलपन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारे अगले गीत में है। प्रीतम का वो एकदम कैची और ग्रूवी म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, अरिजीत सिंह की कशिश और निकिता गांधी का बिंदास अंदाज। फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से आ गया है वो ट्रैक जो सीधे आपके लबों पर चढ़ जाएगा।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: श्रोता FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स अपनी रेडियो मित्र रश्मि बजाज के साथ। मोहब्बत में जब किसी को अपना सब कुछ मान लिया जाए और उसे दुनिया के सामने बताने का मौका मिले तो अंदाज कुछ ऐसा ही होना चाहिए। संदेश शांडिल्य का आइकॉनिक म्यूजिक, समीर के लिखे वो स्टाइलिश बोल, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म कभी खुशी कभी गम से पेश है एक ऐसा गाना जो कभी पुराना नहीं होता।

तो श्रोताओं, प्यार में जब थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा स्वैग और बे इंतहा कॉन्फिडेंस मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। साजिद वाजिद का धमाकेदार देसी बीट्स वाला म्यूजिक, जलीस शेरवानी के लिखे फुल ऑन एटीट्यूड वाले बोल वाजिद और अमृता काक की उस दमदार आवाज़ में फिल्म वांटेड से ये वो ट्रैक है जो आपके अंदर के स्वैग को जगा देगा।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स में। जब इंसान मोहब्बत में अपना पूरा वजूद, अपनी सारी खुशियां और अपनी दुनिया किसी एक के नाम कर देता है तो उस एहसास से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। अमाल मलिक का वो सुकून देने वाला संगीत, संजीव चतुर्वेदी की वो जज्बाती कलम, अरमान मलिक की आवाज़ में घुली हुई मिठास और श्रद्धा कपूर का प्यारा सा साथ, फिल्म बागी से प्यार के इसी गहरे इकरार को आवाज़ देता ये गीत, आइए सुनते हैं।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: दोस्तों, कभी कभी होठों पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के किसी कोने में एक ऐसा दर्द छुपा होता है जो किसी को नजर नहीं आता। रोचक कोहली की धुन, कुमार के लिखे अल्फाज और अरिजीत सिंह की दर्द भरी आवाज, फिल्म दे दे प्यार दे से सुनिए जादुई, जुदाई और खामोशी का ये बेहद खूबसूरत नगमा।

तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी म्यूजिकल महफिल में बस इतना ही। अब आपकी दोस्त रश्मि बजाज को कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स से दीजिए इजाजत। लेकिन लेकिन लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बस कुछ ही देर में हम फिर हाजिर होंगे लेकर सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें फोन लगाकर आप अपनी बात हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकेंगे। तब तक जिंदगी की बीट्स को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब समय है विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन के स्टूडियो से आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सजीव फोन इन कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त रश्मि। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर है, यानी हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन, जिसे हम विश्व विद्यार्थी दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। कलाम साहब का मानना था कि एक बेहतरीन इंसान वो है जो ताउम्र एक विद्यार्थी बना रहे, जो हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखे। इसलिए आज कुछ बातें कुछ गीत में हम इसी विद्यार्थी को जगाने आए हैं। आज हम जानना चाहते हैं कि जब आप स्कूल में थे तब आप क्या बनना चाहते थे और आपकी वो पुरानी यादें क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आज आपके अंदर जो एक विद्यार्थी छिपा है वो अब क्या नया सीखना चाहता है। गिटार बजाना, कोई नई भाषा, या शायद सोशल मीडिया चलाना। तो उठाइए फ़ोन और मिलाइए हमारा नंबर 0734-405-4191, 0734-405-4191। आइए बचपन की यादों और आज की नई सीख के इस सफर को शुरू करते हैं हमारे पहले कॉलर के साथ। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी धन्यवाद मैम, मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।

0: अरविंद जी, आप महोबा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। कैसे हैं अरविंद जी आप?
1: एकदम बढ़िया है। आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं अरविंद जी। अभी महोबा उत्तर प्रदेश में नवरात्र का जो त्योहार है वो किस तरह से मनाया जाता है, कुछ बताएंगे आप हमें?
1: जैसा सभी जगह मनाया जाता है, वो
0: अच्छा जी
1: सभी पूरे देश में ऐसा ही होता है लग।
0: जी, घट स्थापना और गरबों का आयोजन।
1: जी
0: और बिल्कुल, तो अरविंद जी, आज का जो विषय है वो है हमारे अंदर जो विद्यार्थी आज भी विद्यमान है वो क्या सीखना
1: जी
0: चाहता है, आपके अंदर जो विद्यार्थी विद्यमान है।
1: सभी से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, जो अच्छा
0: जी
1: लगा मन को वो सीख लिया। सीखना कोशिश करेंगे कि ऐसा ही करें आप जैसा।
0: अरे वाह, क्या बात है। और कोई ऐसी इच्छा, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, अभी आप क्या करते हैं?
1: ये तो अभी किराने की दुकान चलाता हूँ मैं।
0: जी, तो कुछ सीखने की ऐसी इच्छा है आपकी कि मैं ये सीखना चाहता हूँ?
1: हर दिन हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। दुकान
0: जी,
1: में आते हैं, ग्राहक से कहा जाते हैं,
0: ये बात तो है कि
1: नहीं
0: हर व्यक्ति, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक कहानी है और हर जीवन में कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हर किसी के जीवन से।
1: होते
0: तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके अरविंद जी। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आए। धन्यवाद फोन लेने के लिए आपका।
0: तो श्रोताओं, चलते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर।

0: श्रोताओ, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि उनके अंदर का विद्यार्थी आज क्या सीखना चाहता है। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं राजू पंजाबी बोल रहा हूं, आपका रेगुलर श्रोता।
0: राजू जी, आप शायद रेडियो के बहुत नजदीक हैं, थोड़ा रेडियो से दूर जाएं।
1: थोड़ा सा दूरी होगी
0: जी। जी हाँ जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी उज्जैन में आपका। आप क्या करते हैं राजू जी?
1: मैं वैसे लोगों का, जैसे आप रेडियो के माध्यम से मनोरंजन करते हैं
0: जी
1: ऑल इंडिया में, तो मैं भी लोगों का मनोरंजन करता हूँ
0: जी
1: रेडियो प्लेयरों में।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं फिलहाल आप ही

0: थोड़ा सा 50 किलोमीटर दूर मैनपुर सिटी से बात करो।
1: मणिपुर सिटी से आप बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राजू जी, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि आपके अंदर का विद्यार्थी आज क्या सीखना चाहता है।
0: आज का विद्यार्थी जो पहले जो हमारे जो हमने जो बचपन में जो पढ़ा लिखा सब कुछ किया
1: जी,
0: उस वक्त की बात अलग थी और जो इतना दबाव नहीं होता था
1: जी,
0: रहते थे, 5 सब्जेक्ट होते थे और उतना टिपिकली नहीं था। आजकल का जो जिस हिसाब से एजुकेशन हो रहा है
1: जी जी,
0: वो बड़ा कठिन सा है। जो पहले जो 50-55% ले आते थे उसको फर्स्ट क्लास का होना मिलता था
1: जी,
0: लेकिन आज 95 भी लेकर बंदा आ रहा है स्टूडेंट लेकर,
1: उसमें भी खुश नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा। कहीं ना कहीं माता पिता की महत्वाकांक्षाएं हैं, या फिर ये कह लें कि एक प्रतिस्पर्धा का जो हम देख रहे हैं कि ज़माना है, उसकी वजह से शायद ये समय हमें देखने को मिल रहा है, इस तरह का जो मंजर हम अभी देख रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत प्रयास जारी है इस दिशा में कि बहुत हद तक अब तो चीज़ें इस तरह से कर ली गई हैं कि कम से कम बोझ हो किताबों का बच्चों पर, और खेल खेल में ही विद्यालय में ही उन्हें परीक्षाओं की तैयारियाँ भी करवा दी जाए।
0: कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड पर ले आती है
1: जी,
0: जहाँ कुछ भी अपने हिसाब से नहीं होता।
1: ये बात आपने बिल्कुल सही कही और हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है।
0: लेकिन याद रखिए
1: जी,
0: हर मुश्किल अपने साथ कोई ना कोई ऐसे सीख लेकर आती है।
1: बिल्कुल,
0: आज भी दर्द की में आपकी आंखें नम है
1: जी,
0: कल वही दर्द आपके भीतर से मजबूती पैदा कर सकता है।
1: क्या बात है, बहुत ही गहरी बात आपने हमें बता दी राजू जी। और
0: जिसका आपको आज अंदाजा भी नहीं
1: जी,
0: समय कभी एक ऐसा नहीं रहता।
1: बिल्कुल,
0: आज परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध है तो कल वही परिस्थिति आपके पक्ष में भी हो सकती है
1: जी।
0: इसलिए बुरे दौर से खुद को खत्म कर समझना, क्योंकि रातें चाहे कितनी भी लंबी हो,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सूरज को निकलने में कोई नहीं रोक सकता।
1: क्या बात है, बहुत बहुत ही गहरी और अच्छी बात आपने कह दी। आज जीवन की इस पाठशाला में हमें आपसे भी कुछ सीखने को मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी हमें फोन करने के लिए आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से।
0: धन्यवाद,
1: बिल्कुल, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं राजू जी। तो श्रोताओं, राजू जी ने ये जो बात कही वो बहुत गहरी और सीखने लायक बात है कि आज हम जैसे अपने श्रोताओं से भी सीख सकते हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि कोई भी मुश्किल आए तो मुश्किल से हमें हार कर बैठना नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर ट्रैफिक है और ट्रैफिक में अगर आपकी कार कहीं फंस गई है तो आपको कार छोड़ कर चले तो नहीं जाते ना, आप ट्रैफिक के क्लियर होने का वेट करते हैं। ठीक वैसे ही जीवन की मुश्किलें होती हैं और हल निकल ही आता है, तो बस थोड़े धैर्य की आवश्यकता है। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और सुनते हैं उनसे उनके विचार। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी, हम आपके नियमित श्रोता योगेश जांगड़े दुमे तरह छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: अच्छे हैं योगेश जी। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है जीवन की पाठशाला। आपके अंदर का विद्यार्थी आज क्या सीखना चाहता है?
1: अब देखिए, आजकल के मोबाइल के युग में तो यही कहेंगे कि जो हमारे अंदर का, अगर आज हमें अगर कुछ सीखने को मिले तो जीवन के अनुभव को ही सीखना चाहेंगे। जो हमारा बचपन रहा है, खेल कूद में बीता है, तो उसमें सामाजिकता का भाव, दोस्ती का भाव, ये काफी हद तक भरा होता था, खेलने कूदने का भाव। तो आज ये चीजें थोड़ा सा, जैसे हम अपने बच्चों को देखते हैं तो थोड़ा सा एक सिमट सा गया है, उनको वो बचपना मिल नहीं पा रहा है। जैसे स्कूल में तो ठीक है, स्कूल में अपने सहपाठी के साथ खेलते कूदते हैं, लेकिन घर में वो बचपना थोड़ा सा उनको मिसिंग हो गया है।
0: जी हाँ, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और कई बार हमने हमारे भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी ये चीज़ बताई है कि मोबाइल से दूरी कैसे बनाई जाए। तो वो अगर एक चीज़ हम ध्यान रख लेंगे तो फिर से बचपन लौट आएगा, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतना ही चलाए मोबाइल को।
1: सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय में अनुशासन रखना बच्चों को या किसी को भी, ये सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि मतलब उस तरह से बात मान नहीं रहे आजकल के बच्चे।
0: जी ये बात तो,
1: जबकि उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे समय में हम जब पढ़ाई लिखाई करते थे तो दूर गांव जाना होता था, रोड रास्ते का भी कोई पता नहीं था, और आजकल तो काफी सुविधाएं हो गई हैं, और इन सुविधाओं के बावजूद भी उनको अगर हम थोड़ा सा कभी महसूस कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है।
0: बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही कही योगेश जी, और इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कड़ा अनुशासन तब भी जरूरी था तो आज भी जरूरी है। सारी चीजें अगर आज हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे तो उनमें उस चीज को पाने की, उसका इंतजार करने की क्षमता नहीं रहेगी। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छा लगा योगेश जी आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए। तो श्रोताओं, जैसा कि अभी आपने सुना, उन्होंने, योगेश जी ने हमसे ये कहा कि आजकल के बच्चों में थोड़ा अनुशासन की कमी देखने को मिलती है, और उसका शायद कारण बस एक यही है कि वो जो चाहते हैं उनके कहने से पहले उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कमी और अभाव इंसान में अनुशासन लेकर आती है। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: तो चलिए श्रोताओं, देखते हैं कि हमारी जीवन की पाठशाला के अगले विद्यार्थी कौन हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
2: जी नमस्ते रश्मि जी, मैं प्रेम सिंह, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं प्रेम सिंह जी?
2: जी मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है आप भी बहुत अच्छे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रेम सिंह जी, माता रानी का आशीर्वाद है, आप जैसे श्रोताओं का स्नेह है, हम बिल्कुल अच्छे हैं यहाँ पर। और आज हम बात कर रहे हैं प्रेम सिंह जी, जीवन की पाठशाला के बारे में। आज विश्व विद्यार्थी दिवस है, तो आपके अंदर का विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है आज भी?
2: जी बताना चाहेंगे रश्मि जी, ज्ञान किसी भी समय में मिले, कहाँ से भी मिले, हमें अर्जित कर लेना चाहिए। ऐसे ज्ञान सीखने की तो कोई सीमा नहीं होती है, बट अगर हम सीखना चाहें ना तो अभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, और अगर ना सीखना चाहें तो कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हैं, मेरा तो यही कहना है।
1: बिल्कुल, कोई आपकी ऐसी ख्वाहिश, कुछ ऐसी इच्छा जो आपको ऐसा लगता है कि मैं आज अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं ये सीखना चाहूंगा?
2: जी बताना चाहेंगे, जैसे कि मैं तो एक भजन गायक हूँ, तो मुझे अच्छे से भजन सीखने की उम्मीद है, और मैं तो अब यही चाहता हूँ कि आगे बढ़ते रहूँ निरंतर। और खेती किसानी में भी जब अभी नए नए फसल के तरीके जो लोग बताते हैं वैज्ञानिक द्वारा, तो उनको भी सीखने की ललक काफी होती है हम लोगों में।
1: बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही कि वैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और आप तो लगातार सीखने की उसमें प्रोसेस में हैं प्रेम सिंह जी, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। हाँ, अभी आपने हमें बताया
2: तो, जी मैं तो यही कहूंगा रश्मि जी कि जब भी कहीं पर भी किसी भी चीज को अगर सीखने की उम्मीद है आप में, तो आप सीख सकते हैं आसानी से। और मैं तो अपने हमेशा नेगेटिव सोच के साथ में रहता हूँ, और हमेशा जो भी चीज सकारात्मक होती है, अच्छे परिणाम देती है, उसे सीखने के लिए तत्पर रहता हूँ।
1: जी हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि सीखने के प्रति अपना जज्बा हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि हम सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, और कोई सीमा भी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं सीख सकते या वो नहीं सीख सकते, बिल्कुल आप सब सीख सकते हैं।
2: तो अश्मि जी से आपको बताएं, अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी लाइन आपको भजन की सुना दूं माता जी का।
1: बिल्कुल स्वागत है आपका।

ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदान पड़ी है। तू ही बता अब रास्ता दुनिया, रास्ता रोके खड़ी है मेरा।

0: मनाम रे।
1: क्या बात है,
0: जी
1: बहुत
0: रखिए
1: सुंदर
0: जी।
1: आपने भजन की पंक्तियां हमें सुनाई। प्रेम सिंह जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद जी, मुझे भी आपके बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी तो श्रोताओं, जैसा कि आपने अभी सुना, प्रेम सिंह जी ने बताया कि लगातार सीखते रहने की जो प्रोसेस है वो हमेशा चलती रहती है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: तो चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रावती गंज से राजकुमार कछावा बोल रहा हूँ।
0: चंद्रावती गंज से राजकुमार जी बात कर रहे हैं, कैसे हैं राजकुमार जी?
1: बस बढ़िया है मैडम, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, बढ़िया है, काम काज चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आपकी प्रस्तुति सुन रहे हैं सुबह से।
0: जी धन्यवाद। तो आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं?
1: बढ़िया है मैडम, बहुत अच्छा। आपका जो रेडियो स्टेशन बहुत अच्छा है और सीधा प्रसारण, साफ सुथरा प्रसारण होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपका जो कार्यक्रम है बाकी बहुत लाजवाब है। आपकी प्रस्तुति है, एक गोपाल जी है
0: जी।
1: उनकी प्रस्तुति सुनने का मैं बड़ी दिलचस्पी होती है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले मधुर राजा की कहानी सुनी थी, मैं काम कर रहा था उस वक्त
0: जी जी।
1: और आपकी कहानी भी सुन रहा था।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आप लोग हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। राजकुमार जी, आज हम बात कर रहे हैं जीवन की पाठशाला कि आपके अंदर का विद्यार्थी आज क्या सीखना चाहता है।
1: मेरे विद्यार्थी तो बहुत कुछ सीखना चाहता है, लेकिन क्या है, अभाव का जीवन है। इसमें कुछ चीजों का जो आपने जो बचपन में सीखा
0: जी,
1: उसको आप वापस से अब इस स्थिति में नहीं सीख सकते, क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत आ चुकी है
0: जी। ये बात तो आपने सही कही।
1: हाँ, क्योंकि उस समय आदमी जब पढ़ता है, बचपन रहता है, चाहे आपके पास शिक्षा के लिए अनुकूल समय नहीं हो, आपके पास भौतिक सुख सुविधा नहीं, लेकिन उस वक्त जो आदमी सीखता है वो आज नहीं सीख पाता है। आज सारी चीजें होने के बाद भी वो सीख नहीं पाता, लेकिन कोशिश यही रहती है कि जो अपन ने विद्यार्थी सर में अनुशासित जीवन जिया, उस जीवन को शांति प्रिय तरीके से उस जैसे उसमें सिखाया जाता है, माता पिता गुरु का सम्मान, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है। वो यदि जीवन भर आप उसको उसका अनुसरण करेंगे तो आपको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी धैर्य पूर्वक।
0: जी आपने ये बात बिल्कुल सही कही। हालांकि हम सीखने के रोज ही हम कुछ ना कुछ सीखते हैं राजकुमार जी, जैसे आपने हमें एक बार बताया था।

कि आपकी ऑटोमोबाइल्स की शॉप है, आप नए उपकरणों के बारे में सीखते होंगे, कोई नई तरह की जब गाड़ी आती होगी तो उसको रिपेयर करना सीखते होंगे, तो सीखने के प्रोसेस में तो हम हमेशा रहते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बचपन में जब हम बेफिक्र होते हैं उस समय सीखने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हमने की, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो श्रोताओं, सीखना हम जब चाहें तब सीख सकते हैं। हाँ, ये बात है कि बचपन में जो बेफिक्री होती है उस समय सीखना शायद ज़्यादा आसान होता होगा, लेकिन अगर आप कुछ कर गुजरने की ठान लें तो आप कर सकते हैं, ये विश्वास ज़रूर रखिए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं और क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बेटा जी, प्यार अते सत्कार भाई, सत श्री अकाल भाई
0: जी। नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल। कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम क्या है?
1: बेटा जी, विलेज माउड़ खुर्द, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब से जगजीत तुमर तो बोलता हूँ बेटा।
0: क्या बात है जगजीत जी, बठिंडा पंजाब की खुशबू आप ले आए उज्जैन में, बड़ा अच्छा लगा हमें ये जानकर। तो आप वहाँ पर आकाशवाणी उज्जैन के कार्यक्रम कैसे सुनते हैं?
1: बेटा जी, तुम्हारे नाल जोड़ने वाला मुझे लकेंद्र वर्मा मध्य प्रदेश से, उसने जोड़ा है बेटा। हम तो
0: जी
1: 2.5 साल हो गए तुम्हारे प्रोग्राम सुनते हैं बेटा।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: बेटा आपके प्रोग्राम इतने अच्छे होते हैं, हाउ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तुम बहुत बढ़िया सॉन्ग सुनाते, बहुत बढ़िया बेटा। सानू तुम्हारे गलबात करके बहुत अच्छा लगता है बेटा।
0: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया जगजीत जी। हमें भी आपका जब फोन आया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है अंदर से। आज हम
1: धन्यवाद बेटा, धन्यवाद
0: जी,
1: धन्यवाद बेटा। पहले बेटा मैं तुमको दुआवा देता हूँ, बाबा नाम क्यों चढ़ती गज रखे बेटा, आप दी परिवार दी थोड़ी बड़ी बड़ी उम्र होवे बेटा, लॉन्ग लॉन्ग एज बेटा थोड़ी।
0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं, हम जीवन में अभी और क्या सीखना चाहते हैं इस बारे में, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सीखना चाहते हैं।
1: बेटा हम लोग तो पंजाब में बेटा खेती बाड़ी का काम

0: लिखे हैं ते, और बेटा मुझे गाने का शौक भी बहुत है, मैं हम लोग गा भी लेते हैं, मुझे बेटा बहुत शौक है, मैं हम पंजाबी में गा लेता हूँ और मैं गाने का शौक रखता हूँ बेटा।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो गाने का आप शौक रखते हैं, तो गाने से संबंधित कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको सीखने की इच्छा है, जैसे हारमोनियम हो गया या तबला पेटी वगैरह, आप कुछ सीखना चाहते हैं?
0: बेटा बेटा हारमोनियम मुझे आता नहीं, क्योंकि बेटा मैं कस पड़ा हूँ, मैं दस पड़ा हूँ, मुझे आता नहीं बेटा, हमने कोशिश बहुत की थी
1: जी। तो कोशिश आपका बड़ी बात
0: बेटा है। बेटा जे तुम्हारा हुक्म हो गए का मुझे मैं माँ का गीत सुनाऊँ तुझे, माँ का गीत पंजाबी में?
1: जी बिल्कुल, स्वागत है आपका।
0: ना सुनो बेटा, माँ होंगी माँ वे दुनिया वाले हो, माँ वो ठंडड़ी छावे दुनिया वाले हो, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ ता रब दा रूप है दूजा, ओ माँ है रब दा ना वे दुनिया वाले हो, माँ होंगी माँ वे दुनिया वाले हो, बच्चों का दुख माना सहिंदी, गिल्ली थां ते आप है पैंदी,
1: हाँ अच्छा लगा। आप माँ के बारे में बता रहे हैं कि माँ की पूजा रब की पूजा होती है, और माँ तो रब का दूजा रूप होती है।
0: क्या बात है बेटा, बेटा हमारे पंजाब में उगे लोग गए कि कलियों की भाषा श्री कलदीप मान साहब, उसने गाया जैसे माँ मतलब की है ना हिंदी में
1: जी,
0: ऐसे ऐसे हमारे पंजाब में कुलदीप मान साहब इसका गीत नाम है बेटा।
1: बहुत सुंदर गीत था, बहुत अच्छा आपने गाया, बहुत भाव के साथ आपने गाया। आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए जगजीत जी आपका बहुत सारा धन्यवाद।
0: ठीक है बेटा, बाबा लाल की चढ़ती कला रखे बेटा, जिंदे रहो बसदे रहो, तुहाडी रब वड्डी उमर करे बेटा। सत श्री अकाल बेटा,
1: सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। श्रोताओं कितनी सुंदर बात है ना कि माँ ही रब का दूजा रूप होती है, और ऐसे श्रोताओं से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वाकई में जीने का जज्बा क्या होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और जानते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, जय श्री महाकाल। आप
0: जय श्री महाकाल।
1: जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा।

0: बोल रहा हूँ मैम।
1: अशोक नगर मध्य प्रदेश से आप विनोद नारायण जी कुशवाहा बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद नारायण जी, कैसे हैं आप?
0: बाबा महाकाल की कृपा और आपका आशीर्वाद आनंद मंगल है माता जी।
1: बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है, बिल्कुल आप हमेशा सब आनंद मंगल में रहें। और आज हम बात कर रहे हैं जीवन की पाठशाला के बारे में कि हम जीवन की पाठशाला में हम सब विद्यार्थी हैं और हमारे अंदर का विद्यार्थी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो आप क्या सीखना चाहते हैं स्कूल के दिनों में, आप क्या सीखना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: मैम थोड़े छोटे होते हैं तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे क्लासें बढ़ती जाती हैं, पांचवी आठवीं दसवीं के बाद में जब हमको समझ आता है कि हमको क्या करना है। लेकिन हमारी एक इच्छा होती है कि हम टीचर बने या बैंकिंग क्षेत्र में जाए, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, लेकिन अपनी इच्छा कुछ अलग थी। मैम हम चाहते थे, हम कविताएं लिखते थे छोटी मोटी, तो हम चाहते थे मैम हम राइटर बनो।
1: अरे वाह क्या बात है।
0: और रेडियो के लिए भी कुछ लिखते रहते हैं, तो मैडम आज दो लाइन में सुनाना चाहूंगा।
1: बिल्कुल स्वागत है।
0: ध्वनि तरंगों की ताल बजने दे जरा, जलने वालों को जलने दे जरा, अगर धोखा दे जाए कोई तो मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने खुद ने लिखी है।
0: जी मैम हम खुद लिखते हैं और हमारी कविता हमारे लोकल केंद्र आकाशवाणी गुना से मैम प्रसारित भी होती थी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा क्या बात है, बहुत अच्छी कविता की पंक्तियां थी आपकी, और सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आकाशवाणी के गुना केंद्र से भी आपकी कविताओं का प्रसारण हुआ है, तो ये जानकर
0: लोकल केंद्र है हमारा।
1: जी जी जी बहुत बहुत अच्छा लगा ये जानकर हमें। तो जी
0: जी मैम, और आज हमारे भारत की अनमोल शान मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है, तो उनको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी सारा राष्ट्र उन्हें नमन करता है। और आपसे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि आप कविता लिखते हैं और आप राइटर बनना चाहते थे, लेकिन जैसा आपने बताया कि गुना आकाशवाणी केंद्र से आपकी कविताओं का प्रसारण हुआ है, तो आप राइटर हैं, आप राइटर बनना चाहते थे नहीं, आप राइटर हैं और आप लगातार लिखना जारी रखिए और अपनी कविताओं के लिखने के इस शौक को आप आज भी पूरा कर सकते हैं।
0: जी मैं एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आज जितनी भी हमारी आकाशवाणी अपने देश के विभिन्न केंद्रों में जहाँ तक अपनी पहुँच है, हम लगभग 70-80 केंद्र लगभग सुनते हैं मैम,
1: तो
0: जहाँ तक अपनी आवाज पहुंच रही है
1: जी,
0: उन सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूंगा कि रेडियो का अपने जीवन में एक अलग ही महत्व होता है
1: जी,
0: क्योंकि जो जानकारी हमको रेडियो से मिलती है वो और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते।
1: कई बार आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार ऐसी जानकारियां हमें मिल जाती हैं जो हमें कहीं किताबों में पढ़ने को नहीं मिलती, और आकाशवाणी के माध्यम से
0: एक उपलब्धि और हासिल है कि आकाशवाणी उज्जैन में ये मेरा 12,195वां कॉल है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, और इसी तरह आप कॉल करते रहें और आकाशवाणी उज्जैन से और अन्य आकाशवाणी केंद्रों से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए।
0: जी मैम थैंक यू, और सभी दोस्तों से ही कहना चाहूंगा कि चिंता नहीं, काल की कृपा बनी रहे
1: महाकाल की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं सीखने के लिए जैसा कि हमारे सभी श्रोता लगभग कह रहे हैं कि कोई उम्र होती नहीं है, तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने अंदर उस सीखने की चाह को जिंदा रखिए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: तो चलिए श्रोताओं, देखते हैं अगले विद्यार्थी हमारे जीवन की पाठशाला से कौन है और वो क्या सीखना चाहते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय देंगे और आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोल रहा हूँ मैम, छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला वार्ड क्रमांक 20 से।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारथी जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैम, और माता रानी की कृपा से हम सारथी परिवार पूरे कुशल मंगल से है मैम।
0: अरे वाह, आप हमेशा ऐसे ही कुशल मंगल रहें, यही कामना हम करते हैं माता रानी से। नवरात्र के दिन चल रहे हैं और आज विषय हमारा है आपके अंदर का विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है। हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रहती है, तो आप आज क्या सीखना चाहते हैं अपने जीवन में?
1: जी मैम, इंसान के जीवन में सीखने के लिए तो बहुत कुछ होता है मैम
0: जी।
1: जो जन लाइन रद्दा पकड़ लेता है मैम, किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, किसी को वाहन चलाने का शौक होता है, कोई मिस्त्री बनने का शौक होता है
0: जी,
1: और अनेकों प्रकार की चाह हमारे मन और हृदय में बसा होता है मैम।
0: बिल्कुल,
1: जिससे क्या है मैम, कुछ ना कुछ सीखे रहेंगे तभी हमारा जीवन यापन चलेगा, हमारा घर परिवार चलेगा, हमारा बीवी बच्चा और पूरा उसका परवरिश चलेगा मैम।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ सीखते रहने से कई बार ऐसा होता है कि जीवन यापन करने के रास्ते भी आसान हो जाते हैं।
1: आसान हो जाते हैं मैम
0: जी,
1: और इसमें क्या है, कभी सुख कभी दुख तो जीवन में आते रहते हैं मैम, तो ऐसे दुखद की संकट की घड़ी में आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। एक रास्ता अगर बंद हो भी जाए तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर खुला होगा, बस हमारे तलाशने की देर है और कुछ नया सीखते रहने की चाह मन में हमेशा होनी चाहिए।
1: होनी चाहिए, तो उनसे क्या है, हमारा मार्ग बिल्कुल आसान हो जाता है मैम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सारथी जी।
1: और क्या है कि जैसे कि मैं सारथी हूँ मैम
0: जी,
1: वैसे मेरा काम भी सारथी का है, मैं ड्राइवर हूँ, वाहन चलाता हूँ।
0: क्या बात,
1: पर्यटक वाहन चलाता हूँ, ट्रेवलर चलाता हूँ, और जितने भी पर्यटक हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान अदर स्टेट सब घुमाने के लिए ले जाता रहता हूँ मैम।
0: क्या बात है सारथी जी, ये जानकर और प्रसन्नता हुई कि अपने काम को आपने इतने अच्छे से परिभाषित किया कि आप एक सारथी हैं और गंतव्य तक पहुंचाते हैं जो आपके रथ पर सवार होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।
1: ये भी हमारा एक शौक है मैम
0: जी। क्या बात है, काम को ही आपने अपना शौक माना है और या फिर शौक को ही आपने अपना काम बना लिया है, दोनों ही बातें बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छा लगा सारथी जी आपसे बात करके, आकाशवाणी उज्जैन में फोन लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे सारथी परिवार पूरे छत्तीसगढ़ के सारथी परिवार की ओर से उज्जैन आकाशवाणी के पूरे परिवार।

देखा है जो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ सीखने की चाह अपने अंदर रखते हैं और सीखने की शुरुआत करते हैं। तो आपके अंदर का विद्यार्थी आज क्या करने की जिद कर रहा है, डायल कीजिए 0734-405-4191 और जुड़िए सीधे हमारे साथ। उससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी रश्मि बजाज। डॉक्टर कलाम हमेशा कहते थे कि सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता से विचार आते हैं, विचार से ज्ञान मिलता है और ज्ञान आपको महान बनाता है। तो अपने अंदर के उस सीखने वाले बच्चे को कभी मरने मत दीजिए। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल्स का। अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आपके अंदर का विद्यार्थी आज क्या करने की इज्जत कर रहा है, क्या सीखना चाहता है। चलिए इसी खूबसूरत विचार के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओ, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके विचार जानते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
1: दीदी जी को प्रणाम, मैं कोदवा सागर छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ। दीदी
0: राम स्वरूप जी, कैसे हैं आप?
1: सब बढ़िया दीदी, आप लोग कैसे? आज भैया लोग, आज बहन लोग, आप लोग सब?
0: हम लोग सब बहुत कुशल मंगल हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं राम स्वरूप जी, जीवन की पाठशाला जिसमें हम लगातार कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो आप क्या सीखना चाहते हैं?
1: दीदी इसमें तो क्या है, पहले सीख तो माँ बाप से मिलता है उसमें, यानी आगे चल के कैसा बढ़ना है, परिवार कैसा चलाना है ना, कैसा तरक्की करना है, तो उसके अनुसार अलग अलग अब कोई अपनाते। दीदी कोई मिस्त्री काम अपना रहा है यानी परिवार चला रहे, अपने पर खड़ा होने, कोई टेलर काम कर रहे, कोई मोटर लाइन पकड़ा हुआ है। जैसे मैं तीर्थ यात्रा, पहले बस लाइन में था, अब तीर्थ यात्रा काम कर रहा हूँ, सांसद में पर भी खड़ा हूँ, परिवार को भी चला रहा हूँ। वही सीख अपने बच्चे को भी कि अगला भविष्य में आप अच्छा बनो, कि अच्छा रहो, परिवार अपने कैसा चलाना है, तकलीफ ना होना चाहिए, सब ऐसा है दीदी इसमें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगातार हम कुछ सीखते हैं और जब सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में हमें हमेशा कुछ ना कुछ काम आता है।
1: हाँ दीदी काम आता है वो
0: बिल्कुल। और रामस्वरूप जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप स्कूल में थे तब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे?
1: दीदी मैं तो पहले, हम लोगों का होटल था, पहले होटल ही चला रहा था, मैं स्कूल पढ़ाई कर रहा था भी, उस टाइम भी मेरे पास साउंड सर्विस भी था, 20 साल तक साउंड सर्विस चलाया। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर मैं बस में कंडक्टिंग करना चला गया, मैं 20 साल तक वहाँ भी काम किया। अब उसके साथ साथ टूर का ही काम कर रहा हूँ,
0: अच्छा,
1: घुमाने के लिए। अभी आपके एरिया में आऊंगा, 23 को निकलूंगा फिर मैं यहाँ से उज्जैन सी और के लिए।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका उज्जैन में। और जी हम ये जानना और चाहेंगे कि स्कूल में आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या था?
1: वहाँ स्कूल में भी सबसे पसंदीदा विषय हमारा हिंदी है दीदी।
0: हिंदी आपको पसंद है, क्या बात है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। और हिंदी कहते हैं कि एक वैज्ञानिक भाषा है और देवनागरी लिपि, इसलिए इसे इसलिए कहा जाता है कि जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। कहते हैं ना कि अन्य भाषा में कुछ शब्द शायद खामोश हो सकते हैं लेकिन हिंदी की तो बिंदी भी बोलती है।
1: हाँ दीदी मातृभाषा नहीं दीदी है,
0: मातृभाषा, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आकाशवाणी उज्जैन में आपका फोन लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, प्रणाम।
0: प्रणाम। तो श्रोताओं, देखा आपने कि जीवन में हमेशा जो सीखते रहने की चाह है वो बनी रहनी चाहिए और ये हमें जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ज़रूर आती है। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर।

श्रोताओं, वक्त तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया। आज कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी श्रोताओं ने अपने स्कूल के दिनों की जो खट्टी मीठी यादें बांटी, आप सभी से हमें कुछ नया सीखने को मिला और नया सीखने का जो जज्बा आपने दिखाया उसने दिल खुश कर दिया। डॉक्टर कलाम को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब अपने भीतर के उस विद्यार्थी को हमेशा जिंदा रखें। अब अपनी दोस्त रश्मि को दीजिए इजाज़त। जीवन की इस पाठशाला में एक अच्छे विद्यार्थी बने रहिए, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नए सपने बुनते रहिए। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है। चलिए अब रुख करते हैं विविध भारती मुंबई की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। रंग तरंग की पहली प्रस्तुति। जुबीन नौटियाल की आवाज में मनोज मुंतशिर के शब्द हैं, पायल देव का संगीत। मेरी मां के बराबर कोई नहीं इस एल्बम से।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग। शाहिद माल्या और तृप्ति वाक्य की आवाजों में अगला सुनिए रचना और संगीत के आरवाही का है।

0: कुछ इंतजार है इस एल्बम से ये गजल आपने सुनी भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। गुलशन मैदान का लिखी ये गजल थी और भूपिंदर सिंह ने संगीत दिया था।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुमार विष्णु और स्वरांशी की आवाजों में एल्बम सजा मेरे घर दरबार माँ से आपने सुना ये गीत। रवि चोपड़ा की रचना थी, मीट ब्रदर्स का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में। ऐश कमल की रचना है, भूपिंदर सिंह का ही संगीत।

ऐश कमल की रचना थी, गायकी और धुन इंदर सिंह की। फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए अगला गीत। महबूब की रचना, ललित की बनाई तर्ज़।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ानी मार उड़ा।
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम रंग तरंग। सुनिए अगली गजल भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। इब्राहिम अश्क का कलाम है और तर्ज बनाई है भूपिंदर सिंह ने। एल्बम का नाम मोहब्बत।

ये गजल अभी आपने सुनी विनोद सहगल और सीमा शर्मा की आवाजों में। सईद राही की का लिखा ये गीत था और जगी सिंह की तर्ज़।

गरबा सॉन्ग एल्बम से ये गीत हमने अभी आपको सुनवाया, शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजें थी। रुतिका ब्रह्म भट्ट का लिखा ये गीत था, शिवांग माथुर का संगीत। तेरी मेरी दीवानी इस एल्बम से फाल्गुनी पाठक की आवाज में, ललित का संगीत है, नवाब आरजू का लिखा गीत।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी, तर्ज बनाई थी गुलाम अली ने। संकल्प जायसवाल की आवाज में, संकल्प जायसवाल की आवाज में हर दुआ एल्बम से सॉन्ग।

0: दोपहर के 12 बजने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोत्चोरीशविली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित आईयूकेएफपी बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क

0: मैं कहता हूं होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

स्वागत है आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम यादों की महफिल में। मैं हूं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर का जन्मदिन। आज का कार्यक्रम हमने उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीतों से सजाया है। साथ ही आपको बता दें कि आज है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में पहला गीत प्रोफेसर फिल्म से, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्हें बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी इंद्र। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी। साथ

सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इस संदेश से पहले आपने गीत सुना आरजू फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्रिंस से, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। हसरत जयपुरी के ही बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक।

0: बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम।

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ाई मार उड़ा।
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की।
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत पर ये गीत, क्योंकि आज है इस संगीतकार जोड़ी के शंकर का जन्मदिन। शारदा की आवाज में सूरज फिल्म का गीत, हसरत जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम की इबारत हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने वो पढ़ भी ली है और आपके संदेश भी हमें मिलने लगे हैं। हम आपको इबारत पढ़ के सबसे पहले सुनाएंगे और उसके बाद गीतों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो इबारत है कुछ इस तरह, सुन रही सखी तीनों लोक की रानी के कदमों में सिर झुकाने को जी चाहता है। हाँ तो चल, काजल सजा, मेहंदी लगा के दुल्हनिया बन, डोली में सवार हो चल, और देख जरा ख्याल रखना वहां कोई भवरा बेईमान न मिल जाए जो कली कली चूमता फिरता है। उसकी उड़ती जुल्फों को देखकर कहीं पागल मन व्याकुल ना हो उठे। अच्छा, कहीं कोई मंत्र फेरा तो उस पिया संग नैना लागे तो। नाना दैया रे, पराई है, ऐसी जुस्तुजू ना कर। अरे सुन ना, हम तो उस गांव पे सदके जहां वो मिल जाए, जिसके इश्क की तोहमत उठाने को जी चाहता है। उसके इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे। क्या बात है, अब देखिए आपको ही बूझना है कि आज के गाने कौन से हैं। और बताइए कि इश्क जिसे तोहमत कहती है दुनिया, उसे उठाने के लिए क्यों हर किसी का मन व्याकुल होता है। इबारत के साथ हमने ये प्रश्न भी इस इबारत में डाल दिया है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के बारे में ही आज सबसे पहला गीत हमने लिया है, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफर और सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत।

सुहाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। आनंद पक्षी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओं, नवरात्रि का त्योहार और गरबा डांडिया की थाप ना हो, कदम ना थिरके, ऐसा कैसे हो सकता है। माँ की भक्ति से सराबोर माहौल, ढोल की गूंज और रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे लोग, कितना खूबसूरत होता है ना नवरात्रि का ये उत्सव। तो देखिए, अब आपसे हम जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे उससे पहले हमने गीत सुना दिया, लेकिन फिर भी हम जानना जरूर चाहेंगे आपसे कि जब नवरात्रि के आने का इंतजार आप करते थे तो कैसा उत्साह आप में रहा करता था, पारंपरिक परिधान का, गहनों का, या दोस्तों के साथ गरबा खेलने की योजनाओं का। और ये भी बताते चलिए कि गरबा और नवरात्रि से जुड़ी आपकी कोई खूबसूरत याद हो, कोई ऐसा खास किस्सा हो जिसे याद करके बड़ा मजा आता है, चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, तो हमारे साथ उसे जरूर साझा कीजिए।

तब तक लेते हैं हम आपके संदेश। जी हाँ, श्रोता कह रहे हैं कि हमारे कि नवरात्रि शुरू होते ही मैंने अपनी सखी यानी कि अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तीनों लोकों की रानी माता वैष्णो देवी के कदमों में फिर से सिर झुकाने को जी चाहता है। क्या बात है। तो वो कह रहे हैं कि माता रानी की भवन जम्मू कश्मीर में, जबकि अगस्त 2026 में भी हम दोनों बच्चों के साथ दर्शन करने को गए थे, तो सखी का जवाब था, आप जल्दी ट्रेन की टिकट रिजर्वेशन करवाइए, सभी को छुट्टियों के हिसाब से जाने को मिलेगा। क्या बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें नवरात्रि के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। आप सभी को भी हमारी तरफ से और विविध भारती के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी एक श्रोता कह रही है कि आज तो मधुर गीतों का रेला लगने वाला है, इश्क सृष्टि को संचालित करने का छुपा हुआ जरिया है, इसके तार बस साहित्य कला और समाज से नहीं मनोविज्ञान जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तक जुड़े रहे, इसीलिए इससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समर्पण का आनंद अपने पिया या महबूब के सामने खुद को पूरी तरह लुटा देने, सब कुछ न्योछावर कर देने में जो आत्मिक सुख और सुकून मिलता है वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं। दिल का पागलपन, इबारत में जैसा कहा गया है कि पागल मन व्याकुल हो उठे, मोहब्बत में एक ऐसा मीठा दर्द और दीवानगी होती है जहां बदनामी भी एक अनमोल तोहफा लगने लगता है। जी हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि आज आपने रंग तरंग प्रोग्राम में बहुत ही मन को सुकून देने वाला माता रानी की भक्ति रचना को सुनाया, गरबा गीत भी सुनाए, ऐसे भक्ति पदों से हम आनंदित होते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि रंग तरंग कार्यक्रम से अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। एक श्रोता कह रहे हैं आखिर इश्क तो वही है जिसे दुनिया इल्जाम समझती है और दिल अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। जी हाँ, इश्क कोई साधारण भावना नहीं बल्कि रूह की वह अनकही पुकार है जो तर्कों की सीमाओं को लांघकर सीधे हृदय में उतर जाती है। दुनिया की नजर में इश्क भले ही एक तोहमत हो मगर प्रेम करने वाले के लिए यही उसकी सबसे अनमोल दौलत है। यहाँ हरा कर भी जीतने का सुकून है, बिछड़ कर भी जुड़े रहने का विश्वास और बिना किसी वादे के उम्र भर किसी का होकर रहने का जुनून। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, अभी हमने आपसे पूछा है कि नवरात्रि और गरबा का जो उत्साह है वो आप में किस तरह बना रहता था और आप क्या तैयारियां करते थे, और कोई यादगार किस्सा हमसे आप साझा कीजिए। इस गीत के बाद हम आपके ये संदेश लेने वाले हैं। और देखिए, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार सुनने और देखने का मन करता है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है वो आपके लिए, है ना। और साथ ही जो गीत हम आपके सामने पेश करेंगे उस गीत की अदाकाराओं के नाम हमें आप बताएंगे जो महफिल में अपनी अदाओं और अंदाजों से समा बांध देती है। आवाजों का मुकाबला हो, नोक झोंक हो, अदाओं का जादू हो, तो फिर क्या ही कहने।

मुगले आजम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। देखिए हमारे श्रोताओं का जवाब भी आ गया है। हमने पूछा था कि इस गीत में जो अदाकाराएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं, तो श्रोताओं के जवाब हमें मिल गए हैं। मधुबाला और निगार सुल्ताना, बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमने इस गीत से पहले जो गीत सुनाया था माँ शेरोवाली का, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमने पूछा उसके जवाब भी आ गए, और हम उसी जवाब को अब लेने वाले हैं, आपके उन्हीं संदेशों को पढ़ने वाले हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गरबा की ऊर्जा और दुर्गा पूजा की भव्यता मिलकर भारत की अनूठी विविधता को दर्शाती है। एक तरफ जहां डांडिया की खनक से पूरा माहौल झूम उठता है, वहीं दूसरी तरफ शंख की गूंज और भोग के खिचड़ी लबड़ा का स्वाद मन को तृप्त कर देता है। सच कहें तो गरबा अपनों के साथ हंसने, सजने सवरने और बिना किसी फिक्र के झूमकर जीवन का जश्न मनाने का एक खूबसूरत बहाना है। क्या बात आपने कही है, जो हमें अपनों के संग खुशियों के अनमोल पल बिताने का मौका देता है। जी बिल्कुल सही। एक श्रोता ने कहा है कि हम हर साल नवरात्रि में खंडेला के पास पहाड़ी पर चामुंडा माता के मंदिर जाते हैं, वो हमारी कुल देवी है। साथ ही एक श्रोता कह रही हैं कि नवरात्रि से तो बचपन से नाता रहा है, अभी भी हम जुड़े हुए हैं, और डांडिया का तो क्या ही कहना, फिर सजना सवरना भी तो कितना प्यारा सा है, क्या बात है। एक श्रोता तो हमें बुला रहे हैं कि आइए गुजरात और बहुत मजा आएगा नवरात्रि में झूमने का। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आने की, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रही हैं कि पूजा जी आप और सभी श्रोताओं को वो नमस्कार कर रही हैं। नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, इश्क पर किसी का जोर नहीं, लाख तोहमत लगा लें, मन करता है पिया संग नैना लड़े, जी चाहता है इश्क में दुनिया लुटा के देख लेंगे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। उन्होंने इबारत से ही कुछ पंक्तियां उठाकर अपने संदेश में सजा दी है। और एक श्रोता ने कहा है कि माता रानी का प्यारा गीत, जो हमने इस कार्यक्रम के पहले आपको पहला गीत आपको सुनवाया, उसी के बारे में ये कह रही हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुहाग का सदाबहार गरबा सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में। और एक श्रोता कहते हैं कि नवरात्रि के आते ही चारों ओर डांडिया और रास गरबा की धूम मच जाती है। गुजरात में माता जी की आराधना करने का ये बहुत ही खूबसूरत माध्यम है, जिसमें गरबा को माता जी का स्वरूप मानकर सभी भक्तजन चनिया चोली और घेड़िया और रंग बिरंगे वस्त्रों में सज धज कर गोल घेरा बनाते हुए गरबा खेलते हैं, बड़ा मस्त समा होता है। साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो हमें धुनों की जानकारी हमें हमेशा कार्यक्रम के दौरान देते रहते हैं। यादों की महफिल की समाप्ति के बाद कौन है जो सपनों में आया झुक गया आसमान, इस तरह से उन्होंने हमें जानकारी दी है। और इस कार्यक्रम के पहले कोई प्यार से देखिए जादू भरे कोहिनूर, क्या बात है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो श्रोताओं अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, और साथ ही हम आपको बताते हैं कि अब जरा माहौल को बदलने की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इस नोकझोंक से निकलकर चलते हैं शादी के सपने देखने वाली दुल्हनिया के इस गीत की ओर, जहां सपने हैं साज श्रृंगार की बातें हैं सखी से बातें हो रही हैं। इस गीत की फिल्म का नाम हमें आप बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है, ये भी साथ में बताइए, जो शादी तय होते ही हमारे मन में उभर आता है, सपने दिखाता है। और ये भी बताइए कि जब किसी भी शादी का माहौल हो तो वो कौन सा गीत होता है जो अचानक बजाए जाने पर आप झूमने से खुद को रोक नहीं पाते।

जी हाँ श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है। वैसे इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, गुलजार ने लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। अब फिल्म का नाम हमारे श्रोताओं ने हमें जवाब भेजे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजे हैं, खुशबू है इस फिल्म का नाम। अब शादी के माहौल में धूम ना मचे ऐसा होता है कभी? अब ये कल्पना कीजिए कि शादी या किसी त्योहार का वक्त हो और गली मोहल्ले के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मेला सा लग जाता है ना? और ऐसे में उनसे जो दिल का नाता होता है वो हो सामने तो क्या होता है बताइए। बिल्कुल सही, शुरू होती है हंसी मजाक ठिठोली और जवाब देने की होड़, है ना, जो कि सुर और गीत के ताने बाने में बुन जाती है और बातों ही बातों में होता है दिलचस्प मुकाबला। अगले गीत की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ले लेते हैं ये संदेश कि हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, सुन री सखी मोहे विविध भारती बुलाए, जाना है गीतों की नगरिया, करना है सुरीला सफर, चुन चुन के लाई है पूजा पुष्प गीत विविध भारती के संग्रहालय से, मत देर करो कहीं एक ना बच जाए, हमें जाना है विविध भारती की नगरिया। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रहे हैं कि तेरी गलियों में जो बदनाम हुए तो क्या हुआ, कम से कम इस बहाने हमारा नाम तो हुआ। बिल्कुल, एक श्रोता कह रही है कि कार्यक्रम की बढ़िया शुरुआत सुहाग फिल्म के भक्तिपूर्ण गरबा नृत्य से। धन्यवाद। सुंदर आगाज सुहाग माँ के इस गाने पर हम सब ने गरबा डांस किया था। बिल्कुल सही, ये गीत तो है ही सदाबहार गरबा गीत। एक श्रोता ने कहा है कि नवरात्रि शुरू होते ही मैंने अपनी सखी यानी कि अपनी पत्नी से कहा कि तीनों लोगों की रानी, ये संदेश तो हम ले चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने

यात्रा की योजना बना ली माता वैष्णो देवी के कदमों में सिर झुकाने के लिए। क्या बात है, जरूर जाइएगा। और हमारे एक श्रोता ने तो हमें लिखकर भेजी है हमारे ही इबारत की कुछ पंक्तियां गीतों से सजी हुई, ठीक है। और कुछ एक और श्रोता कह रहे हैं कि इश्क वह खूबसूरत गुनाह है जिसे हर इंसान बार बार दोहराना चाहता है क्योंकि इसमें जो सुकून मिलता है वह अनमोल है। बिल्कुल, हमने इबारत में ये सवाल भी तो आपसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हर दिल इस इश्क के लिए, इस तोहमत को उठाने के लिए इतना मजबूर सा रहता है, है ना। तो बिल्कुल ये सुकून ही तो ढूंढ रहा होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए श्रोताओं, अब हम इस शादी की धूम वाले गीत से आगे के गीत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और देखिए इस गीत में होता क्या है, एक दिलचस्प मुकाबला। एक पक्ष कोई बात कहता है तो दूसरा पक्ष भी उसका जवाब उसी अंदाज में देता है। क्या आपने भी ऐसा मुकाबला अपने मोहल्ले, गांव या शहर में होते देखा है तो हमें जरूर बताइए।

0: नया दौर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी ने इस गीत की रचना की थी और तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम सुरीला सफर और अब लेते हैं एक संदेश। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेंद्र मुलकलवार।

0: सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम आगे बात करने जा रहे हैं। श्रोताओं के संदेश पहले लेते हैं कि श्रोता कह रहे हैं कि जब भी नया दौर का गाना ये वाला जो है बजता है तो हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो बोला करते थे कि पानी लेने के बहाने आ जा, बातें छोड़ दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। क्या बात है। देखिए, शरारतीपन हम लोग बचपन में बहुत दिखाया करते थे, लेकिन टीचर की डांट से ही हमने सीखा कि ये शरारतें हमें कैसे और कब नहीं करनी चाहिए, है ना। एक श्रोता ने कहा है कि गरबा खेलने का शौक बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी खूब होता है। मेरी 4 साल की नातिन रोज गरबा खेलने के बहाने डांस करती है और इस नवरात्रि के त्योहार का आनंद लेती है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि नया दौर, दिलीप कुमार, वैजंती माला, ओपी नैयर जी, उन्होंने इस गीत की डिटेल हमें भेजी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने हमें गीत लिखकर भेजे हैं जो हमारी इबारत से आज उन्होंने बूझ लिए हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने गीतों को बूझ लिया है और हमें लिखकर भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता कह रही है कि गरबा मेरे शहर वडोदरा की शान है, वडोदरा की सांस्कृतिक पहचान और उसकी आत्मा को दर्शाता है, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान यह उत्सव परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम पेश करता है, जहां भव्य कमर्शियल ग्राउंड्स और पुरानी गलियों के पारंपरिक गरबे दोनों ही देखने को मिलते हैं। संक्षेप में, यह त्योहार वडोदरा के नागरिकों को एकता और आस्था के सूत्र में पिरोता हुआ वाकई शहर की आन बान और शान साबित होता है। बिल्कुल नवरात्रि का त्योहार ही ऐसा है जो हम सबको एक सूत्र में बांध देता है। ऐसे ही हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने गीत की डिटेल्स हमें भेजी है, नया दौर। जी हाँ, और इसी तरह अगली जो हमारे श्रोता है वो कह रही है कि नया दौर, दिलीप कुमार, वैजंती माला, इस गाने में वैजंती माला जी ने जो लहंगा चोली पहने हैं वह लहंगा का चोली के डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। क्या बात है। जी, हमें भी जब भी हम देखते हैं वैजंती माला जी को, हमें तो उनका अंदाज बहुत पसंद आता है। इसे कच्छिया सिंधी कढ़ाई बोलते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब देखिए ऐसे माहौल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे अलबेले भी मिल जाते हैं जो शरारत करते हैं, छेड़खानी के अपने अंदाज से सबका मन बहलाते हैं। ऐसे चंचल, अलहड़ और शरारती मिजाज वालों से थोड़ा सावधान तो रहना ही चाहिए, है ना, क्योंकि वो बेईमानी भी इसी रंगीन अंदाज में कर जाते हैं। ऐसे भंवरों से तो जरा बच के ही रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, भंवरा जो कलियों के पास जाता है, ये तो उसका व्यवहारिक काम है, क्या इंसानों को ऐसी बेईमानी शोभा देती है। अच्छा, जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें बात तो भंवरे की ही हुई है। ये जो एक सखी है दूसरी सखी को ये बता रही है कि इस भंवरे से थोड़ा बच के, पर तुझे कैसे बताऊं। अच्छा, जो ये गीत हम बजाएंगे, बताइए इस फिल्म का नाम क्या है और कौन है वो भंवरा इस गीत में जिनका जिनका अब जिक्र आप हमसे करने वाले हैं।

हमारे श्रोताओं ने उन सवालों के जवाब भी हमें भेजे हैं जो हमने नहीं पूछे, लेकिन हमें तो आपका ये अंदाज भी बड़ा पसंद आता है। आपने फिल्म का नाम और संगीतकार गीतकार के नाम भी हमें लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये था मंचली फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एक श्रोता कहते हैं कि इश्क उम्र और शक्ल सूरत देखकर नहीं होता, पता नहीं चलता कि कब हो गया है। और इसी तरह से कई श्रोताओं ने हमें फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम भी लिखकर भेजे हैं जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया। इसी तरह एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत है, लता जी की आवाज़ में बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला यह गाना, तो अच्छा लग रहा है। हमें यह फिल्म का नाम तो नहीं पता, लेकिन हमारे श्रोताओं को अवश्य पता होगा, तो हमने अभी अभी तो नाम लिया है, अब तो आपको पता चल गया है, है ना। इसी तरह हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने भी ये जानकारी हमें दी है कि मंचली कली है लीना चंदावरकर और भवरा है इसमें संजीव कुमार, क्या बात है। हमने तो यही पूछा था कि भवरा कौन है, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है कि कली कौन है और भवरा कौन है। जी हाँ, संजीव कुमार इस गीत में भवरा है जिसकी बात कर रही है लीना चंदावरकर जी। ऐसे ही कुछ श्रोता कह रहे हैं कि गरबा के गीत शुरू होते ही बच्चे तो नाचते ही हैं, बुजुर्गों के पैर भी बैठे बैठे ही मस्ती में थिरकने लगते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि इश्क के लिए दुनिया से ये तोहमत लगाती है कि जो इश्क करे वो पछतावे और जो इश्क ना करे वो भी पछतावे। दुनिया वालों के लिए मेरा तो यह विचार है कि सच्चा इश्क जरूर करें, वो भी सिर्फ एक से, जो हम सफर भी हो और मरते दम तक उसी से इश्क करते रहें। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने ये संदेश सबके साथ साझा किया है। इस तरह एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म नया दौर के इस गाने तथा अन्य गानों में नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी के गीतकार और बाद में संगीतकार बने श्री प्रेम धवन जी ने, जिन्होंने संगीतकार ओपी नैयर को अपने मुंबई के शुरुआती दिनों में अपने घर में रखा था। बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जो है शरारत और बेचैनी से आगे बढ़ते हुए इश्क के उस सुकून की ओर हमें लेकर जाता है जहां हम सच में कह ही बैठते हैं कि हाँ नैना तो लड़ ही गए हैं। अब ये गाना तो है उमंग से भरा, प्रेम और इश्क को समर्पित। आप बताइए इस गीत में कई सारे त्योहार और नृत्य के रूप दिखाए गए हैं, तो आप बताइए कि आपको कौन सा त्योहार

जी हाँ, ये गीत था गाइड फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में। शैलेंद्र के बोल थे एस डी बर्मन का संगीत। श्रोता कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। एक श्रोता कह रहे हैं कि गाइड फिल्म का ये गीत भारतीय फिल्मों में सबसे बढ़िया फिल्माए गीतों में शुमार है। लता जी की वहीदा रहमान जी का अभिनय देखने लायक है। मेरी लिस्ट का चौथा गीत शामिल हो गया है, क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि वाह, ये तो मेरा पसंदीदा गीत है, अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री वहीदा रहमान का फिल्म गाइड का गीत। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि मुझे बिना शोर शराबे वाले त्योहार पसंद है। जी तो श्रोता, अगले गीत की ओर हम बढ़ें उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स और ले लेते हैं।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि अभिनेत्री फिल्म का ये गीत है और हेमा मालिनी और शशि कपूर इसमें अभिनेत्री और अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब। हालांकि हमने तो कोई प्रश्न ऐसा पूछा नहीं, लेकिन आप उसके बावजूद भी जब अपने जवाब इस तरह से गीत की डिटेल हमें भेजते हैं तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता ने कहा भी है कि मेरा भी कमेंट शामिल कीजिए। तो देखिए, आपका कमेंट भी शामिल हो गया है। आपने इस गीत की जानकारी हमें भेजी है कि ये फिल्म अभिनेत्री से गीत है। एक श्रोता कह रहे हैं कि ये सभी गीत मेरी युवावस्था के हैं। उस समय मन कोमल होता है और गीत को अपने मन में समा कर अपने आप को ही नायिका समझ लेती थी और आंख बंद कर डूब जाती थी। क्या बात है। एक श्रोता गाने का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी के गाए इस बेहतरीन गीत के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद भी कहा है और हम भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, सुनिएगा।

जी हाँ, यही था हमारी इबारत का आखिरी गीत। और इस फिल्म का नाम हमने पूछा तो हमारे श्रोताओं ने भी हमें सही जवाब लिख भेजे हैं। दिल ही तो है, यही है फिल्म का नाम। आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, साहिल लुधियानवी की रचना, रोशन का संगीत। देखिए, कार्यक्रम का वक्त भी तो हो चला है। अब आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा सीता और गीता फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी का गीत और आरटी बर्मन का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, बिजली और पानी की उपलब्धता बेहतर होगी और प्राचीन विरासत के संरक्षण को गति मिलेगी। उन्होंने निम्मू पदम दारचा सड़क का उल्लेख करते हुए कहा कि लगभग 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क यात्रा का समय 12 घंटे से घटाकर करीब 3 घंटे कर देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में लद्दाख में लगभग 1,800 किलोमीटर सड़क नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है।
1: आज केंद्र सरकार के लिए लद्दाख का विकास बहुत बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहाँ विकास की जरूरतों पर भी और भी अधिक ध्यान दिया गया है। 2019 तक लद्दाख में करीब 1800 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क था, आज ये बढ़कर 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। पहले यहाँ 19 बड़े पुल थे, आज इनकी संख्या करीब 75 हो गई है। हेलीपैड की संख्या भी 7 से बढ़कर 40 से ज्यादा हो गई है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जबलपुर से भोपाल और आगे इंदौर तक आर्थिक गलियारा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रि परिषद की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि इसके लिए उद्योग विभाग के माध्यम से एक नई कंपनी गठित की गई है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 100 करोड़ रूपये की अंश पूंजी दी गई है। इस कॉरिडोर की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, ताकि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से निर्णय तेजी से लिया जा सके। उन्होंने कहा कि जबलपुर, नरसिंहपुर और रायसेन का क्षेत्र पर्यटन, खनन, कृषि और भारी उद्योगों की व्यापक संभावनाएं रखता है। सड़क, रेल, हवाई संपर्क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज ग्वालियर में राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शाम 3:30 बजे आयोजित समारोह में 666 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 345, स्नातकोत्तर के 294 और पीएचडी के 27 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह में 4 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। इससे पहले राज्यपाल कृषि महाविद्यालय स्थित CAII में नवीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का लोकार्पण करेंगे। राज्यपाल कल 16 अक्टूबर को राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारोमिज्जे से हार का सामना करना पड़ा। अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहली बार कोई भारतीय पहलवान ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचा और पहली बार पदक हासिल किया। प्रदेश में आज से 18 अक्टूबर तक आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 5 संभागों में मौसम बदलेगा और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इसका अधिक असर देखने को मिल सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए 1 अक्टूबर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 13 अक्टूबर तक फॉर्म 6 के 5,641 आवेदनों का निराकरण किया गया है। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर परिसर में कल शाम आयोजित हुए कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भक्ति गायन और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मेरा युवा भारत के तत्वावधान में धार जिले के तिरला विकासखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

या आकाशवाणी मध्ये यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रसारण तक प्रतीक्षा कीजिए।

0: हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार

0: दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने

0: वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वॉर। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
4: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात

0: जो 879 हरियाणा का होता था वो 920, 925, 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूर दराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: ये गीत अभी आपने सुना फंटुश फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, तर्ज बनाई थी एसडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
1: दिल की भागदौड़ के

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया। जंगली है इस फिल्म का नाम, शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज शंकर जयकिशन की।

अब सुनिए मोहम्मद रफी को घराना फिल्म के इस गीत में। शकील बदायूनी ने इस गीत की रचना की है और संगीत बद किया है रवि ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
3: पेंटर बाबू
2: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
4: दिल तो पागल है,
2: दुश्मन
5: चिट्ठी न कोई संदेह,
2: गदर एक प्रेम कथा,
6: मैं निकला ओ गड्ड लेके,
2: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
7: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
2: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, एसएच बिहारी के बोल, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

बड़ा आदमी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत की रचना की है प्रेम धवन ने, संगीत पर किया है चित्रगुप्त ने, और आवाजें हैं उषा मंगेशकर और कमल बाल।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं जो कि है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति, सीआईडी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में मजरू सुल्तान।

सीआईडी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को, नमस्कार।

0: रही सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सामने बैठी हैं हंसती मुस्कुराती सी आरती।
1: मंदाकिनी जी, आपको और साथ में सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बहुत बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि ये समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ और साथ में इतना बढ़िया जो गरबा सब तरफ हो रहा है, चकाचौंध रोशनी ही रोशनी है, झालरें लगा रखी है, लोगों ने सजावट इतनी अच्छी कर रखी है हर सोसाइटी में, हर घर में, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो हवन की जो सुगंध आती है ना, सच में एकदम बहुत अच्छा लगता है।
0: सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि जो हम जब पूजा या अर्चना करते हैं, जिसे कहते हैं, हम एक विश्वास किसी शक्ति को मान के जब चलते हैं और पूजा अर्चना में लीन होते हैं, तो एक अदम्य शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। नहीं तो जिंदगी कई बार बड़ी सुस्त सी चलने लगती है, लेकिन इन दिनों हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है,
1: क्योंकि त्योहार की जो एक खासियत है ना, वो यही है कि आपको एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा से भर देता है वो। आप बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, नौ व्रत रखते हैं कुछ लोग तो लेकिन ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एनर्जी की, ऊर्जा की कोई कमी नहीं, बल्कि और आ गई ऊर्जा
0: बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि 9 दिनों तक जब हम किसी तरह का उपवास करते हैं और माता को याद करते हैं और हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का भोजन है उसे थोड़ा सा हम त्याग देते हैं और फलाहार की ओर बढ़ जाते हैं, तो एक अलग किस्म की शांति का।
1: और हम तो यही कहेंगे आप फलाहार ही ले, बहुत ज्यादा तला भुना, क्योंकि रहता है ना कि जब व्रत है तो बहुत तली तली ऐसी चीजें बनती हैं, आलू भी बनाएंगे तो तल तल के एकदम से बनाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा तला चीजें मत खाइए, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।
0: कई बार क्या होता है, फलाहारी आटे की हम पूड़ियां तल लेते हैं, मछलियां बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, बाजार में भी, कई शहरों में बाजार में भी फलाहारी मिर्ची बड़े, फलाहारी समोसे मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई व्रत है तो इन दिनों इन्हें ही खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने व्रत किया, उपवास किया है, तो थोड़ा सा इन चीजों से दूरी बनाए रखिए और फलाहार करिए,
1: इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे पूरे और एक ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी से महसूस होती रहेगी। तो क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम इस त्योहार का मजा भी ले सकते हैं और डांडिया खेल सकते हैं, खूब मजे से गरबा खेल सकते हैं।
0: सही बात है, जो है सब तरफ जो है डांडिया की धूम मची हुई है
1: जी हाँ,
0: और बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों। और अब अच्छा लगेगा हमें ये जानकर कि आज हमारे श्रोताओं के साथ हम क्या बातें करने वाले हैं।
1: तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है, पहले तो हम लेके आए हैं माता पिता से दूरी बनाते हुए बच्चे, जो आजकल ट्रेंड सा चल गया ना कि बच्चे भी जहां थोड़े से टीनेज में भी यहां तक ही आ जाते हैं, 17-18-19 साल के हुए नहीं, कि उनको लगता है अब हम अकेले रहे, अब हम क्यों किसी बंदिश में रहे, उनको लगता है माता पिता के साथ रहना यानी बंदिश में रहना, तो अलग रहने की उनको इच्छा होने लगती है कि हम अलग रहें, अपने तरीके से रहें और बाहर हम अपना जॉब करें या कुछ भी करें। तो ये जो आज देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है। और साथ ही हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री की, उसके अंदर हम लेकर आएंगे आज बिरू बाला रभा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे
0: जो समाज सेविका है,
1: बिल्कुल समाज सेवा में जिनका नाम है। और साथ ही हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे अपने ग्रामीण अंचल, लोक उक्तियां तो हम बहुत सारी जानते हैं, लेकिन जो ग्रामीण ठेठ ग्रामीण वाली जो होती है वो लोक उक्तियां कौन सी है।
0: अरे तो हमारे ग्रामीण श्रोता जो हमें सुन रही है वो तो बता देंगे,
1: बिल्कुल बताइए
0: किस तरह की लोकोक्तियां बोली जाती हैं,
1: कौन से गांव में, या बहुत सारे लोगों को मालूम होता है ना कि कौन ये गांव की जो लोकोक्ति है ये बहुत प्रसिद्ध है, तो उनको ऐसी कौन सी पता है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में आप बताइए। और साथ ही हम बात करेंगे उपयोगी टिप्स की, क्योंकि देखिए त्योहार चल रहे हैं और जब गरबा होता है ना, तो जब सब महिलाएं ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां सब इतनी सुंदर सुंदर सच के आती हैं, तैयार होकर आती है ना, लगता है कि सब अप्सराएं जमीन पर उतर आई हैं, तो वो उसके लिए हम लेकर आए घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सुंदर त्वचा आपकी।
0: अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं
1: लगेगा,
0: तो कैसे रखें इस त्वचा को खूबसूरत, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हमारे श्रोता हमें देंगे।
1: बिल्कुल बताइए आप हमें अपने, क्योंकि उनको पता है भाई गरबा में ऐसे ही थोड़ी ना अपनी शांति
0: चमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है, है ना। तो चलिए अब एक गाना हम सुन,
1: बिल्कुल एक भक्ति भावना से भरा हुआ गीत सुनते हैं,
0: आइए।

0: बहुत अच्छा गीत था आरती, और माता का ध्यान तो हम इन दिनों कर ही रहे हैं। वैसे तो हर दिन माँ हमारे ख्यालों और ख्वाबों में रहती ही है ना, लेकिन इन 9 दिनों में खास अर्चना हम करते हैं। और देखिए, तुमने कहा कि आजकल जो बच्चे हैं वो माता पिता से दूरी बना रहे हैं, या उनके मन में एक समय बाद आता है कि वे अलग रहना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा माता पिता के मन को तोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, उनको लगता है ना कि अब हम अपने जो अपने हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे हर वक्त, क्योंकि बचपन से उनको पाला, उनको उनके साथ में,
0: और उनका अधिकार होता है उन पर, उनके लिए एक फर्ज बनता है, बच्चों के लिए, बच्चों के मन में होना चाहिए कि माता पिता के साथ हमें रहना है। और भले ही उनका विवाह हो गया है, पत्नी हो गई है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अगर वो माता पिता से अलग रहने का सोचते हैं तो माता पिता की जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो बच्चों के लिए बुने हुए ख्वाब होते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता जो है माता पिता का होता है, और ये ऐसा

0: है जिसमें बच्चे की एक मुस्कान के लिए माँ अपनी थकान भूल जाती है और जो पिता हैं वो अपनी परेशानियों को अनदेखा करके परिवार की खुशियों के लिए भी निकल पड़ते हैं सुबह से शाम तक। और जिस बच्चे की पहली आवाज पर माँ दौड़ी आती है आज उसी बच्चे की आवाज सुनने के लिए माँ को कई बार फोन करना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है उम्र के एक पड़ाव पर उसी पिता को बच्चे के साथ दो कदम चलने के लिए उससे समय मांगना पड़ता है। और कभी कभी तो घर में सब साथ में रहते हैं लेकिन बातचीत केवल इतनी होती है, खाना खा लिया, हाँ पैसे चाहिए, भेज दीजिए, बस बातचीत खत्म। रिश्ता ऑनलाइन और भावना है ऑफलाइन।
0: बिल्कुल सही कहा आरती। आज की दुनिया पहले से बहुत बदल गई है। पढ़ाई की बात करें, नौकरी, प्रतियोगिता, महानगरों की जो भागदौड़ है और फॉरेन में बसने की जो ये चाहत है, इन सब ने परिवारों की जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, दादा दादी की कहानियां होती थी, माँ की रसोई के किस्से, पिता की सीख और भाई बहनों की नोक झोंक और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हमारा हिस्सा होता था। लड़ाई झगड़ा, मैं बच्चे भाई बहन इतनी चिल्लपों,
1: लड़ते झगड़ते हम लोग बड़े हुए।
0: बिल्कुल।
1: और वो चीज एक अलग ही होती थी। और आज जो छोटे परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में माता पिता से जो दूरी हो जाती है ना, वो हमेशा भावनात्मक दूरी का संकेत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप, हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज के लिए जाना पड़े, लेकिन वो दूरी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप गए लेकिन मन से दूर नहीं हुए। लेकिन आजकल क्या है ना कि बच्चे मन से भी दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे दूर रहकर भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। आज मोबाइल पर हमारे सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर 10 मिनट बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और हम दुनिया भर की तस्वीरों पर अपनी राय देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन माँ की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मम्मी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। खासतौर से बेटे, उनके लिए ज्यादा हम कहेंगे कि वो बात कब आता है उनका, इसका तो जवाब न तो माँ के पास होता है न उस बच्चे के पास होता है। और एक बड़ा घरों में एक आर्थिक और बड़ा दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिलता है कि माँ कहती है बेटा जरा मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, तो बेटा कहता है मम्मी 5 मिनट बस।
1: और मजे की बात यह है कि माँ के 5 मिनट में जो माँ मांगती हो, 5 मिनट में चाय भी बन जाती है, 2 बार गैस बंद हो जाती है, पड़ोस की खबर आ जाती है, लेकिन बेटे के 5 मिनट में मोबाइल की बैटरी 10% और कम हो जाती है। और जब माँ पूछती है किससे इतनी बातें कर रहे हो, तो जवाब मिलता है बस दोस्तों से। माँ मनी मन सोचती है काश मैं भी अपने बेटे की दोस्ती होती।
0: हाँ, दोस्त बनते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे जो है कहाँ बात करना पसंद करते हैं सबसे बड़ी बात ये है।
1: बिल्कुल।
0: और ये बातें सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानते। तो इन बातों के पीछे जो है उनकी चिंता है, उनके अनुभव है, सुरक्षा की भावना है, ये छुपी होती है। मगर जब बातचीत बार बार शिकायत या में बदल जाती है तो बच्चे भी अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये दूसरा सिक्के का दूसरा रूप है।
1: बिल्कुल।
0: तो कई बार ऐसा भी होता है।
1: जी बिल्कुल। और याद रखिए, प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन संवाद में सम्मान भी बहुत जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए और माता पिता को भरोसा। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर नई पीढ़ी का अपना अपना समय होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। उसी तरह माता पिता के पास जीवन का अनुभव होता है जिसे अनसुना करना भी अच्छा नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और समस्या पीढ़ियों के अलग होने में नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझने की जो कोशिशें हम बंद कर देते हैं ना, वो बहुत दिक्कत है। रिश्ते में दूरी झगड़े से नहीं है, जो दूरी है हमेशा झगड़े से नहीं आती है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन बातचीत धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे अपनी खुशियों में, परेशानियों में माता पिता से साझा करना उस बात को बंद कर देते हैं और घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है।
1: बिल्कुल। और माता पिता अपनी भावनाएं बताने के बजाय चुप रहना शुरू कर देते हैं और फोन पर बातचीत केवल जरूरी कामों और पैसों तक सीमित हो जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते। छोटी छोटी बातों पर संवाद करने के बजाय क्या करते हैं, वो नाराजगी होने लगती है, गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। और हालांकि इन संकेतों का अर्थ ये नहीं कि हर परिवार में रिश्ता बिगड़ ही रहा है।
0: हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा, लेकिन खुशियां भी नहीं आ रही है। मन खुश नहीं रहता है, मन भारी रहता है। तो कभी पढ़ाई का तनाव हो सकता है, कभी नौकरी का दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती हैं, पुराने मतभेद भी जो है हमारे संवादों को, बातचीत को प्रभावित करते हैं आरती। इसलिए तुरंत आरोप लगाने के बजाय प्यार से हमें पूछना चाहिए कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, क्या तुम किसी परेशानी से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, या मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी किसी को समाधान नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है, जो हमें नहीं मिलता।
1: बिल्कुल, और इन छोटे सवालों में अपनापन छिपा होता है। दूरी को केवल किलोमीटर से मत मापिए कि वो उतनी दूर है, उतने किलोमीटर दूर है। और बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं, वो नियमित फोन कॉल, वीडियो कॉल, त्योहारों पर मुलाकात और स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने माता पिता से जुड़े रह सकते हैं। जरूरी है माता पिता भी अपनी व्यस्तता को बनाए रखें, कि ऐसा नहीं कि बस आप खाली बैठे रहें तो फिर आपको और चिंता होने लगेगी और लगेगा कि कोई आए साथ में। तो अपने मित्रों से मिलना, रुचियों को अपनी, जो आपके शौक हैं उसको समय देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: अपने आप को बिजी रखना।
0: लेकिन वही है आरती कि बिजी रखने के चक्कर में भी कई बार हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। तो इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीने का अंदाज खो दें या जो सुख शांति है, ठहराव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है ना। ठहराव होना बहुत जरूरी। तो बच्चों में क्या हो गया, ठहराव नहीं रहा तो जुड़ाव भी नहीं रहा ना। अपनी पूरी खुशी केवल उनकी अपने बात पर निर्भर रहती है कि वो किससे खुश रहते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्ते में डर नहीं होना चाहिए, अपमान या लगातार नियंत्रण करना। किसी को हम नियंत्रण में कर लेते हैं, हाँ। कंट्रोल में करना जिसे कहते हैं, या हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये साथ रहने से रिश्तों की सफलता नहीं मानी जा सकती। बल्कि एक दूसरे की रिश्तों में क्या होता है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हाँ। उनकी शिकायतें, उनकी सलाह, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन सच ये है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, और बचपन में जो हाथ हमें गिरने से बचाते थे, उन्हें उम्र के साथ हमारे धैर्य और सहारे की जरूरत भी हो सकती है। और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे, वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है, बल्कि संवाद करना, संवेदना जताना, प्यार मोहब्बत है ना जिसे कहते हैं ना, सहानुभूति, ये सभी होना चाहिए। और बच्चों, माता पिता को भी बच्चों की दुनिया को समझना होगा, और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता का प्यार केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है। तो दोनों तरफा ये समझना पड़ेगा। महंगे उपहार देने से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं, आपसी प्यार सम्मान देने से वो रिश्ते कायम रहते हैं। लेकिन प्यार से पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, सब अच्छा है, मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे दिलों में जो दूरियां हो गई हैं उसे हम कम कर सकते हैं। तो हम तो हर बच्चे से, हर माता पिता से यही कहेंगे कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अपने रिश्तों में करीबी लाएं, है ना, दूरी नहीं लाएं।
1: बिल्कुल, और अभी हम अपने श्रोताओं को और करीब लाते हैं एक प्यारा सा गीत सुनवाकर।

0: हाँ तो बहुत ही पुराना गीत और बहुत ही प्यारा गीत था ये।
1: बुझ मेरा क्या नाम रे।
0: हाँ, नदी किनारे नाम रे, क्या मतलब पुराने गीतों की बात करें तो सुनते ही रह जाते हैं।
1: पुतला मतलब अपना पूरा पता भी तुमने बता दिया कि नदी किनारे गाँव है।
0: बिल्कुल, और हमारे भी जो श्रोता है हमने उनसे भी कहा था कि उनके गाँव में कौन कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है, उसका जिक्र उन्हें हमारे साथ करना भी है।
1: जी हाँ,
0: तो अभी हमारे श्रोता लिखते हैं आरती कि माता पिता और बच्चे व्यस्त संतान जो है उनके बीच बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भावनात्मक अलगाव, विचारों का अंतर और संवाद की कमी है। जीवन शैली और उम्मीदें पुराने समय से काफी अलग हैं। बच्चे अब केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक शांति और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। कई बार माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें नियंत्रित करने या बार बार सलाह देने लगते हैं, जिससे बच्चे हस्तक्षेप या अविश्वास मानते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनके उनकी बात माने बिना किसी बिना रोक टोक के सुनी जाए, लेकिन कई बार माता पिता अपनी पुरानी बातों या अपने संघर्षों का हवाला देकर बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं। तो माता पिता अक्सर बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना त्याग किया है, जिससे नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानकर माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य मानती है। डिजिटल और अत्यधिक व्यस्त जिंदगी, गैजेट्स और भागदौड़ वाली जिंदगी ने भी परिवार के सदस्यों के बीच के वास्तविक संवाद को बहुत कम कर दिया है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी होने के बाद बच्चे जो अक्सर है वो डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चों को घर में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं और कई बार गलत दोस्तों या व्यसनों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दूरी भविष्य में बुढ़ापे में माता पिता की उपेक्षा का कारण बनती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बिखर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ती जो दूरी है वो एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके मुख्य कारण, इसे कम करने के उपाय बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं कि पीढ़ी का अंतर है, संवाद की कमी है, डिजिटल लत है, व्यस्तताएं हैं, स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, मोबाइल की लत के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से माँ बाप से कटते जा रहे हैं। और इस दूरी को कम करने के उपाय भी कहते हैं कि आप जो है बच्चों की बात को बिना बीच में काटे तुरंत बचाव की मुद्रा में आए, सुने, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी सीमाओं का सम्मान करें, दोषारोपण छोड़ें और समय और बदलाव को अपनाएं। ये जरूरी है, तभी जाकर ये दूरियां थोड़ी सी पाटी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच लगातार झगड़े या तनाव का माहौल रहता है वहां बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे माहौल से बचने के लिए वो बाहरी दोस्तों या डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर बनने का भारी दबाव डालते हैं। उनकी अपनी क्षमता या पसंद, जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको नजरअंदाज करने और हर समय दूसरों से तुलना करने के कारण

0: बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं और अपने माता पिता से कतराने लगते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल में करने की जो माता पिता की आदत है ना, वो भी जो है बच्चों को एक समय बाद दूर कर देती है। बच्चे अभी तो क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, बाद में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दूरी बना लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वे कई बार ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना जरूरी है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माता पिता ही हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर एक विश्वास को लेकर आना। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं यानी कि कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई कोचिंग में उलझे हुए हैं, और घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी के विचार, उनका पहनावा, करियर के चुनाव और जीवन जीने का तरीका पुरानी पीढ़ी से काफी अलग है। जब माता पिता पुरानी सोच या पुराने नियमों को थोपने की कोशिश करते हैं तो बच्चे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम माता पिता को दूर करके बाहर कहीं भगवान को ढूंढने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु देखा जाए तो माता पिता ही भगवान रूप में हमारे घर में विराजमान है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, कभी करके तो देखिए, ये लिखते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण उलझे हुए हैं। घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय, जैसा कि अभी आपने कहा, इन्हीं विषयों पर बातचीत भी करते रहते हैं।
0: बिल्कुल, श्रोता है जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे बड़ा मुद्दा है। बच्चे के पास बैठकर बातें भी नहीं करते हैं, वो अपने मोबाइल, वीडियो कॉलिंग, चैट पर ही लगे रहते हैं। माता पिता अपने अपने व्यवसाय में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जब से पापा की मृत्यु हुई तब से भाई और बहन माँ के पास ही रहते हैं, और मतलब मम्मी नजदीक ही रहती है, कोई फोन आया तो तुरंत उसका जवाब देते हैं। हमारा तो फोन टूट गया, इसलिए बहन के फोन से ये संदेश साझा कर रहा हूँ। असल में जो इतना मतलब वो फोन बता रहे हैं अपना, उनका गिरा तो उसका डिस्प्ले चला गया था। तो माता पिता अगर किसी के हैं साथ में तो बच्चों को उनके साथ बातें करनी चाहिए, और मतलब उनको अकेले उस पे नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे दिल से दूर नहीं होते, दूरी होती है काम के कारण, क्योंकि उन्हें अपना काम धंधा संभालना होता है, जिंदगी चलानी होती है। और एक बात है कि माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं, क्या उनके जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव है और उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए उन्हें उच्च विचारों से भरे पंख लगाकर उड़ने के लिए एक विशाल गगन में आजादी देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, और माता पिता, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर संवेदनशील विषय है, और अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वो कई बार ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना आवश्यक है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक जो है उनके माता पिता ही हैं। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि माँ बाप ने अपनी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, अब जब उनके कदम धीमे पड़ने लगे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनका हाथ थामकर कुछ दूर चल लेना भी प्यार जताने का बहुत सुंदर तरीका है।
1: बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को उठाया और ये साबित कर दिया कि माता पिता और बच्चों को आपसी तालमेल और समन्वय रखना कितना जरूरी है ना।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आरती, अब वक्त है एक अंतराल का।
0: बिल्कुल, अंतराल लेते हैं।

0: हाँ तो आरती,
1: हाँ अब हम बात करते हैं पद्मश्री की जो सेगमेंट हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं बीरूबाला राभा जी की। देखिए मंदाकिनी जी, समाज जो समाज सेवा होता है ना उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है,
0: बिल्कुल
1: है ना। और मानवाधिकार जो यानी उसके लिए कोई काम करता है ना तो समझिए बहुत ही बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: ऐसी ही थी बीरूबाला जी।
0: बीरूबाला जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो बीरूबाला राभा जो है असम की एक महान समाज सेविका और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के खिलाफ प्रचलित बहुत सी कुप्रथाओं, अंधविश्वास और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल। और जिस समाज में किसी महिला को दुर्भाग्य या बीमारी का कारण बताकर प्रताड़ित किया जाता था वहां बीरूबाला ने साहसपूर्वक लोगों को जागरूक किया और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
0: हाँ बिल्कुल, उनका जन्म 1954 में असम के गोलपाड़ा जिले के ठाकुरविला गाँव में हुआ था और उनका संबंध जो है

0: राभा जनजाति समुदाय से था तो उनका बचपन जो है आर्थिक कठिनाइयों के बीच में बीता। जब वो लगभग 6 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन भी हो गया था।
1: बिल्कुल, और परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। औपचारिक शिक्षा अधिक आगे तक नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
0: हाँ, बचपन में ही उन्होंने गरीबी, सामाजिक रूढ़ियों और महिलाओं की सीमित स्वतंत्रता को बहुत करीब से देखा था। तो बीरूबाला का जो विवाह है 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। उस वक्त 15 वर्ष की उम्र बहुत हुआ करती थी।
1: बिल्कुल,
0: और उनके पति किसान थे और उनके 3 बच्चे थे। विवाह के बाद उनका जीवन सामान्य ग्रामीण परिवार के घरेलू जिम्मेदारियों के बीच में बीता था।
1: और लेकिन एक घटना ने उनके विचारों को एकदम बदल दिया था और उन्हें समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। और वर्ष 1985 के आसपास उनके जो बड़े बेटे थे धर्मेश्वर, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इस दौरान एक स्थानीय झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने बीमारी को अलौकिक शक्तियों से जोड़कर भय पैदा कर दिया और उनकी और उस बच्चे के जीवित रहने को लेकर भी निराधार भविष्यवाणी की थी उसने।
0: ओहो, फिर?
1: और फिर उसके बाद बेटे की, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं और उसका इलाज करवाती रही वो। तो इस भविष्यवाणी के जब के बेटे के ठीक होने के बाद, जब वो ठीक हो गया अपने दवाइयों को लेकर के, तो बीरूबाला ने महसूस किया कि अंधविश्वास और झूठे दावों के कारण लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है कि लोग इलाज कराने के बजाय झाड़ फूको इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो यही घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उन्होंने तय किया कि वो लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने और ऐसी मान्यताओं के कारण प्रताड़ित होने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए वो काम करेंगी।
0: बहुत बड़ी बात। अक्सर लोग जो है इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह की जो है अंधविश्वास और कुरीतियों की बातों में आ जाते हैं और जान भी गंवा देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो असम में कुछ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कुप्रथा के नाम पर महिलाओं को बीमारी, मृत्यु या फसल खराब होने या उनके अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता था। तो ऐसी महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार और धमकियां और हिंसा का सामना भी करना पड़ता था। आरती,
1: बिल्कुल, बहुत वो उस समय का जो समाज था बहुत रूढ़ियों में जकड़ा हुआ।
0: बिल्कुल,
1: था।
0: बिल्कुल सही कहा। और बीरूबाला ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी बीमारी या दुर्भाग्य के लिए किसी महिला को जादू टोने का दोषी ठहराना गलत है और बीमारियों के लिए वैज्ञानिक सोच और उचित चिकित्सा की जरूरत है, न कि अंधविश्वास की।
1: बिल्कुल, और उनका संघर्ष आसान नहीं था क्योंकि लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज को आप चीजों को बदल सकते हैं लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल सकती,
0: बदली जा सकती।
1: तो बहुत ही मुश्किल था उनका संघर्ष। उन्हें सामाजिक विरोध, अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें भी कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी, उस कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी उनको, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती रही और संकट में फंसी महिलाओं की मदद करती रही।
0: बीरूबाला ने अपने गाँव में महिलाओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मिशन बीरूबाला नाम के संगठन की एक शुरुआत भी कर दी। और इस संगठन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वकील और पीड़ित महिलाओं की भागीदारी रही। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? महिलाओं के प्रति कुप्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागरण जगाना।
1: बिल्कुल, और झूठे आरोपों से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास करना, गांवों में वैज्ञानिक सोच और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस देना। उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली और समाज के अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े जिनकी वो सोच बदलने में कामयाब हो गई थी, तो उन्होंने भी इससे जुड़ना स्वीकार किया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और बीरूबाला राभा ने संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, जो डायन कुप्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने में योगदान दिया। कैसी कैसी कुप्रथाएं थी।
1: बिल्कुल,
0: और स्त्रियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे आरती
1: जी।
0: और 2015 में असम सरकार ने असम विद हंटिंग जो है एक्ट जो है पारित कर दिया था।
1: बिल्कुल, जो ये विच हंटिंग का प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट जो था ना, बहुत मील का एक पत्थर माना जाता
0: है।
1: बिल्कुल, उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में महिलाओं को बचाव मिला कि जो उस समय उनको जान से कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। और इस कानून का उद्देश्य किसी को भी डायन बताकर कुछ कुप्रथा का नाम देकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने, बदनाम करने और उसके विरुद्ध हिंसा करने जैसी गतिविधियों को रोकना था इस कानून का काम। और ये कानून वर्ष 2018 में लागू हो गया और बीरूबाला और उनके सहयोगियों के लंबे अभियान ने इस सामाजिक समस्या को सार्वजनिक चर्चा और कानूनी सुधार के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
0: बिल्कुल सही कहा। जब कोई कानून आ जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जो है फायदे जो हमें दिखते हैं वो दिखने लगे उस दौरान। और उनकी प्रमुख सम्मान और उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में उनके सामाजिक योगदान के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली।
1: और वर्ष 2018 में उन्हें विमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन का

0: सम्मान मिला। 2005 में महिलाओं के अधिकार और अंधविश्वास के विरुद्ध उनके संघर्ष को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क नामक महिला संगठन ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया और इन सब के साथ भारत सरकार ने उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया।
1: क्या बात।
0: और फिर लेकिन 13 मई 2024 को गुवाहाटी असम में लंबे समय तक वो बीमार पड़ गई थी और बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल उच्च शिक्षा या आर्थिक शक्ति आवश्यक नहीं होती है, संवेदना, साहस और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत नहीं थी। ग्रामीण किसान के परिवार में वो उनका विवाह हुआ था, लेकिन उनमें संवेदनाएं थी, साहस था और दृढ़ संकल्प की जो शक्ति थी उसने उन्हें पद्मश्री तक पहुंचाया और वो महान करने वाली महिलाओं में शामिल हो गई।
0: बिल्कुल।
1: और अब एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: हाँ मंदाकिनी जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ लोकोक्तियों की जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं।
1: अच्छा, हमारे श्रोताओं ने लिखी,
0: बहुत सारी भेजी हैं, बहुत सारी उन्होंने एकदम भर भर के भेजी हैं।
1: अच्छा।
0: तो हम लेते हैं श्रोताएं उनका, लेते हैं कमेंट। तो लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां बड़ी

0: बेमिसाल हैं। और यहाँ हमारे यहाँ तो डांडिया नृत्य का पंडाल लगा हुआ है, जैसे कि एक है उन्होंने लिखा है, एक है बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, मतलब इस तरीके की कहावत जो रहती है लोकोक्तियां वो है। और एक मारवाड़ी कहावत है, एक हमारे जो श्रोता है लिखते हैं कि जीना रा मर जा बादशाह रुलाता फिरे वजीर, अर्थात जब घर का मुखिया का ध्यान तो जाए तो परिवार बिखर जाता है, मतलब इसका ये कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि मालवी भाषा में कहावतों को केवाड़ा या ओखाड़ा कहते हैं। मालवा क्षेत्र के लोक साहित्य और आम बोलचाल में इन केवाड़ों का बहुत बड़ा और समृद्ध भंडार है। मालवी केवाड़ा के कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि आंदा के आगे रोणों ने अपना दीदा खोना, यानी किसी संवेदनहीन व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोकर समय बर्बाद करना, है ना। एक लिखते हैं, आंदो उठे ने घर का ने कूटे, अपनी परेशानी में अपने करीबियों या स्वजनों को जो तंग करता है, और आंदो कुकड़ो घट्टी दोरो, किसी एक ही जिद या काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, और एक लकड़ी के दो बटका, यानी आपस में फूट पड़ना या परिवार का विभाजन हो जाना।
0: अच्छा, तो काफी मतलब अनसुनी, ये सुनी भी नहीं है,
1: ये हमने नहीं सुनी है। वाकई आपने बहुत अच्छी लोकोक्तियों को हमारे सामने रखा है, क्योंकि हम ये तो कुछ चीजें तो हमारे यहाँ बोली जाती है, लेकिन आपने जो अभी कहावतें लिखी है वो शायद हमने नहीं सुनी है, है ना
0: जी। तो हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी लोकोक्तियां बोली जाती है, लेकिन ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित है। चैत मीठी चीमरी, बैसाख मीठो मट्ठा, जेठ मीठी डोबरी, आषाढ़ मीठो लटा। इसका अर्थ है कि चैत में ककड़ी यानी चिमरी, बैसाख में मठा यानी कि छाछ, और छाछ जेठ में महुए की डोबरी, और आषाढ़ में महुए का लाटा सबसे मीठा और उत्तम लगता है। बिल्कुल, ये अनसुनी ये भी थी ना।
1: ये वही श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण लोकोक्तियां केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों का सार है। इनके माध्यम से बुजुर्ग बिना लंबा उपदेश दिए बच्चों को जीवन की बड़ी सीख दे देते हैं, और इनमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, सीख भी है, और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की सीख भी होती है। बहुत सी मशहूर लोकोक्ति इन्होंने लिखा है, गई भैंस पानी में, यानी किसी काम का बिगड़ जाना या मेहनत पर पानी फिर जाना, और ऊंट के मुंह में जीरा अपन कहते हैं ना, और घर का भेदी लंका ढाए, और दूर के ढोल सुहावणे, अदजल गगरी छलकत जाए। ये सारी कविताएं जो लोकोक्तियां हैं वो इन्होंने बताई हैं।
0: बिल्कुल, एक हमारे और श्रोता जो लिखते हैं कि अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, आंबा मतलब आम के पेड़ पर समय आने पर ही आम पकते हैं, ना बोलवा मना गुड़, मतलब चुप रहने में ही नौ गुण समाये हैं, और जाजा हाथ रलिए मणा, मतलब मिलजुल कर काम करने से काम जो है वो आसान और झड़पी होते नहीं तुरंत होता है, और टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बसी लोकोक्तियां अलग अलग प्रदेश की जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, जैसा भी आपने पढ़ के बताया था, तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने लिखी है लोकोक्ति। और देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं,
0: और साथ ही हमें एक श्रोता जो लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकोक्तियां होती हैं ये उनके यहाँ तो मतलब जो होती ही हैं, लेकिन जहाँ शहरी लोग हैं वो भी उनका बहुत बहुत उपयोग करते हैं, वो तो करते ही गाँव वाले, और वो इतनी अच्छी और चीजों को सिखाने वाली होती है कि उसका उपयोग करने के बाद हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और बहुत सी चीजों को हम कम शब्दों में कहना सीख जाते हैं, और शब्दकोश भी होती है ये, जिससे शब्दों का भंडार हमें मिलता है। तुमने बताया कि कैसे कैसे उसका उपयोग होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आगे नाथ जानवरों के मुंह में लगाए जाने वाली जो रस्सी है, न पीछे पगा से गाय बैल को बांधा जाने वाली रस्सी, ये आज भी गांव के घरों में उपयोग होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से स्वतंत्र हैं या परिवार में इनका कोई नहीं है, यानी आगे नाथ और न पीछे पगा, इनके परिवार में कोई है, कोई नहीं है, ये अकेले हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। बिल्कुल नई लोकोक्ति है ये हमारे लिए।
0: और एक हमारे साथी साथी हैं जो लिखते हैं कि गांव की चौपालों और रोजमर्रा की बातचीत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन लोकोक्तियों का, और खेती किसानी और मौसम से जुड़ी हुई ये कहावतें हैं, ये लोकोक्ति हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, कृषि को सबसे उत्तम कार्य, व्यापार को मध्यम, और नौकरी को अधम या सबसे पीछे माना गया है, और इस लोकोक्ति के अनुसार। और अब पछताए होश का जब चिड़िया चुग गई खेत, घाघ ग्रामीण जीवन में मौसम और कृषि को लेकर काफी कवि घाघ की कहावतें बहुत रची बसी हैं। जब बरसेगा उत्तरा नाज न पावे कुत्रा, यदि उत्तर में नक्षत्र में बारिश हो, उत्तर नक्षत्र में बारिश हो तो अनाज इतना होता है मतलब कुत्ते में लेकिन जानवर भी नहीं खा पाते हैं, और भैंस के आगे बीन बजाय भैंस खड़ी पगरा, ये तो सभी जानते हैं।
1: तो बहुत अच्छी कहावतें हमारे लोकोक्तियां जो हैं हमारे श्रोताओं ने हमें उन नई लोकोक्तियों से परिचित करवाया है जिनका प्रयोग हम कम से कम शहरों में नहीं करते
0: हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए,
0: सुनते हैं।

0: भाई कोई माने या न माने, आरती तुम्हारी त्वचा तो बहुत ही चमकदार लगती है मुझे।
1: तो हम बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे लिए नुस्खे लेकर आए हैं घरेलू, तो हम ले लेते हैं उनको। हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाना, इससे भी त्वचा में निखार आता है। और मसूर की दाल को दूध में भिगाकर और इसको पीसकर पेस्ट कर चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं तो उससे बहुत फायदा मिलता है। और बहुत सही लिखा है इन्होंने, ऐसा मैंने आजमाया भी, बहुत अच्छा नुस्खा है उनका।
0: अच्छा,
1: तो गरबा में बिल्कुल आप ही आप दिखाई देंगे, मजाक लीजिए।
0: तो मैं भी आज इस नुस्खे को
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: गरबा में जाकर नृत्य करती हूँ, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एलोवेरा जेल जो है, ताजे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और नई कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ा देता है। और बेसन और हल्दी का पैक भी लगा सकते हैं, बेसन चुटकी भर, हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर सामान्य पानी से धो लें, और ये नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। लेकिन हल्दी को लगाने के बाद क्या है, हमें थोड़ा धूप में कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो साथी हैं लिखते हैं कि एक चम्मच फिल्टर कॉफी, एक चम्मच दही में 2-3 बूंदे नींबू के रस की डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर और गर्दन पर लगाइए, थोड़ा सा सूखने पर हाथों से मसाज करें और पानी से धो लें, त्वचा साफ सुथरी हो जाएगी। और साथ में एक और दूसरे श्रोता है उन्होंने लिखा है कि मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी होती है, मुल्तानी मिट्टी हल्दी दूध दही बेसन नींबू पपीता संतरे के छिलके त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनसे कई तरह के उपटन बनाए जाते हैं, फेस पैक बनाए जाते हैं। तो इन्होंने बालों के लिए भी बता दिया कि रीठा शिकाकाई और आंवला बहुत लाभदायक होता है। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर भेजे,
0: बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हम शुक्रिया कहते हैं और एक आखिरी गीत और सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं गीत।

0: तो
1: हाँ, दिल देके देखो भाई दिल तो दिया हुआ है हमने, मंदाकिनी जी को भी दे रखा है और साथ ही अपने सभी श्रोताओं को सभी सखियों को सखाओं को दे रखा है
0: बिल्कुल, और तुम्हारा दिल भी हमारे पास है
1: बिल्कुल
0: जी। तो अब इन्हीं बातों के साथ जो है कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग और संगीत की मिठास घुली होगी, है ना? तो आइए आज फिर सजाते हैं गीतों की ये महफिल आपकी बातों और आपकी पसंद के साथ। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया यूपी उत्तर प्रदेश से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। मैम आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। मैम आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत बेहतरीन है। मैम
0: आपका सुनने का अंदाज भी बेहतरीन होगा तभी आपको हमारा प्रोग्राम बेहतरीन लगता है ना?
1: जी मैम, काफी दिनों से ट्राई कर रहा, काफी दिनों में फोन लगा मेरा, कम से कम 2 साल में आपको लगा। आपकी आवाज सुनते हैं घर में, बच्चे सुनते हैं, मैडम सुनती हैं, अम्मी सुनती हैं, तो बहुत खुश होती हैं कि मैम की आवाज में मिठास होते हैं।
0: आपके सुनने में भी मिठास होगी। और बताइए क्या करते हैं?

0: मैम यहाँ समोदिया चौराहे पर हमारी चावलों की दुकान है, हम हर वैरायटी का चावल बेचते हैं। मैम
1: तो बताइए आपकी दुकान में कौन कौन सी वैरायटी के चावल हैं?
0: मैम हमारे पास हर वैरायटी का चावल है, बासमती है, 1121 है, 1509 है, 26 है, सरबती है, बहुत सारी वैरायटी आती है मैम, एक दो नहीं है, कम से कम 15-20 वैरायटी का चावल बेचते हैं।
1: फिर तो आपकी दुकान बहुत फेमस होगी।
0: जी बिल्कुल मैम, इस महीने में तो ज्यादातर बहुत बिक्री होती है क्योंकि मुस्लिम धर्म के तरह से 11वीं शरीफ होती है हुजूर वो आजम के नाम की, तो ज्यादा बिक्री होती है मैम।
1: अच्छी बात है, वो हर जगह ये होता है कि हम अपने अपने त्योहार मनाते हैं और खास पकवान बनते हैं, तो लगता है कि भाई कहीं चावल है कहीं गेहूं है।
0: जी बिल्कुल।
1: अच्छा इलिया जी ये बताइए कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं ना, लेकिन क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसी छोटी सी बात होती है जो हर दिन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है?
0: जी जी मैम, अगर जैसे हमारा थोड़ा बहुत मूड खराब होता है ना, आकाशवाणी विविध भारती सुनते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है मैम।
1: अरे वाह, तो आपने अपनी थकान मिटाने का तरीका विविध भारती में चुना है?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बहुत अच्छी बात है, चलिए आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: फिल्म का नाम है प्रेम रोग और गीत के बोल है मेरी किस्मत में तू नहीं शायद क्यों तेरा इंतजार करना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी बहन को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन है, अपना नाम बताइए हमें।
1: आपका भाई उदयलाल टेलर, उदयपुर राजस्थान से।
0: क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका।
1: विविध भारती से जुड़े रहते हैं तो मस्ती रहते हैं,
0: ये तो बिल्कुल सही
1: विविध भारती है, वहाँ कोई गम प्रवेश कर ही नहीं सकता है।
0: इतनी पसंद है आपको विविध भारती।
1: जी 55 साल से जुड़ा हूँ विविध भारती से।
0: अच्छा,
1: और मेरी उम्र है 74।
0: लेकिन आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है, आप तो बिल्कुल युवा लग रहे हैं आवाज़ से।
1: ये आप लोगों की मेहरबानी और आशीर्वाद है, इसलिए आवाज ऐसी है।
0: अच्छा, तो आपकी दिनचर्या बहुत टाइट रहती है, अनुशासन में रहते हैं, इसलिए भी फर्क होता होगा स्वास्थ्य में, आवाज में, सब में फर्क आता है।
1: जी जी।
0: सोचने का तरीका बहुत पॉजिटिव होगा, हर बात को पॉजिटिव लेते होंगे आप।
1: जी मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता भी है तो विविध भारती चलती रहती है तो उसमें आप लोगों की आवाजें सुनता हूँ और मस्त हो जाता हूँ।
0: चलिए, सुबह कितने बजे उठते हैं आप बताइए।
1: सुबह हम 6 बजे उठते हैं,
0: सुबह की शुरुआत
1: स्कूल भेजते हैं और हमारी दिनचर्या शुरू होती है। दिन में थोड़ा बहुत काम करते हैं ट्रेनिंग का और दिन भर विविध भारती चलती रहती है, आप जैसी बहनों की आवाजें सुनते रहते हैं, मस्त रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो सुबह की शुरुआत चाय से होती है या विविध भारती से?
1: विविध भारती से होती है और चाय भी चलती रहती है।
0: ये हुई ना बात। तो बताइए कहाँ जाते हैं टेलरिंग करने, घर पे ही है या बाहर है दुकान?
1: पहले बाहर थी शॉप, अभी घर पे ही करता हूँ। अभी एज का फैक्टर है तो थोड़ा कम ही होता है काम।
0: तो एक बात बताइए, 74 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं आप, तो अभी तक काम कर रहे हैं, आपके बच्चे भी काम करवाते होंगे, आपका हाथ बटाते हैं कि नहीं?
1: जी मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया है।
0: हाँ, और आपका दूसरा बेटा?
1: दूसरा बेटा एक रेडीमेड का शोरूम है, उस पे सेल्समैन है।
0: अच्छा, यानी कि वो भी काम करते हैं अलग, लेकिन आप टेलरिंग का काम अभी भी करते हैं, है ना?
1: हाँ।
0: कोई उम्र कहीं आड़े नहीं आती अगर हमने अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक बना रखा है तो?
1: जी मेरी जिंदगी में तकलीफें बहुत आई है लेकिन विविध भारती ने सहारा दिया और इसके सहारे हम जी रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और ये सहारा ता उम्र आपको मिलेगा, ये हमें विश्वास है।
1: जी।
0: कौन सा गाना सुनवाएं बताइए?
1: पुरानी फिल्म है जुगनू, उसका गीत है मोहम्मद रफी साहब और नूरजहां की आवाज में। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, बहुत ही सुरीली आवाज है नूरजहां जी की।
0: जी, तो आप गा के बता सकते हैं इस गाने को?
1: यहाँ

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है केसरी जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं दीदी आप?
0: अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए।
1: जी जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है। पहले भी मेरी एक दो बार आपसे बात हुई है।
0: केसरी जी अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और प्लस में खेती भी है, तो बढ़िया काम चल रहा है। दीपावली आने वाली है और नवरात्रे चालू हैं, तो बढ़िया आनंदमय स्थिति है। सब जगह माता रानी की प्रतिमाएं विराजमान है और बढ़िया सुंदर वातावरण है दीदी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए, आपने 9 दिन व्रत रखे हैं या पहले और आखिरी दिन उपवास रखेंगे, ऐसा कोई है आपके दिमाग में?
1: हाँ दीदी, ये हमारी कुल की माता पूछती है अष्टमी को, तो उस दिन उपवास रखेंगे दीदी। जैसे हम 9 दिन रखते थे, लेकिन इस बार किसी कारणवश नहीं रह पाए।
0: अच्छा, लेकिन अष्टमी के दिन आप रखेंगे?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, उस दिन क्या खास बनाएंगे? कुछ खास फलाहार बनेगा घर में?
1: उस दिन दीदी पूरे घर की मतलब लिपाई पुताई होती है, ऊपर से नीचे तक की एक कमरे की, और उसमें माता जी विराजमान होती हैं, और फिर पूरा वित्त परिवार वित्त फैमिली के पूजन होती है, और बढ़िया अच्छा आनंद आता है दीदी। शाम के टाइम होती, सब घर परिवार उपवास रखता है उस दिन। पूरे पकवान बनते हैं दीदी, लगभग अपने जितने बन सके अपन से, तो सब बनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अष्टमी के दिन आप ये करते हैं। तो गरबा में हिस्सा लेते हैं, जाते हैं 9 दिनों में खास कहीं?
1: बैरसिया शहर है, इसमें गरबा होता है तो देखने जाते हैं दीदी, लेकिन हिस्सा नहीं लेते, भागीदारी नहीं लेते।
0: अच्छा, बताइए आपकी पसंद का गाना।
1: दीदी नवरात्रे चल रहे हैं, तो एक मर्द मूवी में एक गाना है, माँ शेरों वाली, वो माँ शेरों वाली।
0: चलिए सुनते हैं माँ शेरों वाली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आदरणीय दीदी को सादर सप्रेम प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लबानिया बोल रहा हूँ। मंदाकिनी दीदी जी,
0: राजू जी स्वागत है आपका। कैसे हैं आप बताइए।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी जी, मैं आपके सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, जैसे त्रिवेणी रहा, सखी सहेली रहा, आज के फनकार रहा, और रात को मैंने सुना था आपके लिए, बहुत अच्छे गीत सुनवाए गए थे उसमें।
0: बिल्कुल,
1: और त्रिवेणी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें अलग अलग तरह के विषयों पे बात की जाती है और श्रोताओं को एक नई ऊर्जा मिलती है उस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताइए, इन दिनों नवरात्रा पर्व चल रहा है, आपने व्रत रखा है, उपवास रखा है, माँ की पूजा कर रहे हैं या क्या है?
1: जी दीदी, मैंने व्रत उपवास तो नहीं रखा है, मेरे ऊपर माता रानी की कृपा है, मैं आपको फोन लगाता हूँ या गाना बजाना करता हूँ, सब उन्हीं ने सिखाया है दीदी मेरे को। शाम को मंदिर जाना होता है डेली, उसी तरह माँ को याद करते हैं, और माँ ही हमारी सब कुछ है, माँ ही हमारे ऊपर कृपा किए हुए है।
0: तो नवरात्रि में हम माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं और माँ से हमें शक्ति मिलती है और प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जाने तमन्ना फिल्म का गाना सुना दीजिए, गाने के बोल हैं तू चांद है पूनम का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: तो ट्रक चलाते हुए विविध भारती सुनते हैं क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल विविध भारती हमारा हमेशा ऑन रहता है।
0: तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपका ध्यान विविध भारती की ओर है और आपने अपनी स्टीयरिंग को ढंग से नहीं संभाला? रास्ते में बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, हाईवे में चलाते होंगे ट्रक तो?
1: बिल्कुल हाईवे में चलाते हैं, लेकिन अपना ध्यान हम लोग रख लेते हैं क्योंकि हमारा काम हमेशा का हो गया है और विविध भारती साथ होता है तो अच्छा लगता है।
0: विविध भारती दोस्त का काम करती है यहाँ पर, है ना?
1: बिल्कुल, कार्यक्रम हम लोग सुनते हैं। और अभी जो पूर्णिमा जी और ये सब कार्यक्रम आपके यहाँ से आया था जो, और उत्तम जंघेल जी जो आए थे आपके यहाँ, वो सभी हम लोग कार्यक्रम सुन रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि आप लोगों की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है।
0: क्या बात है।
1: और हम लोग आज के फनकार है, छाया गीत है और गीतमाला है, गीतों भरी कहानी है। ये हम सारे कार्यक्रम हफ्ते में जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से रिले किए जाते हैं हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते होंगे। ड्राइविंग कितने घंटे करते हैं आप ट्रक की?
1: वैसे तो मैम हम खासकर रात में ड्राइव करते हैं और इसको लगभग 12 घंटा तक हम लोग ड्राइव करते हैं और जहाँ की डिलीवरी आती है वहाँ हमें जाना पड़ जाता है।
0: अच्छा, तो रात में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो दिन भर सो लेते हैं क्या?
1: हम लोग दिन में आराम कर लेते हैं और रात में अपना जो है सफर करते हैं, या तो अगर दिन में कहीं से डिलीवरी तो हमारे साथ जो एक हमारे सहयोगी होते हैं वो करते हैं।
0: हाँ, लेकिन नींद का तो एक वक्त होता है, जैसे रात में ही नींद आती है, तो इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं? रात को इतनी लंबी ड्राइविंग करते समय कभी झपकी लग जाए तो?
1: हाँ जी, ऐसा होता है, पहले ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन अब हम लोग कई साल से हम लोग जो ड्राइव कर रहे हैं तो ये एक नियम सा पड़ गया है। अब
0: आँखों को भी आदत हो गई है जगने की, है ना?
1: बिल्कुल, दिन भी ऐसा है जो कि 9 दिन हमारे लिए साल में एक बार या दो बार आता है, ये इसलिए कि ये बहुत अच्छा लगता है और समय भी ये बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन 9 दिनों में आप अपने मन से किसी बुरी आदत को या किसी नकारात्मक विचार को या क्रोध को दूर करने का प्रयास करते हैं कि नहीं?
1: बिल्कुल, इसीलिए तो मैम हम लोगों का काम और भी अच्छा चलता है।
0: बिल्कुल सही कहा। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: जैसा कि अब हम सब जानते हैं आज नवरात्रि का दिन, इस पर मुझे एक गाना याद आ रहा है, करण अर्जुन है फिल्म का नाम, और इसके गाने के बोल हैं जान चाहे देनी पड़े।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं, नाम बताइए अपना।
1: गोपाल ओझा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से। आपसे तो जी मान ली बहुत ही दिनों में बात हो रही है, पहले हुई थी बहुत 3-4 महीने में। अभी तो क्या है, नवरात्रि चल रहे हैं तो फसल भी कट चुकी है हमारी मक्का की, तो जो अभी इकट्ठी करेंगे मक्का निकालेंगे।
0: कब कटी
1: जी? अभी कटी हुआ है, 7-8 दिन होगा जी मान।
0: अच्छा, तो नवरात्र का पर्व मना रहे हैं, तो कोई खास होगा इस पर्व में, इन 9 दिनों में क्या करने वाले हैं?
1: नवरात्रि कर रहे हैं जी मान लीजिए, और जो काम में भी बिजी है हम, और हमारे जी मान ली विविध भारती चलता रहता है, देश की सुरीली धड़कने, कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं। हेलो परमाई सखी सहेली, हेलो सहेली आते हैं 3 बजे, सभी कार्यक्रम जी मान ली चलता रहता है। हमें सेहतनामा आता है 4 बजे, कभी सुनते हैं हम तो जी मानिए।
0: अच्छी बात है आप सुनते हैं, लेकिन हमें बताइए कि आपने कहा नवरात्र का पर्व चल रहा है, इन 9 दिनों के भीतर आपके अंदर कोई बदलाव आया कि मैं अब ये अगली फसल डालने वाला हूँ?
1: फसल ये गेहूँ धनिया लगाएंगे अब।
0: अच्छा, कब लगाने वाले हैं?
1: ये लगाएंगे नवंबर में।
0: तो उसकी बीज बीज ले आए हैं?
1: हाँ, बीज तो लाएंगे, अभी नहीं लाए हैं, अभी तो थोड़ा लाया खाद।
0: तो बीज क्या ऑनलाइन लेते हैं, पोर्टल जो आप लोगों का किसानों का पोर्टल है वहाँ बातचीत करके लेते हैं या किसी दुकान से?
1: नहीं नहीं, वो पोर्टल से करते हैं ऑनलाइन।
0: तो अच्छी क्वालिटी का बीज आ जाता है?
1: अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। और क्या,
0: कौन सा है गेहूँ की अच्छी क्वालिटी का बीज?
1: गेहूँ का है जी, सजाता भी है और चल रहे हैं सभी बीज, बहुत बढ़िया है। हम तो घर के भी है, घर के भी बो देते हैं।
0: अच्छा, और धनिया के?
1: नहीं, धनिया तो हम लेते हैं अभी तो।
0: अच्छा,
1: खरीदते।
0: अच्छा खरीदते हैं। चलिए, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: वो आरजी पिक्चर का सुनना है, सोनू निगम की आवाज में, दुनिया से दूर जा रहा हूँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: टेक चंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया चंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: टेक चंद जी कैसे हैं?
1: हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: सबसे पहले तो मैडम आपको नव दुर्गा पूजा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारे सभी श्रोता मित्रों के साथ।
0: बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताइए नवरात्रा का पर्व कैसे मनाते हैं आप? व्रत उपवास रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं, या मन में एक शक्ति महसूस करते हैं इन दिनों खास?
1: जी जी बिल्कुल मैडम, क्या है जो ये नवदुर्गा जब आती है तो एक कहना चाहिए 10 दिन जो है कुछ अलग सा अनुभव होता है।
0: इन 9 दिनों में अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव हम महसूस कर सकते हैं अगर चाहें तो।
1: जी जी, कहते हैं मैडम क्या है कि हमारा तो ये मतलब रोजाना का वो है, हम एक सीनियर सिटीजन है, सुबह उठ करके थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के साथ साथ जब आते हैं तो कुछ अपने दूसरे काम निपटा करके सुबह स्नान वगैरह कर करके पूजा पाठ का जो हमारा रोज का नियम है वो हमारा रोटेशन में ही हैगा। खास तौर पर इन दिनों में जब आता है तो एक पता नहीं कहाँ से एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, माता के प्रति हमें आकर्षित करती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे संस्कार भी है साथ में एक संस्कृति भी है जो हमें विरासत में मिली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आने वाला जो जनरेशन है उसको भी वैसे ही बरकरार रखे।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसे हमें अपनाना है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हमें ये सिखाना है कि इसे बनाए रखना है ना?
1: बनाए रखें
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: पसंद का गाना बताइए हमको।
1: मुझे सुनवा दीजिए 1964 की एक फिल्म थी दादी माँ, महेंद्र कपूर और मन्ना डे की आवाज थी इसमें, उसको नहीं देखा हमने कभी।
0: अरे वाह, माँ के नाम है ये गाना, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार, बोलिए अपना नाम क्या है ये तो बता दीजिए पहले।
1: वाराणसी पहड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से मैं श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं आप।
1: अरे मैं शानदार
0: जी बिल्कुल।
1: अभी आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया था, जो लाइव आप लोग फेस कर रही थी, और इला अरुण जी को आपने बुलाया था, तो आप तो पहली बार मैंने आपको देखा कि बहुत खूबसूरत है। हम तो मैं आप और चश्मा उश्मा लगाई है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत दिन से तमन्ना थी आपसे बात करने की, वो पूरी हो गई।
0: आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर नंदी गाय घूमती है, सब कुछ आपको हर पल देखने को मिलता है, तो आदिशक्ति माँ को याद कर रहे हैं इन दिनों नवरात्रा के पर्व पर कुछ रखा है?
1: जय अम्बे जगदम्बे माँ। माँ के जगह जगह पंडाल बन रहे हैं। हमारे यहाँ बंगाल के बाद कलकत्ता के बनारस के अंदर ही सेकेंड नंबर पे पंडालों का पोजीशन रहता है। बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं हमारे यहाँ दुर्गा माता जी के।
0: तो फिर लोग आते होंगे बहुत ज्यादा, क्या माहौल रहता है?
1: जी जी, भीड़ तो इतनी रहती है कि जो परिवार

0: वाले लोग हैं जो बाल बच्चेदार हैं, वो अक्सर यहाँ शाम को रात को ना जाके 2 बजे रात के बाद जब अगली सुबह होने वाली होती है तो भोर में लोग जाते हैं पंडालों के दर्शन करने बच्चों को लेकर।
1: अच्छा, इतनी भीड़ होती है इसलिए।
0: हाँ
1: चलिए गाना बताइए। तो श्रोताओं, तकनीकी कारणों से ये बातचीत किसी कारण से यहीं कट गई है, लेकिन हम विविध भारती जो परिवार है उन्हें सुनवाना चाह रहा है गाना फिल्म कुंवारा बाप का मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी। किशोर कुमार और महमूद साहब की आवाजों में ये गीत है। चलिए तो अनिल साहब के लिए हम ये गीत पेश कर रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं रंगापड़ा सोनीतपुर असम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
0: असम से। असम की चाय हमें बहुत पसंद है, पता है आपको?
1: जी जी जी।
0: और क्या खासियत है असम में बताइए?
1: असम में तो हमारे कामाख्या मंदिर है, शिराखाना है, काजीरंगा पार्क है, बहुत सारे खास है असम में।
0: और वहाँ की जो मेखला चादर है वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी जी।
0: तो अभी बताइए, माँ दुर्गा का पर्व चल रहा है इन दिनों, 9 दिनों में हम नवरात्रि का व्रत।
1: इन दिनों में तो हमारे चाय का खेत है ना, यहाँ पर लगातार काम हो रहे थे और इसमें काम किया।
0: चाय का बागान है आपका?
1: जी, घर में चाय का बागान है।
0: कौन सी किस्म की चाय?
1: हमारे ये लोकल चाय है।
0: तो चाय की खेती कैसे होती है बताइए ना थोड़ा सा।
1: चाय की खेती तो बहुत हमारे प्रोसेस रहता है। इसका फूल तो जमीन में लगा के उसको छोटा छोटा पेड़ बनाता है, उसके बाद है लगाते हैं उसको
0: जमीन में। क्या क्या डालते हैं? चाय की बीज?
1: हाँ हाँ, इसके पाउडर करके जमीन को इस तरह से बना दे के उसको चाय का खेती बन सकते हैं। उनका फूल है ना चाय का, यहाँ में लगा देते हैं, उससे पिकिंग करके आराम से रखा जाता है।
0: चलिए गाना बताइए।
1: क्रांति फिल्म का गाना सुना लीजिए, दुर्गा माता।
0: तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रांति का ये गाना आपकी पसंद पर, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।

0: मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है।
1: अरे वाह, क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
0: मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर यूपी उत्तर प्रदेश से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
1: स्वागत है आपका, क्या हाल है आपके बताइए।
0: और कम से कम मैम मेरी सालों के बाद हेलो फरमाइश में आज कॉल लगी है।
1: अच्छा,
0: सारे प्रोग्राम मैम बहुत अच्छे चल रहे हैं। विविध भारती का मैं बहुत ही पुराना श्रोता हूँ और बचपन से ही मैं विविध भारती सुनता हूँ।
1: कितने समय से?
0: कह लीजिए मैम मैं कम से कम जब 13-14-15 साल का था ना उस समय से लेके आज मेरी एज 35 है अभी तक मैं मतलब विविध भारती सुनता हूँ।
1: तो क्या अच्छा लगा आपको, इतने साल हो गए, आप 35 साल की हो गई हैं।
0: जो बात विविध भारती में मतलब मुझे दिखती है वो बाकी जो स्टेशन पे हम सुनते हैं, विविध भारती का एकदम सब कुछ एकदम अलग से है, एकदम उसका साउंड, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसका जो धुन, ये है विविध भारती। ये बहुत ही बचपन से मेरे कानों में ये शब्द गूंजते हुए आ रहे हैं और आज तक गूंज रहे हैं।
1: क्या

0: बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती को इतनी शिद्दत से सुनते हैं कि आपको उसकी हर बात बहुत पसंद आती है।
1: और अच्छा, मनचाहे गीत भी मैं सुनता हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है। वो भी दोबारा से स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम, और ज्यादा हमारी खुशी दोगुनी हो गई है।
0: अगर आपको अपनी पसंद का कोई

खन्ना और हेमा मालिनी पे फिल्माया गया है। 1980 में मूवी आई थी और इसका गीत है, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखो तेरी मांग में सिंदूर सजा के।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
5: मेरा सारा साथ होगा।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा।

नमस्कार, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 5 बजे हैं। अब आपके लिए पेश है युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन का युवा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रतिभा। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, अक्टूबर का महीना अपने साथ त्योहारों की रौनक, उत्साह और कई खूबसूरत भावनाएं लेकर आता है। इन दिनों देश भर में नवरात्रि की धूम है। कहीं माता की चौकी सजी है, कहीं गरबा और डांडिया की तैयारियां हैं, तो कहीं घरों में पूजा पाठ और भक्ति का वातावरण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि त्योहार केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं होते, बल्कि अपने जीवन, अपनी सोच और अपनी परंपराओं को समझने का भी मौका देते हैं। इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम में हम दो दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की महिमा और मातृत्व के संदेश की। इसके बाद बात करेंगे आज की हमारी युवा पीढ़ी और बदलती भारतीय परंपराओं की। आखिर आधुनिक बनने की दौड़ में क्या हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं या समय के साथ उसे एक नया रूप दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत शुरुआत को संगीत के साथ आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: संदेश के पहले आप सुन रहे थे फिल्म माँ से गीत, जिसे अपनी आवाज दी थी रवि और आशा मिश्रा ने, बोल लिखे थे कुमार और वीना रानी ने, संगीत दिया था सनी शशि इंदर ने। नवरात्रि का नाम सुनते ही मन में भक्ति, आस्था और शक्ति का भाव जाग उठता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप अपने साथ एक विशेष संदेश लेकर आता है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है जो माँ स्कंद माता को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता है। उनका स्वरूप ममता, वात्सल्य, संरक्षण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ स्कंद माता की गोद में बाल स्कंद विराजमान है। यह दृश्य हमें माँ और संतान के बीच के उस अनमोल रिश्ते की याद दिलाता है, जिसमें प्रेम है, विश्वास है और बिना किसी शर्त के स्वीकार करने का भाव है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस धार्मिक प्रतीक को अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखें तो इसका संदेश केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। माँ का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ हम कई बार बिना कुछ कहे भी अपनी बात समझा पाते हैं। बचपन में चोट लगने पर माँ की गोद सुकून देती है, किसी परीक्षा में असफल होने पर उसका भरोसा हिम्मत देता है, और जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने पर उसके शब्द हमें दोबारा खड़े होने की ताकत देते हैं। और मातृत्व का यह भाव केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है। किसी को सही राह दिखाना, किसी की चिंता करना, उसे आगे बढ़ने का हौसला देना और मुश्किल समय में उसके साथ खड़े रहना भी ममता के ही रूप है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने काम, पढ़ाई और दूसरी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार अपने परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है। हम अपने दोस्तों से घंटों फोन पर बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी समय बिता देते हैं, लेकिन घर पर बैठे हमारे माता पिता से यह पूछना भूल जाते हैं कि उनका दिन कैसा रहा। तो इस नवरात्रि हम एक छोटा सा प्रयास क्यों ना करें, अपनी माँ, अपने परिवार के किसी भी ऐसे सदस्य के साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं जिनका प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है। कभी उनकी बात ध्यान से सुने, कभी उनके काम में हाथ बढ़ाएं, और कभी बिना किसी खास अवसर के बस इतना कह दें कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। माँ स्कंद माता का संदेश हमें ममता के साथ साथ शक्ति की भी याद दिलाता है। प्रेम का अर्थ केवल किसी की रक्षा करना नहीं, बल्कि उसे इतना सक्षम बनाना भी है कि वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना खुद कर सके। और यही बात आज की हमारी पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिवार से मिलने वाले संस्कार और विश्वास हमें मजबूत बनाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी समझ और जिम्मेदारियों को भी विकसित करना होता है। तो आइए इस नवरात्रि माँ स्कंद माता से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में प्रेम, धैर्य, करुणा और जिम्मेदारी के भाव को जगह दें। तो दोस्तों, माँ स्कंद माता के संदेश के साथ अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म लव यात्री का गीत, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी थी देव नेगी ने, बोल लिखे थे शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया था तनिष्क बागची ने। दोस्तों, बात करते हैं अपने दूसरे विषय की, जो शायद हम सभी की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक त्योहारों की तैयारियों का मतलब क्या हुआ करता था? घर की साफ सफाई, परिवार के साथ बाजार जाना, रिश्तेदारों से मिलना, घर में पकवान बनाना और शाम को सबका एक साथ बैठना। आज भी यह सब होता है, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें बदल गई हैं। अब त्योहारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जाती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से खरीदारी होती है और कई बार किसी त्योहार की तैयारी से ज़्यादा समय उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाने में निकल जाता है। तो क्या यह बदलाव गलत है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। समय के साथ जीवन शैली बदलती है, तकनीक आती है, काम करने के तरीके बदलते हैं और हमारी पीढ़ी अपनी पसंद के अनुसार परंपराओं को अपनाती है। असली सवाल ये नहीं है कि बदलाव हो रहा है या नहीं, असली सवाल यह है कि इस बदलाव के बीच हम अपनी परंपराओं के मूल भाव को कितना समझ पा रहे हैं। उदाहरण के लिए नवरात्रि को ही ले लीजिए। आज के हमारी युवा पीढ़ी युवा गरबा और डांडिया के माध्यम से अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, पारंपरिक परिधानों को नए अंदाज में पहनते हैं, दोस्तों के साथ उत्सव मनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां साझा करते हैं। ये भी संस्कृति से जुड़ने का एक तरीका है। लेकिन अगर हम गरबा तो करें और पर उसके पीछे की आस्था, सामूहिकता और परंपरा के बारे में जानने की कोशिश ही ना करें, तो शायद हम उत्सव के बारे में एक हिस्से तक ही सीमित रह जाते हैं। इसी तरह भारतीय संस्कृति केवल त्योहारों और पहनावे तक सीमित नहीं है। हमारी संस्कृति में बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह, अतिथि का स्वागत, जरूरतमंद की सहायता, परिवार के साथ जुड़ाव और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जैसे मूल्य भी शामिल है। हमारी युवा पीढ़ी के सामने अपनी अलग पहचान बनाने की बहुत इच्छा है। वह नए विचारों को अपनाना चाहते हैं, अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं और दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि नई चीजें सीखना और सवाल पूछना किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन आधुनिकता का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जड़ों को भी भूल जाएं। हम नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही अपनी भाषा को भी महत्व दे सकते हैं। हम दुनिया भर के संगीत का आनंद ले सकते हैं और अपने लोकगीतों को भी सुन सकते हैं। हम नए त्योहारों और संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं और अपने त्योहारों के महत्व को भी समझ सकते हैं। दरअसल परंपराएं तभी जीवित रहती हैं जब अगली पीढ़ी उन्हें समझकर अपनाती है। केवल इसलिए किसी चीज़ को करते रहना कि वह हमेशा से होती आई है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि उसके पीछे क्या विचार हैं और वह आज हमारे जीवन में किस तरह प्रासंगिक हो सकती है। उज्जैन जैसे हमारे सांस्कृतिक शहर में रहते हुए हम इस बात को और करीब से महसूस कर सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर, यहाँ के धार्मिक आयोजन, स्थानीय मेला और शिप्रा नदी से जुड़ी परंपराएं हमारे सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। लेकिन इस विरासत को आगे बढ़ाने का अर्थ केवल इन स्थानों पर जाना नहीं है, इनके इतिहास को जानना, स्वच्छता बनाए रखना और इनके प्रति जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम अपनी संस्कृति को किसी बंद किताब की तरह नहीं, बल्कि ऐसी विरासत की तरह देखना चाहिए जिसमें हम सीखते रहें, जिसे समय के साथ अगली पीढ़ी तक पहुँचाते रहें। और इसके लिए बहुत बड़े प्रयासों की ज़रूरत नहीं है। घर के बुजुर्गों से पुरानी कहानियाँ सुनिए, किसी त्यौहार का महत्व जानना, अपनी मातृभाषा में बातचीत करना या अपने शहर की सांस्कृतिक धरोहर को समझना, ये छोटे कदम भी हमें अपनी जड़ों से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी त्यौहार का हिस्सा बने तो सिर्फ यह मत सोचिए कि आपने क्या पहना और कौन सी तस्वीर साझा की। एक पल रुककर यह भी सोचिए कि उस त्यौहार का संदेश क्या है, वह आपके जीवन में क्या जोड़ सकता है, उसके पीछे की संस्कृति क्या है। इसी विचार के साथ अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
3: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
4: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है। वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: संदेश से पहले आप सुन रहे थे फिल्म हम दोनों का गीत, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया था मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था जयदेव ने। युवाणी में अब समय है रोजगार समाचार का, तो आइए आज की प्रमुख भर्ती से जुड़ी जानकारी पर नजर डालते हैं। भारतीय रेलवे में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसे NTPC कहा जाता है, के ग्रेजुएट लेवल पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 3548 पदों पर नियुक्तियां की जानी

0: इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। कुछ पदों के लिए निर्धारित हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग दक्षता की शर्त भी लागू होती है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 6 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 8 नवंबर 2026 निर्धारित है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य निर्धारित आयु सीमा 1 जनवरी 2027 के अनुसार 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 33 वर्ष। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के 2 चरण, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार प्रथम चरण की परीक्षा दिसंबर 2026 के 4वें सप्ताह में संभावित है। जो विद्यार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर विस्तृत अधिसूचना पढ़ें। आवेदन करने से पहले पात्रता, पदों का विवरण, शुल्क और सभी जरूरी निर्देश ध्यान से जांच लें। इसी के साथ अब समय है एक और प्यारे से गीत का।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

आप सुन रहे थे फिल्म टू स्टेट से गीत, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी थी के मोहन और यशिता शर्मा ने, बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। तो दोस्तों, आज के युवाणी कार्यक्रम में हमने बात की माँ स्कंद माता की महिमा और मातृत्व के इस अनमोल भाव की, जो हमें प्रेम, करुणा और अपनों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है। साथ ही हमने यह भी समझने की कोशिश की कि बदलते समय में अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को किस तरह संजोकर रखा जा सकता है। दोस्तों, समय बदलना स्वाभाविक है, हमारी सोच बदलेगी, हमारी जीवन शैली बदलेगी और नई पीढ़ी अपने तरीके से दुनिया को देखेगी। लेकिन इस बदलाव के बीच अगर हम अपने संस्कारों, अपनी भाषा और अपनी परंपराओं के अच्छे मूल्यों को साथ लेकर चलें, तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आखिर संस्कृति केवल त्यौहार मनाने या परंपराओं को निभाने का नाम नहीं है। संस्कृति तो हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। हम अपने बड़ों का कितना सम्मान करते हैं, दूसरों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए कितना अच्छा कर पाते हैं। तो इस नवरात्रि माँ स्कंद माता के आशीर्वाद और उनके स्वरूप से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में प्रेम, धैर्य और सकारात्मकता को जगा दें, अपनी परंपराओं को जानें, उन्हें समझें और उनकी खूबसूरती को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज के युवाणी कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त। मैं प्रतिभा साहू आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। नमस्कार।

तो ये था आज का कार्यक्रम युवाणी FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम फिल्मी बातें। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर हमारी ज़िंदगी एक फिल्म होती तो उसमें मोहब्बत के कितने दृश्य होते, दोस्ती के कितने संवाद होते, कितनी हंसी होती और कितनी ऐसी यादें होती जिन्हें हम बार बार जीना चाहते। हिंदी सिनेमा ने हमें सिर्फ कहानियां नहीं दी, उसने हमें प्यार करना सिखाया, दोस्ती निभाना सिखाया, सपने देखना सिखाया और मुश्किल समय में भी मुस्कुराना सिखाया। आज की हमारी फिल्मी चर्चा में हम चलेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे यादगार पड़ावों पर जहाँ फिल्में सिर्फ पर्दे पर नहीं चली बल्कि सीधे हमारे दिलों में उतर गई। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह सुरीली यात्रा मोहब्बत से, एक ऐसे गीत के साथ जो बारिश, छतरी और दो दिलों की खूबसूरत याद दिलाता है।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: विज्ञापन के पहले क्या खूब राज कपूर और नरगिस की जोड़ी का वो गीत था, बारिश का वह यादगार दृश्य और शंकर जयकिशन का संगीत। श्री 420 का वह गीत हिंदी सिनेमा की अमर यादों में शामिल है। दोस्तों, पुराने सिनेमा की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि प्रेम को व्यक्त करने के लिए हमेशा बड़े बड़े संवादों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कभी एक नज़र, कभी एक मुस्कान और कभी बारिश के साथ चलती दो परछाई ही पूरी कहानी कह देती थी। लेकिन प्यार का मतलब केवल किसी का साथ मिल जाना नहीं है। कभी प्यार में हमें अपने सपनों को भी मिलवाता है, कभी वह हमें बदलता है और कभी ज़िंदगी को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल देता है। और इसी बात को याद दिलाता है हमारी अगली फिल्म, जिसका नाम है गाइड।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: विज्ञापन के पहले फिल्म गाइड का गीत था। दोस्तों, गाइड सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि इंसानी अच्छाइयों, रिश्तों और आत्मखोज की जटिलताओं को सामने रखने वाली फिल्म भी है। देव आनंद और वाहिदा रहमान के अभिनय ने इस कहानी को एक अलग पहचान दी। इस फिल्म से जुड़ा एक सवाल है, क्या जिंदगी में अपने सपनों का पीछा करना आसान होता है? शायद नहीं, लेकिन सिनेमा में यह ज़रूर याद दिलाता है कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है, अपने संघर्ष होते हैं।

और अपने फैसले होते हैं, और जब जिंदगी के रास्ते मुश्किल हो जाएं, तब एक सच्चा दोस्त कितना बड़ा सहारा बन सकता है। दोस्ती की बात हो और जय वीरू का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है।

वाह, यह गीत बजते ही आंखों के सामने आ जाती है वह मोटरसाइकिल। साइड कार में बैठे जय और वीरू और उनकी बेफिक्र दोस्ती। रमेश सिप्पी की फिल्म शोले ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक खास जगह बनाई, जिसके किरदार, संवाद और संगीत आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। जय और वीरू की दोस्ती हमें यह एहसास कराती है कि दोस्ती वह नहीं जो केवल अच्छे दिनों में साथ हो, सच्चा दोस्त वह है जो मुश्किल में भी आपका हाथ न छोड़े। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा गंभीर नहीं होती। कुछ फिल्में हमें हंसाती है, हमारी रोज़मर्रा की परेशानियों को हल्का करती है और बताती है कि कभी कभी मुस्कुराना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब जरा गंभीर चर्चा से निकलकर चलते हैं हिंदी सिनेमा की हल्की फुल्की दुनिया में।

दोस्तों, गोलमाल की सहज कॉमेडी और अमोल पालेकर की सादगी ने आम दर्शकों से एक खास रिश्ता बनाया। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में अक्सर रोज़मर्रा की जिंदगी में छिपे हास्य और भावनाओं को खूबसूरती से सामने लाती थी और इस गीत का संदेश भी कितना सरल है। बीता हुआ पल लौट कर नहीं आता और आने वाला पल अभी हमारे हाथ में नहीं है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में आज को भूल जाते हैं, जबकि ज़िंदगी की असली खूबसूरती उन छोटे छोटे पलों में होती है जिन्हें हम अपनों के साथ बिताते हैं। तो क्यों ना कुछ पल मुस्कुराया जाए, कुछ पल गुनगुनाया जाए और कुछ पल सिर्फ ज़िंदगी के नाम किए जाएं। इसी एहसास के साथ अब चलते हैं एक ऐसे गीत की ओर जो हमें ज़िंदगी के सफ़र को खुले दिल से स्वीकार करना सिखाता है।

क्या बात है, अंदाज का यह गीत आज भी सुनने वालों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। दोस्तों, हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हर दौर में उनकी कहानियां हमारे जीवन से जुड़ जाती हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी की फिल्म को खूबसूरती से जीते रहिए। FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 6 बजने को हैं। अब आपके लिए पेश है कार्यक्रम भजन संध्या, जिसमें अगले 30 मिनट तक हम भक्ति, श्रद्धा और संगीत के माध्यम से जुड़ेंगे ईश्वर से। भक्ति संगीत न केवल मन को शांति देता है, बल्कि हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा भी देता है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी से, जिनकी आराधना के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। वे बुद्धि, विवेक और समृद्धि के देवता हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। शुरुआत करते हैं एक अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण भजन से।

0: पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले ढाई साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: विज्ञापन के पहले हमने सुना बेला सुलाखे द्वारा गाया गया भजन। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की इस मंगलमय वंदना के साथ वातावरण भक्तिमय हो उठा है। भगवान गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के सुपुत्र हैं और उनके आशीर्वाद से हर कार्य शुभ होता है। अब चलिए उसी दिव्य शक्ति के स्रोत उनके पिता देवों के देव महादेव की आराधना की ओर बढ़ते हैं।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: विज्ञापन के पहले कविता पौड़वाल और विनोद राठौर की आवाज़ में आपने सुनी देवादिदेव महादेव की स्तुति में भजन। भगवान शिव की इस अद्भुत स्तुति ने मन को गहराई और शांति से भर दिया है। शिव ही आदि हैं और अनंत भी, जिनकी भक्ति आत्मा को निर्मल कर देती है। अब इसी भक्ति की धारा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उन भगवान की ओर जिन्होंने प्रेम और जीवन का सुंदर संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण।

0: हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: विज्ञापन के पहले अनूप जलोटा की आवाज में था एक मधुर भजन, जिसकी भक्ति ने मन को आनंद से भर दिया। श्री कृष्ण ने हमें कर्म, प्रेम और धर्म का अद्भुत ज्ञान दिया। अब बढ़ते हैं उन्हीं विष्णु अवतार की ओर जिन्होंने धरती पर आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम।

0: पुरुषोत्तम दास जलोटा की आवाज़ में अभी आपने सुना भगवान श्री राम की स्तुति में भजन। प्रभु श्री राम के इस पावन भजन ने हमें धर्म और मर्यादा का संदेश दिया है। उनका जीवन हमें सच्चाई और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। भक्ति संगीत की शांत और आत्मिक यात्रा के बाद अब समय है हमारे विशेष कार्यक्रम उज्जैन डायरी की ओर रुख करने का। उज्जैन, जहां आस्था और संस्कृति का प्रवाह माँ शिप्रा की धारा की तरह निरंतर बहता है। नवरात्रि में यह नगरी देवी की भक्ति के रंग में रंग जाती है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु माँ हरसिद्धि के दर्शन कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। जब भी भारत की प्राचीन सांस्कृतिक नगरियों का उल्लेख होता है तब उज्जैन का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। शिप्रा नदी के पावन तट पर बसा यह नगर केवल मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आइए सुनते हैं एक भजन।
1: यार, ये E20 को लेकर क्या कन्फ्यूजन है?
2: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
1: फिर तो नो कन्फ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: विज्ञापन के पहले लखबीर सिंह लाखा की आवाज में था वह भजन। श्रोताओं, उज्जैन का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख अवंतिका, उज्जैनी और कुशस्थली जैसे नामों से मिलता था। यह उन सात पवित्र नगरों में से एक है जिन्हें सनातन परंपरा में सप्तपुरियों में कहा जाता है। मान्यता है इन नगरियों में दर्शन और साधना से मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो सुनते हैं एक और भजन।
2: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
3: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
2: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
4: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: विज्ञापन के पूर्व भरत कुमार की आवाज में था वह भजन। दोस्तों, उज्जैन की महत्ता केवल धर्म तक सीमित नहीं है। यह नगरी प्राचीन भारत में शिक्षा, ज्योतिष और खगोल विज्ञान का भी प्रमुख केंद्र रहा है। भारतीय कालगणना में उज्जैन का विशेष स्थान है। एक समय ऐसा था जब देश के विभिन्न क्षेत्रों में समय निर्धारण का आधार उज्जैन को माना जाता था। यहाँ स्थित वेदशाला आज भी हमें उस गौरवशाली वैज्ञानिक परंपरा की याद दिलाती है, जिसने भारत को विश्व में विशिष्ट पहचान दिलाई। तो श्रोताओं, इसी के साथ सुनते हैं एक और भजन।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: विज्ञापन के पूर्व अनूप जलोटा और इशिता मित्रा की आवाज़ में था वह भजन। उज्जैन का संबंध महान सम्राट विक्रमादित्य से भी रहा है। लोक कथाओं और ऐतिहासिक परंपराओं में वर्णित सम्राट विक्रमादित्य को न्यायप्रिय, विद्वान और प्रजावत्सल शासक माना जाता है। कहा जाता है कि उनके दरबार में 9 महान विद्वान, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, उपस्थित रहते थे। उनमें महाकवि कालिदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो श्रोताओं, इसी के साथ सुनते हैं एक और भजन।

0: राज सचदेव की आवाज़ में था यह भजन। तो श्रोताओं, आज का उज्जैन डायरी का कार्यक्रम यहीं तक। FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। नई दिल्ली में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
2: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं और मजबूत होंगी।
3: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमरीका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G-SAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। भारत में सितंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुल श्रम बल भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं बेरोजगारी दर घटकर 5% रह गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी और रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ। वहीं शहरी महिलाओं की भागीदारी में मासिक आधार पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 102.5 MHz एवं न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आइए आपको आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

आज 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 7:21 पर आप सुनेंगे मालवी समाचार, 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आज 8:00 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 आप सुनेंगे न्यूज़ @9।

आज 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे आपकी फरमाइश, आज 10 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 11:10 पर FM गोल्ड के कार्यक्रम।

कल सुबह 5 बजे 5:52 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम, 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर वंदरवार, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, 6:45 पर संगीत सरिता, 7 बजे आप सुनेंगे महाकाल वंदन, 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कल 7:20 पर आप सुनेंगे सुप्रभात उज्जैन, कल सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे उज्जैनी आरजे, 9:00 आप सुनेंगे संस्कृति के स्वर, 9:30 पर बॉलीवुड बीट्स, सुबह 10:00 आप सुनेंगे उज्जैन दर्शन, 10:30 पर महिला सभा, 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग, 12:00 आप सुनेंगे हिंदी न्यूज़ बुलेटिन, 11:05 पर यादों की महफिल, कल दोपहर में 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफ़र, 2:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 2:10 पर प्रादेशिक समाचार, 2:15 पर दोपहर का समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे, दोपहर 3:00 सखी सहेली, 4:00 गीतों भरी कहानी। कल शाम 5:00 आप सुनेंगे युवाणी, 5:30 पर फिल्मी बातें, 6:00 आप सुनेंगे भजन संध्या, 6:30 पर फिल्म संगीत, कल शाम 7:00 आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार, 7:10 पर प्रादेशिक समाचार, 7:21 पर माटीरी बात, 8:00 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर उर्दू में समाचार, 9:30 पर खेल पत्रिका, 9:45 पर फिल्म संगीत, 10:00 आप सुनेंगे गीतों का गुलदस्ता। कल 10:30 पर आप सुनेंगे राग रजनी, 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 11:10 पर FM गोल्ड के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कुछ ही समय में अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
1: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
0: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
1: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
0: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
1: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
0: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
1: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राज्य कैबिनेट ने 27,050 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए 8,76,000 से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन। और प्रदेश में 18 अक्टूबर तक आंधी बारिश का अलर्ट, ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा असर की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लेह हवाई अड्डे का नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना, दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन, सिंधु घाट में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और 40 गांव में विकसित जलाशय शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इन परियोजनाओं से आवागमन, बिजली और जल उपलब्धता बेहतर होने के साथ प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में युवाओं की शिक्षा, खेल प्रतिभाओं और ग्रीन हाउस खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में क्षेत्र में 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिनसे किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर बन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय सरस मेले में महिला स्वयं सहायता समूहों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 12 वर्षों में इन समूहों से जुड़ी महिलाओं की संख्या बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि लखपति दीदियों को अब करोड़पति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरस मेले अब देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाएंगे, ताकि महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर मंच मिल सके। उन्होंने प्रत्येक जिले में शी मार्ट स्थापित करने की भी बात कही।
1: पूरे देश में, दिल्ली में नहीं, अलग अलग राज्यों में भी सरस मेला करेंगे, ताकि दीदियों को प्लेटफॉर्म मिले। एक राज्य में एक सरस मेला, उसके आगे बढ़ के अब सी मार्ट हम बनाएंगे। सी मार्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा भी देगी।

0: जिले को 10 लाख रुपया ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हमने फैसला किया है सी मार्ट के लिए, और सी मार्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि उस जिले की दीदियों को अपने सामान को बेचने का प्लेटफॉर्म मिले, मार्केट मिले, उसकी कोशिश होगी। और आंध्र को उसका मॉडल बनाया जाएगा, विजयवाड़ा को, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने ऑफर दिया है।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास के लिए 27,050 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने जबलपुर इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास के लिए विशेष कंपनी के गठन और खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना लागू करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सांदीपनी स्कूलों की स्थापना के साथ शासकीय विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, आवासीय संस्थानों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
2: एक बड़ा निर्णय हुआ है स्कूल शिक्षा में। सांदीपनी विद्यालय तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन हमारे बाकी भी स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय, आवासीय खेलकूद भवन, ऐसे कई प्रकार की गतिविधियों के लिए लगभग 3,000 करोड़ की राशि हमने मंजूर की, जिसके कारण से आने वाले 2-3 साल में, वैसे तो हमने कहा कि तुरंत गति से सभी क्षेत्रों और समान रूप से जो विधायक, सांसद या जनभागीदारी की भी राशि मिला करके वो इसमें जो चली योजना में भी कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं तो उनको भी जोड़ करके, लेकिन 2 साल के अंदर ये सारा क्षेत्र, हमारा कोई विद्यालय भवन भी न रहे, न जर्जर रहे।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूरे होने पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद अब पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर देने की जरूरत है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन के लिए 8,76,007 किसानों ने पंजीयन कराया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज बताया कि इनमें धान के लिए 8,68,214, बाजरा के लिए 7,694 और ज्वार के लिए 2,039 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके लिए प्रदेश में 1,100 से अधिक पंजीयन केंद्र बनाए गए थे। इस बार किसानों का पंजीयन एग्रीस्टैक आईडी के माध्यम से किया गया है, जिसमें किसानों के सभी खसरे दर्ज हैं। भोपाल में 15 जनवरी 2027 को भारतीय सेना दिवस का राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने आज अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज से 18 अक्टूबर तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर और चंबल संभाग में इसका अधिक असर रहने की संभावना है, जबकि उज्जैन, सागर और रीवा संभाग के कुछ जिलों में भी बारिश हो सकती है। गुरुवार को ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर में बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में वायु प्रदूषण से होने वाले हृदय और श्वास संबंधी दुष्प्रभावों के समय पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला अस्पताल नीमच में विशेष चेस्ट क्लिनिक शुरू किया गया है। झाबुआ में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में खरीफ फसलों की कटाई के दौरान नरवाई जलाने की घटनाओं की रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित की गई। खंडवा में प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने ओंकारेश्वर स्थित एकात्मधाम पहुंचकर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा के दर्शन किए और पुष्पांजलि अर्पित की। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य और जन सुविधा तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 163 के तहत संपूर्ण जिले की सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आगर मालवा में सड़क सुरक्षा समिति की आज बैठक हुई। जबलपुर में पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व को नई दिशा देने के उद्देश्य से ग्रामीण पंचायती राज महिला नेतृत्व कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बैतूल में सहायक परियोजना समन्वयक और विकासखंड स्रोत समन्वयक के पद के लिए चयन परीक्षा

21 अक्टूबर को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की जाएगी। रायसेन जिले के नए कलेक्टर के रूप में 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी रोहित सिसोनिया ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी उज्जैन है। नमस्कार, FM 102.5 MHz पर साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। राम राम किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर तुम्हारो आज का अपना छोटा सा ग्राम सभा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का उद्देश्य है थम सब तक ऐसी ऐसी जानकारी पहुंचानी जो थमारे लिए जरूरी है, उनका साथेज अपना माली समाचार पढ़ना। तो कार्यक्रम में चला आगे बात करवा का साहब, पहला मैं बता दूं तुम्हारे कि मैं तुम्हारा भाई सुमित कुमार तुम्हारा बीच के आज हाजिर है फिर से एक बार पुनः। आज की बात करा तो आज अपनी तारीख है 15 अक्टूबर और वार है गुरुवार। चलो समय नहीं गवाता हुआ तुम्हारे लई चला सप्ती पहला आज का समाचार पेपर उका पहला। जैसो कि तुम्हारे मालूम है कि अभी को जो समय चली रो है उस समय किसान का जीवन में बहुत व्यस्तता वालों चली रो है, क्योंकि हर किसान यो चाह रो है कि अभी बस लई देने रबी की फसल की तैयारी करे, रबी की फसल में लगी जाए और रबी की फसल की जो गेहूं चना वाली फसल रहे उके अच्छे से तैयारी करी के अच्छे से खेती में लगे थे। क्योंकि यो जो समय रहे नी यो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि किसान अगर इन्हीं समय के थोड़ी ढील फोल कर देगा तो अपनी पूरी फसल पूरी जो सीजन रहे वो बिगड़ी सकते हैं। तो आओ पिलास तुम्हारे लई चला आज का मुख्य मालवी समाचार पे उका बात बात करेंगे अपन।

नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है मालवी समाचार। समाचार का साथ मैं तुम्हारा भाई सुमित कुमार था। सबसे पहला बुलेटिन का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपए की 5 विकास परियोजना को शुभारंभ करियो है। उसका बाद राज्य मंत्री परिषद में करीब 27,000 करोड़ रुपए का विकास कार्य की मंजूरी दी गई है। झाबुआ में कल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का तहत शिविर आयोजित करी जाएगा। समाचार अब विस्तार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलियो है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजना को वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करियो है और शुभारंभ का दौरान यह बात भी कही है। प्रधानमंत्री ने बोलियो है कि अन्य परियोजना में लद्दाख की संपर्क सुविधाएं मजबूत होगा, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जल की उपलब्धता बढ़ेगी और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश का विकास के लिए करीब 27,050 करोड़ रुपए का प्रस्ताव के मंजूर दी गई। कैबिनेट ने जबलपुर इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास के लिए पूर्णतः शासकीय स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराएगा। बैठक में खरीफ वर्ष 2026 की सोयाबीन उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए पीएम आशा योजना के अंतर्गत भावांतर किसान योजना किसानों के लिए लागू करी गई है। किसान के योजना को लाभ लेने के लिए 17 अक्टूबर तक ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की बिक्री 22 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक चलेगा 2027 तक चलेगा। कैबिनेट ने बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली की सिंचाई परियोजना के लिए 3,076 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उनके नमन करियो है। मुख्यमंत्री ने अपना संदेश में बोलियो है कि भारत के परमाणु शक्ति संपन्न बनाने और रक्षा अनुसंधान का क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर कलाम को योगदान अविस्मरणीय है। बोलियो है कि डॉक्टर कलाम का जीवन और उनका विचार आज भी युवाओं के अपना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दे है। झाबुआ जिला का पेटलावत विकासखंड का रायपुरिया में कल मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का अंतर्गत शिविर आयोजित किया जाएगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरिया में होने वाला शिविर में आमजन की समस्या और लंबित प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाएगा। अन्य में सीएम हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरणों, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड और समग्र आईडी, ई केवाईसी सहित विभिन्न सेवाओं की समीक्षा होगी। मंदसौर जिला में अबाकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 प्रकरण दर्ज किया है। कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने बताया कि उन्हें निर्देश का अनुसार कार्रवाई करी गई है। मंदसौर नगर, अभिनंदन क्षेत्र, सीतामऊ तहसील का मुआवला गांव और सुवासरा में विभिन्न स्थानों से देसी और विदेशी मदिरा और बियर जब्त करी गई है। विभाग के अनुसार कार्रवाई में कुल 251 नग बोतल और केन जब्त किया गया है। सभी मामला में मध्य प्रदेश अबाकारी अधिनियम का तहत प्रकरण दर्ज करने विवेचना शुरू कर दी गई है। उज्जैन का आरडी मेडिकल कॉलेज की बात करा तो यहाँ पे आज एआरटी सेंटर में एड्स कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करी गई है। बैठक में एचआईवी संक्रमण की पहचान और मरीजों के नियमित उपचार और उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम का नोडल अधिकारी डॉक्टर अरुण कुशवाहा ने बताया कि 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र और ग्राम स्तरीय बैठक का माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जितनी निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल हुई है। मंदसौर जिला में शामगढ़ थाना पुलिस ने बिना नंबर की स्कॉर्पियो कार से 1,29,00,000 रुपये की नगद बरामद किया है। पुलिस ने बुधवार के गांव बरखड़ा उदा में कार्रवाई का दौरान कार की तलाशी ली, जिनमें अलग अलग स्थान पर विशेष रूप से छिपाई के रखा गया नोटों का बंडल मिला है। मामला में ग्राम बरखड़ा उदा का सरपंच भवानी शंकर मीणा और उत्तर प्रदेश का बरेली निवासी मोहम्मद इस्लाम तथा सूर्य प्रकाश की गिरफ्तार करियो है। पुलिस नकदी के स्रोत और उसके गंतव्य के संबंध में पूछताछ कर रही है। बात करा प्रदेश में आज 18 अक्टूबर तक आंधी और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का 5 संभागों में मौसम बदलेगा और ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में अनेकों असर देखने को मिलेगा। आज ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, नीमच और मंदसौर में बारिश की संभावना है। वहां 16-18 अक्टूबर का बीच अन्य जिला में बारिश को दायरों बढ़ सकते है। इन दौरान 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। तो ये था आज का मुख्य मालवी समाचार।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: तो साथियों, अभी अपन ने सुनिया मालवी समाचार। अब बात तो घनसारी करनी है, क्योंकि नवरात्र चली रहा है, किसान की रबी फसल की तैयारी चली रही है, साथ ही और भी बहुत सारा त्यौहार आने वाला है। किसान को व्यस्तता को समय चली रहा, अभी ऐसा में किसान की पाणत चली रही है। उसका बात किसान अभी बोने में लगे है, तो इस समय योद्ध बताऊंगा मैं तुम्हारे के जो फसल को चयन करो उसमें विशेष ध्यान रख जो इन बार सिंचाई का साधन के देखी के फसल को चयन करना है अपने, क्योंकि ज्यादा पानी वाली फसल के नहीं लेने में बार बार बता रहा हूँ तुम्हारे, क्योंकि कहीं है नहीं कि इन बार पानी की थोड़ी संभावना कम है, सिंचाई में समस्या आ सकती है, क्योंकि इन बार फसल का अनुकूल पानी नहीं पड़े हो। तो ऐसा में लहसुन प्याज और आलू जैसी फसल को रकबो घटाने पर ध्यान दीजिए, और गेहूं में भी ऐसी फसल लगा जो ऐसी वेराइटी लगा जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सके। तो बात तो घन सारी करनी है हमारे से और करवा की इच्छा भी हुई थी, पर उसका पहला हम सुनो अपना प्रायोजित कार्यक्रम जो किसान वाणी जो प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है, जिसका प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इन कार्यक्रम को भी मुख्य उद्देश्य योज है कि किसान के एक से एक जानकारी देनी। तो आओ सुनो यह कार्यक्रम।

एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी को उज्जैन केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम अपना आकाशवाणी का भोपाल केंद्र से प्रसारित होगा, तो कृपया प्रतीक्षा करें।

0: किसानवाणी
1: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम
0: किसानवाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी भैयन खो सभी बहनन खो आपकी अपनी पूनम बहन की दोई दोई हाथ जोड़ के राम राम पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूबई नौने हुओ। देखो का है भैया बहना हरो, हर साल 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाओ जात है, जो दिन उन करोड़न ग्रामीण महिलाओं के साहस मेहनत और योगदान को नमन करवे को दिन है, जो खेतन से लेके घर तक देश की रीढ़ बनी भई है। ग्रामीण महिलाएं सिर्फ खेती नहीं करती, वे परिवार समाज और अर्थव्यवस्था को भी संभालती हैं। भुनसार खेतन में काम, बच्चन की देखभाल, पशुपालन, बीजन को बचाबो और फसल को बाजार तक पहुंचाबे तक हर जगह पे उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होत है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया के कुल खाद्य उत्पादन को लगभग आधो हिस्सा ग्रामीण महिलाओं की मेहनत से आत है। फिर भी आज भी उन्हें जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सही मजदूरी में बराबरी नहीं मिल पाई है। ईद दिवस को मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाबो, उनके अधिकारन के प्रति जागरूकता फैलाबो और उनके योगदान को दुनिया के सामने लाबो। जैसे कि कही जात है कि सशक्त ग्रामीण महिला मजबूत भारत की नींव होते है। जब गांव की महिलाएं सशक्त हुए तभी पूरा देश तरक्की कर है। और ई के अलावा भी आज बड़ी ही अच्छी एक जानकारी हम आपोरन के लाने लेके आए हैं। देखो का है कि प्राकृतिक और जैविक खेती आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, जो तो अपन सभी जने जानत है। और ई में रासायनिक खाद कीटनाशकन को इस्तेमाल नहीं होते है, बल्कि ई की जगह अपन गोबर की खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कम्पोस्ट और देसी बीजन को उपयोग करत है। खेती की लागत इसे कम हो जात है, खाना में जहर नहीं पहुंचत और कैंसर और दूसरी बीमारियों को खतरा सोई कम हो जात है। सो जमीन, पानी और हवा प्रदूषण से बचत है। मित्र कीट मने केंचुआ वापस आते हैं और जमीन फिर से जिंदा हो जाते हैं। और ई के संबंध में हम आपके लाने एक बड़ी ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं। सो चलो सुनत हैं प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ एवं शासकीय योजनाओं पर अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं हितग्राहियों से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग अंशु तिलेठे बैन को है।
3: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आज की पहली प्राथमिकता जैविक खेती या प्राकृतिक खेती बनती जा रही है, क्योंकि मिट्टी को बचाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बचाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण

0: पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वापस अपनी परंपरागत खेती, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना जरूरी हो गया है। तो इसी विषय को ध्यान में रखकर आज हम आए हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जिला कार्यालय भोपाल में, और हमारे साथ है उप संचालक कृषि श्रीमती सुमन प्रसाद जी, जिनसे हमने जानना चाहा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के विषय में सरकार की योजनाएं के बारे में। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार। जो हमारे किसान भाइयों की तरफ से पहला सवाल आएगा वो यही आएगा कि सरकार प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कारगर उपाय कर रही है या क्या योजनाएं लेकर आई है।
1: सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और जैसे अभी आपने कहा कि जैविक खेती आज की आवश्यकता बन गई है, तो उत्पादन तो हमने बहुत कर लिया है, लेकिन अब हम जा रहे हैं स्वच्छ उत्पादन की ओर, और इसलिए किसान भाइयों को इसकी ओर प्रोत्साहित करने हेतु बहुत सारी योजनाएं हमारे कृषि विभाग के माध्यम से चलाई जा रही हैं। एक जो हमारा परियोजना संचालक आत्मा, एक हमारी एक परियोजना है जिसके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, किसानों का प्रशिक्षण दिया जाता है, और इसके अतिरिक्त एक पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पे केंद्रित एक योजना राष्ट्रीय मिशन फॉर प्राकृतिक खेती चलाई जा रही है, और हमारे भोपाल जिले में भी इस योजना को चलाया जा रहा है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना। जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में जो सबसे प्रमुख समस्या किसानों को आती, अभी तक आती रही है, वो ये है प्रमाणीकरण की। क्योंकि किसान जब जैविक या प्राकृतिक तरीके से उत्पादन करता है, हम सभी जानते हैं कि अब जो खेती है पूरी तरह से रसायनों पे निर्भर हो चुकी है, तो जब उन रसायनों को वो उत्पादन करना खत्म करते हैं तो निश्चित ही उनका जो उत्पादन है वो गिरता है, जो कि आगे जाके जब उसको प्राकृतिक तरीके से वो सही तरीके से यदि सही पद्धति अपना के करेगा तो वो उतना ही उत्पादन जो कि दूसरी खेती में होता है वो ले सकते हैं। धैर्य रखने की आवश्यकता है और किस तरह से कौन सी तकनीकें उपयोग करने की आवश्यकता है ये सिखाने के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये योजना जो है वो प्रशिक्षण आधारित योजनाएं हैं, जैसा कि नाम हम जानते हैं प्राकृतिक खेती। तो मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी कि एक शब्द होता है जैविक खेती और एक होता है प्राकृतिक खेती, तो दोनों में अंतर क्या है। जैविक खेती सिंपली वो खेती है जिसमें रसायनों का उपयोग ना किया जाए, परंतु प्राकृतिक खेती वो खेती है जो कि गौ आधारित खेती। हमारी सरकार मुख्य रूप से गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक खेती योजना चला
0: रही है। जी, तो इसमें अनुदान का क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से दिया जाता है?
1: इसमें अनुदान का, जैसे मैंने कहा कि सबसे प्रमुख समस्या किसान भाइयों की है सर्टिफिकेशन की, क्योंकि हम उनको पूरी पद्धति सिखा भी दें और वो उत्पाद बना भी लें, तब भी जो ग्राहक है जो अतिरिक्त मूल्य है वो देने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब किसान को अपनी उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिलता तो वो फिर हतोत्साहित होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोग इस योजना के अंतर्गत किसानों को क्लस्टर के रूप में, किसानों का क्लस्टर बनाते हैं, सामूहिक रूप प्राकृतिक खेती से किसानों को जोड़ते हैं, उनको सर्टिफिकेशन के लिए उनकी उत्पाद को किस तरह से प्राकृतिक उत्पाद बनाना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। 125 किसानों का एक क्लस्टर बनता है, ऐसे करीब 10 क्लस्टर भोपाल में है, और वो 125 कृषकों के ऊपर 2 किसान दीदियां हैं जो कि पहले से ही मैनेज से प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित हैं। शासन द्वारा प्रशिक्षित करके मास्टर ट्रेनर बनाई गई है, वो मास्टर ट्रेनर कृषि सखियों को इन 125 किसानों को गाइड करने के लिए रखा, वित्तीय सहायता, मैं अनुदान नहीं कहूंगी, जो प्रोत्साहन राशि और वित्तीय सहायता योजना में दी जा रही है।
0: जी जी।
1: वो दो तरीके से, एक तो इन कृषि सखियों को मानदेय मिलता है इन कृषकों को गाइड करने के, प्रतिदिन के हिसाब से एवरेज रहता है, तो मासिक लगभग 5,000 रूपए एक किसान दीदी को मिलता है, क्योंकि ये किसान दीदी उसी स्थान पे रहती है जहाँ ये किसान है उनके लोकल एरिया में रहती हैं, तो वो पूरे टाइम उनको गाइड कर सकती हैं। तो ऐसे हमारी 10-10 किसान दीदियां दोनों ब्लॉक में हैं, टोटल 20 किसान दीदी हमारे भोपाल में हैं, और उनसे जुड़े हुए लगभग 1250 किसान हैं जिनको कि ये किसान दीदियां नेचुरल फार्मिंग करने में मदद कर रही हैं। अब बात आती कि किसान को क्या प्रोत्साहन है इसमें, तो किसान को ये जानकारियां देने के अलावा प्रत्येक किसान को उसका जो सर्टिफिकेशन प्रोसीजर है उसको गाइड करने के लिए प्रति किसान 2,000 रुपए उनको डायरेक्ट डीबीटी के खाते में दिया जाए,
0: किसान के खाते में।
1: एक बार किसान का चयन हो जाए, उसकी लोकेशन वगैरह बाकायदा लैंग्वेज लैटिट्यूड ऑनलाइन अपडेट होती है, जब किसान अपना चयन कर ले, क्योंकि पूरे क्षेत्र के लिए नहीं होता, किसान के एक एकड़ क्षेत्र, तो जैसे मान लीजिए 125 किसान है, तो 125 के प्रत्येक किसान के एक एकड़ क्षेत्र के लिए शासन प्रावधान रखता है। इसके अतिरिक्त किसान भाई करना चाहे तो हम उनको पूरी मदद करते हैं टेक्निकली, फाइनेंशियली वो अपनी तरफ से उन्हें जो भी सर्टिफिकेशन का राशि है उन्हें बेयर करनी होती है। हमारी शासन की तरफ से 2,000 रुपए प्रति किसान ये प्रावधान है हर किसान को देने,
0: जो समूह में शामिल है, जिसके पास एक एकड़ भूमि है,
1: जिसके पास एक से अधिक भी भूमि है, तो एक एकड़ में वो जैविक खेती कर रहा है,
0: कम से कम एक एकड़ होना आवश्यक है,
1: एक एकड़ होना आवश्यक है, साथ में गोवंश भी हो उसके पास, क्योंकि ये गौ आधारित की, तो एक भी यदि गाय है तो वो जरूरी है कि वो रखे,
0: मतलब ये पात्रता हुई किसान की
1: जी,
0: कि उसके पास गौवंश भी हो और एक एकड़ जमीन का भी वो मालिक हो, तो सरकार उसे प्रोत्साहन राशि भी देती है, प्रशिक्षण भी देती है,
1: प्रशिक्षण भी देती है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम विभिन्न माध्यमों से उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनको मार्केटिंग करने में भी मदद। एक बार उसका योजना में चयन हो जाए तो हम उसको 3 साल तक हैंड होल्डिंग करते हैं और उसका सर्टिफिकेशन भी हम यहाँ से जनरेट करवा, उनको प्रथम वर्ष C1, द्वितीय वर्ष C2 और तृतीय वर्ष C3, इस प्रकार 3 अलग अलग सर्टिफिकेट हम जारी करते हैं, जिससे ये सत्यापित होता है कि ये ऑर्गेनिक खेती हमारे किसान भाई कर।
0: तो ये C1 और C2 जो C3 सर्टिफिकेट आपने बोले हैं, इसको किस तरह समझे, अगर थोड़ा सा सरल भाषा में समझाना चाहिए।
1: जो जैविक सर्टिफिकेशन की एक एजेंसी है, नेशनल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन NCOF
0: जी,
1: NCOF का सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि किसान ने जैविक उत्पाद ही बनाया है।
0: जी,
1: ये सर्टिफिकेट जो जारी होता है वो हमारे फील्ड के अधिकारी समय समय पे उनको जो गाइड करते हैं और वो उस प्रैक्टिस को अपना रहे हैं, इसकी पुष्टि करते हैं। और क्योंकि इसके पहले किसान रासायनिक खेती कर रहे थे, तो 1, 2 और 3 इसलिए देने की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो जो भी रासायनिक अवशेष थे हम मिट्टी में या पौधों में जो मिट्टी में है उनको पूरी तरह से खत्म होने में 3 वर्ष का समय लगता है, इसलिए प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष का सर्टिफिकेशन।
0: तीसरा सर्टिफिकेट हम तब देते हैं जब पूरी तरह से रासायनिक जो अंश उसमें पड़ेंगे वो समाप्त हो चुके होते हैं। बहुत अच्छी जानकारी मैम जी, कुछ और बताना चाहेंगी हमारे किसान भाइयों को, संदेश देना चाहेंगी प्राकृतिक खेती की तरफ या जैविक खेती की तरफ वो मुड़े और उसके प्रति जागरूक हों और उससे मुंह ना मुड़े
1: जी। अभी जैसे आपने कहा कि सबसे प्रमुख शब्द है, मैं कहूंगी वो है धैर्य। यदि प्राकृतिक खेती करना है ये हम जानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है धैर्य की कमी। तो मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगी कि एकदम से पूरे क्षेत्र को प्राकृतिक में ना बदलें, पर छोटे क्षेत्र में करके देखें।
0: बहुत अच्छी जानकारी मैं। किसान भाइयों आपने जाना कि किस तरह से हम प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़कर या जैविक खेती को अपनाकर मिट्टी में सुधार तो करेंगे ही, साथ में ही हम अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी सुधारेंगे। तो निश्चित ही जुड़िए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अधिकारियों से, संपर्क करिए और स्वयं को और देश को स्वस्थ बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आए हैं डॉक्टर AB सिंह जी के पास। आप पूर्व विभागाध्यक्ष एवं निदेशक रहे हैं ICAR IISS में एवं वर्तमान में आप डीन ऑफ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सीज यूनिवर्सिटी भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर नमस्कार, प्राकृतिक खेती के विषय में हम आपसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए, तो उसी परिदृश्य में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है।
2: किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती का मतलब ही है प्रकृति के अनुकूल। आप जो प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके और खेती करते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। किसान भाइयों, इसमें कोई भी ऐसा रसायन उर्वरक कोई भी ऐसी बाहरी की चीज नहीं प्रयोग किया जाता, केवल प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक चीजों का ही प्रयोग करके हम खेती करते हैं।
0: जी सर। सर, प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए हमारे किसान भाइयों को?
2: किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में हम प्राकृतिक संसाधनों जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, ऐसे पेड़ पौधे जिनको जानवर नहीं खाते, उन पेड़ पौधों की पत्तियों को अर्क को लेकर के ही हम खेती में लगाते हैं और इसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं।
0: जी सर, प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए?
2: किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि चार ऐसे कंपोनेंट जिसको कहते आयो होते हैं
0: जी।
2: जो हमारे किसानों को ध्यान देने के लिए है, जिसमें हम कहते हैं एक पदार्थ बनाया जाता है जो गोबर गोमूत्र से, जिसको

0: हम बीज अमृत कहते हैं, आप उस बीज अमृत के माध्यम से ही हम बीज उपचार करके कोई बाय फर्टिलाइजर अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीजों का हम प्रयोग करके हम बीज उपचार करते हैं। दूसरा होता है जीवामृत। जीवामृत का मतलब ये है किसान भाइयों कि जो हम खेत में ढेर सारी खादों को डाल करके या इन चीजों को गोबर डाल करके करते, उसको ये लिक्विड में होता है, हर केवीके में हर संस्थान में ये उपलब्ध है कि अगर किसान भाई हमारा प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो कैसे हम इन चीजों को बनाएं, कैसे प्रयोग करें, इसकी जानकारी विस्तृत हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट है। दूसरा होता है कि हमारे किसान भाई ज्यादातर सोयाबीन गेहूं इस टाइप की फसलें उगाते हैं। प्राकृतिक खेती में किसान भाई हमेशा ध्यान रखें एक से ज्यादा फसलों को उगाने की जरूरत होती है। जैसे अगर आपकी मान लो सोयाबीन की फसल किसी कारणवश ज्यादा बारिश से सूखा से किसी कारणवश अगर नष्ट हो जाती है, अगर दूसरी फसल आप लगाएं जैसे मक्का है, तुअर है या और क्रॉप है, तो कम से कम हमारे किसान भाई एक फसल के नष्ट होने के बजाय दूसरी फसल ले सकता है, इसमें नुकसान भी हमारे किसानों को कम होता। दूसरा हमारा किसान भाई जो आज ज्यादातर गेहूं धान की पराली को जला करके फेंक दे रहा है, इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा, किसान भाई उन्हीं पराली और इन फसल अवशेष को ही खेत में डालकर आपको एक मल्च जिसको आच्छादन बोलते हैं, और आपका वो आच्छादन आपके खरपतवार को भी रोकता है, दूसरा उसमें जो पोषक तत्व होते वो भी आपकी मिट्टी में मिलते जाते हैं।
1: सर, किसानों की लागत कम लगे और ज्यादा फायदा प्राकृतिक खेती से कैसे लिया जाए?
0: किसान भाई देखिए, जो मैंने पहले अभी बताया कि आपके जो प्राकृतिक संसाधन जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, पत्तियों की अर्घ को और नीम की पत्तियों को, इन सब चीजों का भी प्रयोग करके किसान जो बाहर से अपनी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड खर्च करके ला रहा है, आपको ये सब कोई भी चीज बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। किसान अपनी लागत को इसमें काफी हद तक कम कर सकता है, बशर्ते इन तकनीक को समझने की जरूरत है।
1: सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती में पोषण प्रबंधन के क्या तरीके हैं?
0: देखिए, मैंने किसान भाइयों पहले ही बताया कि पोषण प्रबंधन के लिए हमारे किसानों को गाय के गोबर, गोमूत्र का ही प्रयोग करके, जिसको हमने आपको बताया बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत करना है। दूसरा, जो आप फसल अवशेष जलाते हैं उन फसल अवशेष को फेंकना नहीं है, वो आप जैसे मान लो अभी गेहूं की फसल आ रही है, आप इसमें इस समय जो सोयाबीन का अवशेष निकलता है वो पूरे अवशेष को उस खेती में बिछाना है, और वो दो तरीका आप किसान भाइयों काम करता है, एक तो मल्च जिसको कहते हैं नमी बनाए रखता है, और वो मल्च धीरे धीरे तड़ करके पौधों को मिट्टी को पोषक देता है जो हमारी फसलों के लिए उपलब्ध होता है।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती में कीड़े और बीमारियों को उपचार हेतु क्या क्या करना चाहिए?
0: किसान भाइयों, आपको आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। ऐसे पेड़ पौधे जिनको जानवर नहीं खाते, पहले तो आप सीख लें कौन कौन से पौधे, जैसे सीताफल है, करंज है, कनेर है, धतूरा है, सदाबहार, ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको जानवर कभी खाते नहीं, ना वो आपके किसी उपयोग में आते। अगर इन पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ करके दो दो किलो पत्ती पांच पौधों की तोड़ करके 20 लीटर पानी में आप डाल देते हैं, और डालने के बाद 20 दिन के लिए उसमें छोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन डाल करके 2 लीटर गोमूत्र डाल दीजिए, वो 20 दिन के बाद उसको आप छान लीजिए, छानने के बाद 4 से 5 लीटर इसका लेकर के और 150 लीटर पानी में डाल करके कोई भी कीड़ा लगा हो, कोई भी बीमारी लगी है, अगर इसका छिड़काव करके आप देखिए, आप खुद कहेंगे कि सर हमको अलग से कोई दवा डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने आपको पहले बताया कि प्राकृतिक खेती में हमको मृदा स्वास्थ्य के साथ मानव स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो किसान भाइयों मैं आपको यही कहूँगा आप इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें तो निश्चित ही आपकी लागत तो कम लगेगी ही, साथ आय का फायदा होगा, साथ साथ आप जो है प्रकृति को भी बचाएंगे।
1: सर, बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए प्राकृतिक खेती के विषय में। हमें आशा और उम्मीद है हमारे किसान भाई इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। किसान कल्याण मंत्रालय तथा कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाता है हमारे किसान भाइयों और बहनों को। उसी सिलसिले में कृषि सखी चुनी जाती हैं जो कि प्रशिक्षण देती हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक कृषि सखी को।
2: नमस्ते, मेरा नाम माया मालवी है, मैं ग्राम टीला खेड़ी जिला भोपाल से आत्मा परियोजना में कृषि सखी के पद कार्य करती हूँ। हमने 125 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें हम किसानों को प्राकृतिक खेती पर जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और साथ में मैं किसान बहनों को अपने खेत पर या घर पे थोड़ी सी जगह में किचन गार्डन लगाने की भी सलाह देती हूँ। उसमें किसान बहनों को ताजा सब्जियां केमिकल रहित प्राप्त होती हैं और उससे उनके पैसों की भी बचत होती है। जब हम किसानों के साथ मीटिंग करते हैं तो हम किसानों को जीव अमृत बनाना सिखाते हैं। तो जीव अमृत में 200 लीटर पानी में 10 किलो गाय का ताजा गोबर मिलाते हैं, 10 लीटर गाय का गोमूत्र मिलाते हैं, 2 किलो बेसन मिलाते हैं, 2 किलो गुड़ मिलाते हैं और 2 किलो ही खेत की मिट्टी लेते हैं। पर खेत की मिट्टी ऐसी होना चाहिए, या तो मिट्टी मेड़ की हो या फिर बरगद के पेड़ के नीचे की, ऐसी जगह की मिट्टी जहाँ पे केमिकल का उपयोग नहीं किया हो। इस सब घोल को अच्छी तरह से मिलाकर छाया में सूती कपड़े से बांधकर रख दिया जाता है। इस घोल को आप घड़ी की दिशा में दिन में 2 बार इसको घुमाना होता है। इसके बाद 5-6 दिन में यह घोल बनके तैयार हो जाता है। इसका आप स्प्रे खेत पर भी कर सकते हैं या सिंचाई के समय भी आप उपयोग कर सकते हैं। हम फिर इसके बाद किसानों को जैसे नीम अस्त्र भी बनाना सिखाते हैं, तो नीम अस्त्र में 5 किलो नीम की 5 लीटर गोमूत्र, 1 किलो देसी गाय का गोबर 100 लीटर पानी में मिलाकर इसको भी अच्छी तरह इस मिश्रण को मिलाकर कपड़े से या टाट से बांधकर छाया में रख देते हैं। यह मिश्रण भी 3-4 दिन में बनके तैयार होता है और 1 एकड़ खेती के लिए 100 लीटर पर्याप्त होता है। मैं किसानों को कंडा टॉनिक भी बनाना सिखाती हूँ। कंडा टॉनिक में 2-3 साल पुराने कंडे 100 लीटर पानी में 10-15 कंडे एक कपड़े में बांधकर आप इसको 24 घंटे के लिए रख दें छाया में। इसके बाद वह कंडे निकाल लें और उस मिश्रण का स्प्रे भी आप किसान करते हैं तो उससे भी किसानों की फसल में बहुत फायदा होता है। यह सब इस्तेमाल करने से किसान को बचत, पैसे की बचत तो हो रही है, साथ में केमिकल रहित खेती भी हो रही है। धन्यवाद।
3: प्राकृतिक खेती या जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मा परियोजना, किसान कल्याण मंत्रालय तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कई किसान लाभान्वित हुए हैं और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। ऐसे ही एक कृषक भाई से हमने बात करी।
4: सभी को नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह नागर है, मैं ग्राम हिनोदी सड़क में रहता हूँ। हमने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जुड़े हुए हैं, जो की मध्य प्रदेश शासन की एक किसान एवं कृषि कल्याण विभाग की योजना जो आत्मा परियोजना के अंतर्गत आती है। इस योजना से हमें काफी लाभ हुआ है, हम प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हुए हैं। गाय के गोबर, गोमूत्र और उनके द्वारा जो हम केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से हमारा गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। अभी हमने उसमें कुछ मात्रा में उड़द की फसल ली थी, कुछ मूंग लगाया था हमने हमारे खेतों में। उसको देख के हमारे जो पड़ोसी किसान है उनको काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसे कि हमने जीवामृत बनाया था वो डाला, घन जीवामृत बनाया था वो डाला, वर्मी कंपोस्ट जो हमने हमारा केचुआ खाद बनाया था उसका उपयोग किया था, कीटों के नियंत्रण के लिए हमने नीमास्त्र का तैयार किया था जो 10 पत्तियों का मिश्रण होता है, उससे हमारी फसल काफी सुरक्षित रही, हमारा खेत सुरक्षित रहेगा। ताकि हमने उसमें जीवामृत, बीजामृत और जो मिट्टी के अंदर काफी लाखों की मात्रा में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमें हमारी मिट्टी को जीवंत स्वरूप में रख रहे हैं उसको काफी अच्छी मात्रा में बरकरार रखने के लिए हम प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हैं। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी खेती की लागत को कम करके प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों। मिट्टी के अंदर अगर सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे तो आपका खेत अधिक मात्रा में आपको उत्पादन देगा। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको एक स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जमीन और स्वस्थ किसान परिवार और एक स्वस्थ समाज की ओर आगे लेके जा सकते हैं।
3: किसान भाइयों और बहनों, किसान कल्याण मंत्रालय तथा कृषि विकास विभाग परियोजना संचालक आत्मा भोपाल में जाकर हमने यह स्थल रिकॉर्डिंग करी। प्राकृतिक खेती या जैविक खेती पर शासन की क्या योजनाएं हैं, इस विषय में विस्तृत जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और मैं आपके साथ थी अंशु तिलेठी।
5: अब अपन ने सुनी प्राकृतिक और जैविक खेती के लाभ एवं शासकीय योजनाओं पर अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं हितग्राहियों से बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। रिकॉर्डिंग सहयोग हतो अंशु तिलेठे को और भैया बहन हर चलो अब कछु मनोरंजन हो जाए। सो आप और उनको सुनवात है जो देवी गीत राम सिंह लोधी और संगी साथियों को गाओ भव।

0: अब अपन ने सुनो जो देवी गीत राम सिंह लोधी और संगी साथियों को गाओ भाव। और चलो अब कछु और बातचीत कर ली जाए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। जी खो 1 जुलाई 2001 को शुरू करो गाओ हो तो इको मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र को सबसे कमजोर वर्ग को और कृषि मजदूरन को सुरक्षा देवो। योजना को लक्ष्य जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करवो हो तो इमें 3 तरह के लाभ मिलत है। जीवन बीमा कवरेज, आवधिक एक मुश्त उत्तर जीविता लाभ, मैंने कचु साल के बाद पैसा वापस मिलवो। इके लाने 18 से लेकर 50 साल की आयु के बीच के कृषि श्रमिक जिके पास बहुत ही कम या कोनो जमीन नहीं होत है वे इके लाने पात्र होते हैं। शुरुआत में मजदूरन को 1 रुपया प्रतिदिन को अंशदान इके लाने देने पड़त तो और केंद्र सरकार इमें 2 रुपया जोड़ती। गांवन में ग्राम पंचायत मजदूरन की पहचान करवे बारी मुख्य नोडल एजेंसी हती और योजना के लाने फंड के तौर पर LIC के सामाजिक सुरक्षा कोष से 500 करोड़ रुपया में से 150 करोड़ रुपया दे गए हते। एक समूह में न्यूनतम सदस्यन की संख्या कम से कम 20 मजदूर होने चाहिए। मैंने सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो कृषि मजदूरन को पूरा फायदा देते हैं। और अब आप और उनको बता देते हैं मंडी के भाव। सोयाबीन को भाव है 4,210 रुपया से 5,100, गेहूं को भाव है 2,350 से 3,130 रुपया, सरसों को भाव है 5,195 से लेकर 5,400 रुपया प्रति क्विंटल, डॉलर चना को भाव है 6,400 से लेकर 9,765 रुपया प्रति क्विंटल, देसी चना को भाव है 4,975 से 7,010 रुपया, मसूर है 5,380 रुपया प्रति क्विंटल, मटर को भाव है 4,240 रुपया, मूंग को भाव है 6,665 रुपया, धनिया चल रहा है 6,210 रुपया प्रति क्विंटल, लाल मिर्ची को भाव है 6,300 से लेकर 13,610 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन को भाव है 3,114 से लेकर 25,509 रुपया प्रति क्विंटल तक, प्याज को भाव है 959 से लेकर 3,782 रुपया प्रति क्विंटल तक। सो जे हते मंडी के भाव। सो हम उम्मीद करत हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारी है हमने आप और उनको दी वे आप और उनके काम में आए हैं और खेती किसानी के लाने इन सभी बातों को आप ध्यान रखो, संग संग सरकार की इन सभी योजनाओं को आप फायदा भी उठाओ। और ई के संगे आज को किसान वाणी कार्यक्रम हम इतना ही समाप्त करते हैं। स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आकाशवाणी।

0: भोपाल से अभी किसान भाई सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं गौरा धवनलाल।
2: नमस्कार, हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। सीरीज का नाम है जन सेवा से देश सेवा। हमारी आज की थीम है उद्यमिता और नए भारत की अर्थव्यवस्था। फोकस एरियाज रहेंगे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन। तो आइए स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। सबसे पहले स्वागत है मिस्टर अशोक चांडक, जो प्रेसिडेंट IESA में है। अशोक जी, आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सेक्रेटरी जनरल एंड CEO PFT चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर मेहता, स्वागत है आपका।
4: धन्यवाद।
2: आपसे शुरुआत करते हैं अशोक, एंड आई नो कि सेमीकंडक्टर्स इज आपकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, आपके एरिया ऑफ पैशन भी है। तो ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसको सेटअप किया था, तो इसका उद्देश्य क्या था?
3: सबसे पहले मैं तो एक लाइन आम भारतीयों के लिए कहूंगा कि सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं, कार चलाते हैं, टीवी देखते हैं, अस्पताल में हमारे इलाज की मशीनों से स्कैनिंग किया जाता है, इस सब के पीछे सेमीकंडक्टर चिप्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए आज खेती, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रक्षा, परिवहन, अंतरिक्ष जैसे सभी क्षेत्रों में चिप्स की जरूरत है। और ये सिर्फ तकनीक का विषय नहीं है, लेकिन ये भारत की अग्रसर होने की बात है। अब सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य जो है, ये शुरू हुआ था 6 साल पहले, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नाम से बोला गया। उसका पॉलिसी नंबर 1 भी अनाउंस हुआ था, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसका प्रमुख उद्देश्य है सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना। वैसे तो भारत काफी लंबे समय से चिप डिजाइन और सॉफ्टवेयर करने में लगा हुआ है, लेकिन ये सारा जो काम है ये दूसरे देशों पर निर्भर होता है और दूसरे देशों की कंपनियों के लिए किया जाता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन उसके वजह से हमारा जो चिप निर्माण का खुद का जो काम है वो आगे कभी बढ़ा नहीं था। और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इसमें पहले चरण में 76,000 करोड़ का 76,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। और अभी दूसरा मिशन भी चालू हुआ है कुछ महीनों पहले, जिसे सेमीकॉन इंडिया 2.0 कहते हैं। इसमें अभी एक्सपांशन किया गया फुल इकोसिस्टम के लिए सपोर्ट करने के लिए, जिसमें चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मशीन्स, मटेरियल्स, R&D और स्किलिंग, ये सारे मुद्दे शामिल है। तो एक शॉर्ट में कहूंगा अभी कि पहला तो आपूर्ति में भरोसा करना है, इसलिए हमारे चिप उद्योग को यहाँ पर ग्रोथ करना, उनके लिए सपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा, आर्थिक विकास। कोई भी देश के लिए सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज की डेट में, क्योंकि इस पर काफी चीजें निर्भर करती है और इससे रोजगार भी बढ़ेंगे, कंपनियों को नए अवसर प्रदान होंगे। और तीसरा, हमारी जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, इसको भी बढ़ाना है। तो उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम भी दुनिया की तरह चिप बनाते रहे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि हम उन क्षेत्रों को मजबूत करें और जहां पर भारत की क्षमता विकसित हो सकती है और भारत दुनिया की जरूरतें भी पूरा कर सकता है।
2: डॉक्टर मेहता, हम ये तो जानते हैं कि सरकार का फोकस चिप मैन्युफैक्चरिंग पे रहा है और अलग अलग स्कीम्स भी इनको इनकरेज करती हैं, चाहे वो इनोवेशन की हो, चाहे टिंकरिंग लैब्स हो, मगर इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स कैसा रहा है? और आई थिंक अब तक तो थोड़ी जर्नी तो हम तय कर चुके हैं, और कुछ चैलेंजेस इसके रिस्पॉन्स में जहां पर और मदद चाहिए इंडस्ट्री को इसके लिए?
4: देखिए, अभी अशोक जी ने बहुत अच्छा पूरा इसको विस्तार से बताया, और इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि वो सेमीकंडक्टर मिशन या हमारे जो अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इनोवेशंस को अपने डेली एंटरप्राइजेज में और कैसे उसमें एंटर कर सकें, इसके बारे में इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा इसमें जागरूक है। और जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल में जो पिछले 2-3 साल में एक सेमीकंडक्टर मिशन का एक इकोसिस्टम देश में क्रिएट किया है, सेमीकंडक्टर मिशन अनाउंस किया है, उसमें सारे जो इंडस्ट्री है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
3: ऐड करूंगा यहाँ पर, जो टोटल अभी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो

0: सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो 12 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, इसमें जो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, इसमें करीबन 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें 5 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हो रहे बल्कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं इसमें। इसके साथ साथ 24 चिप डिजाइन की प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है।
1: आइए सुनते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर ये रिपोर्ट।
2: सेमीकंडक्टर यानी चिप आज की लगभग हर तकनीकी चीज का अहम हिस्सा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना है। इसका लक्ष्य भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मिशन के तहत ध्यान सिर्फ चिप बनाने पर नहीं है, इसमें चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन यानी फैब, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण पूरी श्रृंखला को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का एक उद्देश्य चिप डिजाइन है। भारत में पहले से ही कई इंजीनियर सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्टार्टअप्स और डिजाइन कंपनियों को टूल्स, फाउंड्री सेवाओं और अन्य सहयोग के जरिए समर्थन देने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य देश में चिप डिजाइन उद्योग को तेजी से बढ़ाना और स्वदेशी बौद्धिक संपदा यानी आईपी विकसित करना है। यह मिशन केवल तकनीकी तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा रोजगार और कौशल विकास से भी जुड़ा है। मिशन में शोध, वैश्विक सहयोग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रतिभा विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार निवेश सहायता, तकनीकी साझेदारी और डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे कदमों पर काम कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन केवल चिप बनाने की योजना नहीं है बल्कि यह देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार और भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा प्रयास है।
1: सो जैसे अभी डॉक्टर मेहता ने कहा कि हम जब बात करते हैं ये लॉन्ग टर्म है, आई थिंक इंसेप्शन से प्रोडक्शन, और अभी आपने अशोक प्रोडक्शन की बात भी करी, मार्केट में आ गए हैं, आर दे बीइंग यूज्ड, फीडबैक, बिकॉज ये पूरा सर्किट होता है टू ऑल्सो कैप्चर द मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि वो कहते हैं ना हिट द ग्राउंड रनिंग, कब हम लोग इस स्तर पे पहुंचेंगे कि हमारे जो इंटरनली प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स हैं दे आर एक्चुअली हमारी काफी सारी नीड वो सेटिस्फाई कर रहे हैं?
0: इसमें थोड़ा और समय लगेगा। जैसे कि मैंने बताया 5 प्रोजेक्ट शुरू हो चुके, लेकिन उनके पास भी अभी मैक्सिमम जो सप्लाई होगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन रही है अभी, और बाकी 7 प्रोजेक्ट और भी बनेंगे, 1-2 साल में वो ऑन ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे जो देश की कंजम्पशन है सेमीकंडक्टर की, उसकी पार्शियल क्षमता से हम पूरी कर पाएंगे। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि 2030 में भारत में करीबन $103 बिलियन का सेमीकंडक्टर का डिमांड उभर कर आ रहा है। आज हम 2026 की बात करें तो आज भी हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की डिमांड करीबन $55 बिलियन का है और सप्लाई less than $1 बिलियन और इवन उतना भी नहीं है। तो जैसे ही हमारे ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, हम देख सकते हैं कि करीबन $10 से $20 बिलियन का जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से फुलफिल होगा और बाकी हमें फिर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट बनेंगे, जो परियोजनाएं शुरू होगी प्रोडक्शन में, वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो डिपेंडेंसी है बाकी अदर कंट्रीज में, जिसे मैं कहता हूं डिपेंडेंसी बदल के बन जाएगी इंटरडिपेंडेंसी। मतलब हमें कई बार ये देखने में मिलता है, सुनने में पड़ता है कि कुछ कंट्रीज आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, वो अपने अपने लिमिटेशंस लगाते हैं कुछ देशों के लिए। हमें उस बात से था इसका छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन पर भी कई देश डिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें करीबन 1000 टाइप की चिप लगती है कंट्री में और कोई भी प्रोडक्ट के लिए, तो पूरे तो 100% हमारा इसमें सेल्फ रेजिलियंस नहीं होगा, सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि करीबन 20% का हमारा 2-3 साल में लक्ष्य पूरा जरूर हो जाएगा इसमें। और साथ में अभी जो नया स्कीम अनाउंस हुआ है, जैसे मैंने बताया 2 महीना पहले, इससे नए प्रोजेक्ट और शुरू होंगे, तो 2030 तक वो प्रोजेक्ट भी अपने प्रोडक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट 2 साल में पूरे होते हैं, जिसे ओसैट और असेंबली कहा जाता है, और कुछ प्रोजेक्ट को 4-5 साल लगते हैं, जिसे फैब्स और फाउंड्री कहा जाता है। तो हमें दोनों का कम्बिनेशन देखना है, इसलिए कहता हूँ कि 2030 में क्षमता काफी बढ़ जाएगी। हमारी जो अभी प्रोडक्शन हो रही है इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऐसा हमें मैसेज मिल रहा है कंपनी से कि उनका डिमांड पूरा फुलफिल्ड है, मतलब जो कैपेसिटी है फुल्ली बुक्ड है, मुझे बस पूरा रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड का, कुछ इंडियन कंपनीज का। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा एक क्रेडिबिलिटी बन गया है, ये जो हम ट्रस्ट वर्दीनेस कहते हैं कि भारत में चिप बन गई है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी ग्लोबल मार्केट में और घरेलू मार्केट में भी उसका अच्छे से उपयोग हो रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, हम ये भी जानते हैं कि आजकल जो भी टेक्नोलॉजी है बड़ी फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आते हैं। तो जब हम किसी चीज में जिसका स्पेशली जेस्टेशन पीरियड लंबा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, बीच में टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री और हमारी स्टार्टअप्स, हमारा इकोसिस्टम गियर्ड अप है कि वो मोबिलिटी, वो एक्सपेंशन और नई टेक्नोलॉजी को अंदर लाने के लिए हम लोग इक्विप्ड हैं दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है सेमीकंडक्टर्स में?
3: जी बिल्कुल, ये तो सेमीकंडक्टर की एक टेक्नोलॉजी है, बट अगर आप ओवरऑल जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या हमारे एमएसएमईज हैं, क्या वो इसके लिए गियर्ड अप हैं या नहीं है, देश में क्या वो एक इनोवेशन का इकोसिस्टम है या नहीं है, ये आपने सवाल पूछा, तो डेफिनेटली मैं इस पे कहूंगा कि जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया था, हमारे देश में सिर्फ 400 रजिस्टर्ड जो है स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 225,000 से ज्यादा हमारे देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न ऑलरेडी देश में हो चुके हैं। कहने का मतलब है आज हर जो युवा यहाँ पे है, क्योंकि हमारी कंट्री में 65% लोग यंग हैं जो कि 35 इयर्स के कम की एज के हैं, तो मेन इसमें मकसद ये है कि युवाओं को हम सिर्फ जॉब सीकर ना बनाएं बल्कि जॉब क्रिएटर की इसमें भूमिका हमारे युवा निभाएं। तो हमारी एम्बिशन अभी ये है कि सबसे पहले डिजाइन इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, लीड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि डिजाइन भी यहाँ पे हो और इनोवेशन भी इंडिया में हो और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में हो, बट इंडिया जो है वर्ल्ड में लीड करे टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी की जहां तक एडॉप्शन की बात है, आज हमारे देश में, क्योंकि हमारे बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही एस्पायरिंग हमारी सोसाइटी है, आज देख लीजिए 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हमारे देश में यूज हो रहे हैं और हमारे देश का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है, और हमने जो UPI का है पूरा एग्जाम्पल यहाँ देश में है, और किस तरीके से कोविड के टाइम में हमने नई टेक्नोलॉजी अपना के और देश में जिस तरीके से हमने कोविड को एक अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि इतना आबादी वाला देश था, वहां पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं समझता हूं जो ओवरऑल एक इकोसिस्टम बना है, एक इनोवेशन का इकोसिस्टम बना है, जो कि आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से जो हमारी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ होगा, जब हम विकसित भारत 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, उसमें जो सेंट्रल जो पिलर होगा हमारे ग्रोथ का वो है टेक्नोलॉजी, और इंडिया सारी टेक्नोलॉजीज को जिस तरीके से अडॉप्ट कर रहा है और जिस तरीके से हमारे युवा जो है आज, चाहे आप स्टार्टअप की बात करें, चाहे स्पेस में है, जस्ट 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें इंडिया भी है कि जिन्होंने स्पेस में जो है प्राइवेट सेक्टर और स्पेशली युवा जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो ओवरऑल एक देश में एक इकोसिस्टम बन रहा है, उसमें सारे हमारे युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे जो लोग हैं टेक्नोलॉजी में बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, और जो जितने आज अगर स्टार्टअप भी हमारे आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, बट हमें ये करना है कि जो टेक्नोलॉजी हम देश में एक ला रहे हैं नई नई, उससे जो है किस तरीके से हम एक आम आदमी की जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, और टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन जब तक ना हो तब तक उसका जो कि हर आम आदमी चाहे गांव में हो शहर में हो वो टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हो और उसको यूज कर सके, और यही एक हमारे देश में इसमें खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, खास तौर पे आपके एग्जांपल है UPI, और अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का जो हमारे देश में जितना सस्ता इंटरनेट है दुनिया में, मेरे ख्याल से कहीं पे भी इतना जो सस्ता इंटरनेट नहीं है, तो जो इस टाइम ओवरऑल हमने जो नया एक कदम लिया है सेमीकंडक्टर का, डेफिनेटली ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और दूसरा जो हमारे अटल इनोवेशन सेंटर्स हैं उसका डेफिनेटली मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे हम स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में और जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, IITs हैं या दूसरे ITIs हैं, कैसे हम अटल इनोवेशन मिशन के थ्रू अपने युवाओं में, अपने यंगस्टर्स में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए कैसे उनको और इसमें पार्टिसिपेट करवाएं, और ये पूरे देश में चल रहा है। मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हर स्कीम में ये है कि उसमें कैसे हम युवाओं को जोड़ सकें, और युवा इसमें मैक्सिमम जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, और फाइनली यही हमारे देश की विकसित भारत बाई 2047 की उसकी जो अगर मैं कहूँगा फाउंडेशन स्टोन है, जो आधारशिला है, वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी रहेगी।
1: अशोक, डॉक्टर मेहता ने कहा नए कदम, आपने भी कहा कि न्यू इनोवेशन की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नई चीज शुरुआत होती है तो टीथिंग प्रॉब्लम्स तो होती हैं। आपको क्या लगता है कि फिलहाल कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस, वो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ चैलेंजेस आप शेयर करना चाहेंगे अशोक हमारे लिसनर्स के साथ?
0: भारत में जैसा मैंने पहले कहा कि चिप डिजाइन का काम तो कई सालों से हो रहा है, 2-3 दशक से हो रहा है, तो वहां पर हमारे पास मैन पावर, ट्रेंड पूल ऑफ द इंजीनियरिंग अवेलेबल है। करीबन वर्ल्ड का 20% चिप डिजाइन इंडियन इंजीनियर्स करते हैं, वो मुद्दा तो क्लियर हो गया। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भारत के पास कभी ये इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे पास सिर्फ एक ही प्लांट ऑपरेशनल था, जो कि मोहाली चंडीगढ़ के पास में SCL नाम से बोला जाता है, सेमीकंडक्टर लैब लिमिटेड, उतना ही था, एक छोटा सा ग्लोबल कंपैरिजन में। तो भारत का जब ये एक जर्नी तय हो गया, हमारा जो रोड मैप बन गया कि हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना जरूरी है अपने आत्मनिर्भरता के लिए और ऑल्सो ग्लोबल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारे पास उसके ट्रेंड मैन पावर नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है वैसे देखा जाए तो। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम इन चीजों को भारत में कैसे लाए, और इसीलिए ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना हुई थी उसके तहत कुछ इंसेंटिव दिया गया है ग्लोबल कंपनीज को कि वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करें। और उसके साथ में मतलब ये हो गया कि हमें जो मेन चैलेंज है ग्लोबल कोऑपरेशन, ग्लोबल कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या ग्लोबल कंपनीज खुद अपना यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग सेट करें, ये एक बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। उसी दृष्टिकोण के तहत काम चल रहा है, हमें उसमें पार्शियल सक्सेस है। मतलब जैसा मैंने बताया कि कुछ 12 प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुए थे उसमें एक कैटेगरी होती है असेंबली यानी टेस्ट, ओसैट बोला जाता है, उसमें हमें सक्सेस हो गया है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट भी कम होता है और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी थोड़ा इजी है मैनेज करना। लेकिन जो दूसरा क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग का मुद्दा है, जिसे फैब कहा जाता है, फाउंड्री, वेफर बनाने की स्थिति, उसके लिए अभी भी हमारे पास सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट मिले हैं। एक टाटा का है, बड़ा इन्वेस्टमेंट, $8-9 billion का, जिन्होंने एक कोलैबोरेटर लिया है ताइवान से, और दूसरा है सिक्स सेम नाम की कंपनी जो उड़ीसा में आ रही है, उन्होंने भी एक कोलैबोरेटर लिया। तो सिर्फ दो प्लांट है। तो हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज रहेगी, हम कैसे ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें, या उनसे हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट वेंचर बनाएं, ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से यही है। दूसरी बात, अब इंडिया के पास में जब मैंने कहा कि हमारे पास चिप डिजाइन के क्षमता है, लेकिन हमारी जो क्षमता है डिजाइन की वो थोड़ी कैप्टिव डिजाइन सेंटर के तहत बनी हुई है। तो चिप डिजाइन से जो एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट करना है, जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की है उसके हिसाब से चिप बना के उसका प्रोडक्ट बनाएं और फिर मार्केट में लाए, उसके लिए भी हमें चैलेंज है। अभी जैसे अभी रिसेंटली 2-3 प्रोजेक्ट्स पर भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए हेल्प की थी, जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर है, उसकी चिप बनाने के लिए गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, और जो CCTV है, जो कैमराज लग रहे हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे इस टाइप के कई उदाहरण है जहां पर सरकार की मदद से, इंसेंटिव से ये मामला आगे बढ़ रहा है। लेकिन दो क्लियर कट, टू समराइज, मैं कहूंगा दो मुद्दे हैं जहां पर हमें मेन चुनौतियां है। एक, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी लाएं या ग्लोबल कंपनीज को इंडिया में आने के लिए प्रेरित करें, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है उसमें, लेकिन काफी काम करना बाकी है। और दूसरा, जो हमारी चिप डिजाइन की क्षमता है उसको हम चेंज करें टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्रिएशन, उसका भी अभी काम चल रहा है। ये दोनों चुनौतियों का हमें आगे सामना करना पड़ेगा और इसके रास्ते निकालकर आगे बढ़ना होगा।
1: आइए सुनते हैं स्टार्टअप इंडिया पर ये रिपोर्ट।
4: स्टार्टअप इंडिया पहल को 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत युवाओं, उद्यमियों और नए विचारों वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता, आसान नियमों और बेहतर नेटवर्किंग के अवसर देने की कोशिश की जाती है। स्टार्टअप का मतलब केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर किसी नए विचार पर काम कर रहा है, चाहे वह खेती के लिए तकनीक हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, ई कॉमर्स हो या क्लीन एनर्जी, तो वह भी स्टार्टअप की श्रेणी में आ सकता है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य ऐसे विचारों को बिजनेस में बदलने में मदद करना है। इस पहल का एक अहम हिस्सा है DPIIT रिकॉग्निशन, यानी विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता। यह मान्यता पाने के बाद स्टार्टअप कई फायदे पा सकते हैं, जैसे कर संबंधी छूट, आसान अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकारों की तेज प्रक्रिया और कई सरकारी योजनाओं तक पहुंच। पात्र स्टार्टअप्स को अपनी शुरुआती 10 वर्षों में से लगातार 3 वित्त वर्षों के लिए आयकर छूट का लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। स्टार्टअप इंडिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू इनक्यूबेटर है। इनक्यूबेटर नए उद्यमियों को मार्गदर्शन, ऑफिस स्पेस, मेंटरशिप, नेटवर्किंग और फंडिंग से जुड़ी जानकारी देता है। हालांकि स्टार्टअप की यात्रा आसान नहीं होती। शुरुआती फंडिंग, सही मार्केट, टीम बनाना, नियमों को समझना और लगातार बदलती तकनीक, ये सब चुनौतियां सामने आती हैं। इसलिए स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल नए उद्यमियों को एक सहारा देने की कोशिश करती है। स्टार्टअप इंडिया केवल नई कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह देश की युवा प्रतिभा को रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
1: तो आप सही बोल रहे हैं, आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मेहता कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल कंपनीज को इनवाइट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने किया है, ईज ऑफ वर्किंग, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी कम कर रही है, काफी बहुत सारा एफर्ट किया गया है, पर आपको भी इंडस्ट्री से फीडबैक मिलती होगी रेगुलर बेसिस पे, आपके फोरम्स होते हैं, कुछ मेन चीजें जो डिमांड है, जो आस्क है इंडस्ट्री की, जो आप सरकार के सामने रख सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, हमारा टाइम टू टाइम इसमें डिस्कशन मिनिस्ट्रीज के साथ होता रहता है और सरकार इस बारे में बहुत तत्पर है कि कैसे जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान किया जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल डेफिनेटली ये रहता है कि कैसे अच्छी पॉलिसीज बनाएं, बट एट द सेम टाइम जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो स्टेट्स पे होता है। जो सबसे बड़ी बात आती है जब कोई फैक्ट्री आती है, जब कोई नया कारोबार स्थापित करना चाहता है, कोई भी नया उद्यमी है, तो लैंड की अवेलेबिलिटी है, और हालांकि कई स्टेट्स ने, फॉर एग्जांपल गुजरात ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, अभी उत्तर प्रदेश इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है, जिसमें कि लैंड जो है डिजिटली जो उसके मैप्स हैं वो सारे अवेलेबल हों, और कैसे कितनी इजी तरीके से, बिकॉज अल्टीमेटली जब कोई इन्वेस्टर आता है उसके लिए पूरा, ये मैं कह रहा हूं कि आज देश में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, लेबर लॉज की बात है, अभी जो नए लेबर फोर कोड्स हैं वो सब इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड है कितनी जल्दी हम उन्हें पावर कनेक्शन दे सकते हैं, कितनी जल्दी लैंड अलॉट कर सकते हैं और किस दाम में अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका है लैंड की, और इसमें हमारा ये सजेशन रहा है कि हम जो है एक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स लगाएं, खास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि बड़ी कंपनी तो अपना कर लेती है, बड़ी कंपनीज को इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, बट जो स्मॉल कंपनीज हैं, छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, उनको आज हमें एक ऐसा इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमने जो गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी है कि एक ऐसा बनाया जाए जिसमें कि कोई भी उद्यमी जाए और अपना वो उनको क्या चाहिए, पावर कनेक्शन चाहिए और सारी जो उनको अप्रूवल्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएं, या सारे अप्रूवल्स के साथ वो पावर कनेक्शन उनको मिल जाए, उनको जगह मिल जाए जिससे कि वो अपना काम पहले दिन से ही शुरू कर सकें। हालांकि उसमें एक टाइमलाइन रख दी जाए कि अगर आपको हम दे रहे हैं तो इतने टाइम में इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली वो डिपेंड करे कि कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, उसके बेसिस पे जहां जहां जैसे जैसे जिस ज्योग्राफी में जो चीज अवेलेबल है उसी टाइप की अगर कुछ इंडस्ट्रियल अगर क्लस्टर बनाए जाएं जो कि प्लग एंड प्ले सिस्टम के हों, उससे जो है स्पेशली छोटे व्यापारियों को हम इनकरेज कर सकते हैं कि कैसे वो इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में मैक्सिमम हिस्सा ले सकें। और अगर आप आज हम देखें तो स्टार्टअप्स हमारे देश में बहुत आ रहे हैं, बट मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो टेक प्लेटफॉर्म्स और इस पे आ रहे हैं, सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, तो हमें जरूरत है स्टार्टअप्स को और मैन्युफैक्चरिंग में लाने की, और मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत ही टीडियस काम है जिसमें कि डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ये पूरा राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो पे एक अगर प्लग एंड प्ले सिस्टम बन जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर से बन जाए, उसमें कई ऐसे उद्यमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जिससे कि एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत देश में तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि आज भी हम कई टेक्नोलॉजीज पे कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के लिए हमें बाहर के देशों में ही कई देशों में डिपेंड करना पड़ता है। हालांकि आज हमने करीब 40 देशों के साथ FTA कर ले हैं, बहुत बड़ा मार्केट इंडिया के लिए खड़ा कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें करीब $1 trillion मार्केट करीब खड़ा कर दिया है, और EU है, UK है, न्यूजीलैंड है, अपना GCC कंट्रीज में है, ये सारे जो है हमारे FTA साइन हो गए हैं। बट उस FTA का रियल फायदा तब मिलेगा जब जो हमारे प्रोडक्ट्स हों, जो यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे जो उद्यमी, वो जो है ग्लोबली बिल्कुल कॉम्पिटिटिव हों। उसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने तो ओवरऑल अगर आप देखें गति शक्ति मिशन की वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें भी काफी अच्छा, उसमें भी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम आ चुकी है, और जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, बट वहां पे भी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है। तो मैं समझता हूं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से इसमें बहुत अच्छा एक सुधार आया है, बट अगर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की तरफ प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम अगर देश में तैयार हो जाए तो और भी जल्दी इसमें गति आ सकती है।
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है अशोक, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी बात की डॉक्टर मेहता ने कि MSMEs को कैसे हम प्लग एंड प्ले मॉडल में लाएं, बिकॉज उनकी आई थिंक एक वल्नरेबल ग्रुप है MSMEs, और यही एक ग्रुप है जो लेबर इंटेंसिव भी होता है और जॉब्स की भी हमें जरूरत है इस देश में, सो आई थिंक कहीं इनको स्पेशल बेनिफिट्स तो दिए जा रहे हैं, बट ये भी कहा डॉक्टर मेहता ने कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक टीडियस काम है, एक टीडियस चीज है, और इसमें किसी को अंदर आने के लिए जब और लो हैंगिंग फ्रूट है, जब और आसान वाली चीजें हैं जैसे टेक प्लेटफॉर्म करें तो इट्स ईजियर, उसमें ज्यादा आसान है। तो युवा इधर से आके मैन्युफैक्चरिंग में आए, इस

0: वल्नरेबल ग्रुप में आए, आपका क्या फीडबैक, आपको क्या मिली है इसके बारे में, और कैसे सरकार इस वल्नरेबल ग्रुप को और इनकरेज कर सकती है, स्ट्रांग कर सकती है, क्योंकि ये तो बैकबोन है. अगर आप बड़ी इंडस्ट्रीज लें, उनके जो डाउनलाइन वेंडर्स होते हैं वो भी एमएसएमईज ही होते हैं.
1: मैं कहूंगा कि इसमें भारतीय कंपनीज के लिए एक क्षेत्र में काफी अच्छे अवसर दिखाई दे रहे हैं और कुछ उसके मटेरियलाइज भी हो रहे हैं. विजुअली ऑप्टिक्स अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, लोग कहते हैं ये तो हजारों करोड़ की फैक्ट्री लगती है इसमें. सही बात है, 5 बिलियन 8 बिलियन डॉलर वगैरह. लेकिन ये उद्योग सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है. इसमें फैक्ट्री बनने के बाद चलाने के लिए काफी चीजें लगती है, जिसमें कुछ मशीन्स है, मटेरियल्स है, केमिकल्स है, गैसेस है, कुछ चिप डिजाइन का मामला है, प्रोडक्ट क्रिएशन है, उसमें पानी की जरूरत पड़ती है, उसमें वाहनों की जरूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई है. तो हमें ये एक मन में और माइंड में पिक्चर क्रिएट करना होगा कि ये सिर्फ हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, है लेकिन उसके साथ में बाकी लोगों को इसमें अवसर है. अब रही सवाल बात युवाओं की, तो मैं कहूंगा कि इसमें युवाओं के लिए और न्यू जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं. एक मैं एग्जांपल देता हूं कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो शुरू हुआ था, उसे कहते हैं C2S, दैट इज चिप टू सिलिकन. इसके तहत करीबन 400 इंस्टीट्यूट को हाई कॉस्ट डिजाइन टूल्स सरकार ने उपलब्ध करा दिए, जो जिसके लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है अदरवाइज, तो वो करा दिए. उसके तहत करीबन 65,000 स्टूडेंट्स को इसमें फायदा हुआ है. वो स्टूडेंट्स ये एक्सपेंसिव टूल लेके अपनी अपने चिप डिजाइन करके, जिनका चिप अच्छा रहा उन्होंने कुछ सैंपल भी मैन्युफैक्चरिंग किए. मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा इवेंट सेमिकॉन इंडिया हुआ था 17-18-19 सितंबर दिल्ली में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने 20 स्टूडेंट्स के हाथों से 20 चिप का उन्होंने उद्घाटन किया. बताया कि ये 20 चिप जो है उन्होंने बनाया है, उनको 20 चिप समर्पित किए गए प्राइम मिनिस्टर जी को, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित किए. तो ये देखिए एक बड़ा एग्जांपल है कि स्टूडेंट के लिए उसमें काफी काम चल रहा है. दूसरी बात कि इसमें इतना बड़ा ब्रॉड इकोसिस्टम है हमारा सेमीकंडक्टर का, जिससे कि अलग अलग रुचि और योग्यता वाले लोगों के लिए अवसर है. अगर किसी की रुचि मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर में है, तो वो चिप डिजाइन क्षेत्र में जा सकते हैं. किसको व्यावहारिक काम करना पसंद है, तो वो मशीन निर्माण के लिए, रखरखाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुणवत्ता जांच मतलब टेस्टिंग के लिए अवसर तलाश कर सकते हैं. अगर किसी की रुचि विज्ञान में है, तो वो इसमें मटेरियल्स और R&D इनोवेशन उस पर भी काम कर सकते हैं. और अगर कोई आदमी उद्यमी बनना चाहता है, तो अपना उत्पाद या किसी उद्योग की समस्या का समाधान भी विकसित करते थे. तो इसमें मैं कहूंगा विद्यार्थियों को बुनियादी पढ़ाई मजबूत करनी चाहिए. पढ़ाई के और एक क्षेत्र के लिए नए नए अवसर मिल रहे हैं. कई यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने करिकुलम मॉडिफाई कर दिया है, अपडेट कर दिया है, जिससे कि सेमीकंडक्टर का काम उन्हें सीखने मिलेगा. कई यूनिवर्सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग की पायलट लाइंस का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है अभी, जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जो एक्सपीरियंस एक जरूरी होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी स्टूडेंट्स को मिलेगा. और मैं आपके आकाशवाणी द्वारा यही कहूंगा कि जितने कॉलेज और विश्वविद्यालय है, मैं उनसे कहूंगा कि वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें. सो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट कोऑपरेशन जो टॉपिक है, ये हमेशा चलते रहता है. मैं कहूंगा वो हमारे साथ काम करें, जिससे कि विद्यार्थियों को पता लगेगा कि उद्योग में वास्तव की किस कौशल की जरूरत है. और कुछ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी दी जाएगी. अब वैसे तो भारत की पास बड़ी युवा आबादी है, और इस ताकत को हम अच्छी शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण और नए विचारों के तौर अगर विकसित जोड़ दे, तो हमारे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत कार्यबल तैयार कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी.
0: डॉक्टर मेहता, आते हैं ग्लोबल लेवल पे ये समझने के लिए कि हम बना रहे हैं, हमारी अपनी डिमांड है, बट कहीं इंटरकनेक्टेडनेस की बात हुई, वी आर ऑल्सो अ रीजनल पावर. तो आपको क्या लगता है कि साउथ एशिया रीजन में भारत की जो हमने प्रोग्रेस बनाया है इस एरिया में, उसका पेस इज फास्ट इनफ कि हमें उसमें थोड़ी और गति दिखानी पड़ेगी?
2: देखिए, जो आज ग्लोबल साउथ की अगर आप बात करें, भारत ऑलरेडी अपनी लीडरशिप उसमें बनाने की कोशिश कर रहा है. डेफिनेटली हमारे साथ और भी देश हैं, जो कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है, जो कि इसमें स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत आगे चाइना हमसे है. बट द सेम टाइम जो हमने स्टेप लिए हैं पिछले कई दिनों में, क्योंकि लीडरशिप में सिर्फ आपके पास कितना आपकी बड़ी इकोनॉमी है या क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही एक चीज जरूरी नहीं है। इसमें ये भी एक जरूरी होता है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट है, क्या आपका जुडिशियल प्रोसेस है, क्या आपका जुडिशियल सिस्टम है, और आईपीआर के किस तरीके से आपके प्रोटेक्शन है। तो इन सारी चीजों में अगर आपने देखा, तो आज अगर कोई भी ऐसा देश है जब चाइना प्लस वन की बात कर रही है, तो उसमें इंडिया जो है नंबर वन उनके दिमाग में रहता है। तो इससे ये साबित होता है कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन क्रिएट जो है करी है। यही नहीं, अगर आप G20 की बात करें, हमने इतने सारे जो नए स्टेप्स लिए हैं जिसमें G20 में हमने लीड ली है, और किस तरीके से हमने कोविड के टाइम में इंडिया में सिर्फ एक वैक्सीन बनाई नहीं, बल्कि अपने कई देशों को हमने वैक्सीन दी है कोविड के टाइम में। और जब भी कहीं देश में या दुनिया में कहीं पे कोई आपदा आती है, एशिया में आपने देखा होगा कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करता है तो इंडिया करता है। चाहे आपदा कहीं पे भी आई हो, अभी नेपाल में हमने देखा आपदा आई, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें रिस्पॉन्ड किया। और जहां जहां आज कोई भी ऐसी वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, पूरे लोग जो है भारत से अपेक्षा रखते हैं कि भारत उसमें हस्तक्षेप करे। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए संभव हुआ है कि पिछले जो भी 10-12 साल में भारत ने एक जो जिस तरीके से काम किए हैं, और हमारा एक एक स्टेप है, क्योंकि एक लीडरशिप पोजीशन में हम आना चाहते हैं, और उसके लिए हमने एक पूरा जो करना चाहिए एज अ लीडर जो देश देखना चाहता है, वो स्टेप हमेशा हमने लिए हैं। और मैं समझता हूं कि आज अगर पूरी दुनिया में अगर आप ग्लोबल ट्रस्टेड पार्टनर अगर कोई है जिसमें पूरी दुनिया विश्वास करती है, वो भारत देश है। और ये करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी ऐसी हमारी डेफिनेटली हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है, और ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस टाइम जबकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस चैलेंजेस चल रहे हैं, और कोविड के बाद जिस तरीके से हमने जो कोविड के मार से जो देश उभर रहे हैं, उसमें भी सबसे पहले भारत उभरा। और इस टाइम भी जब पूरी दुनिया में कई सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, वॉर्स चल रही हैं, दो दो जंग बिल्कुल चली हुई है, तो उसमें भी भारत एक तेज गति से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उस ड्यूरेशन में भी। तो ये सब चीजें और जो हमें ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से हम एक ग्लोबल साउथ में एक लीडरशिप पोजीशन अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज भारत पे लोग विश्वास करते हैं। भारत से लोग, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जो भारत को छोड़ना चाहता है या भारत में अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाना चाहता है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले देश
0: जी
2: जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो भारत में आना चाहते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर मेहता, बहुत सुंदरता आपने कहा कि ट्रस्ट बनने में समय लगता है और बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता, और हम ये ट्रस्ट बिल्ड
2: जी
0: कर रहे हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स अशोक आपसे चाहेंगे ब्रीफली।
1: मेरा संदेश यह है कि सेमीकंडक्टर केवल चिप्स की बात नहीं है, यह भारत के भविष्य की बात है। यह उद्योग, हमारे कारखाने, हमारे अर्थव्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और नई तकनीक विकसित करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। सरकार ने नीतियां बनाई है, उद्योग निवेश कर रहा है, और भारतीय इंजीनियर दुनिया भर में चिप डिजाइन क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, उसके साथ साथ देश में नए प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी
1: हमें इस
0: बिल्कुल
1: नींव को और मजबूत करना पड़ेगा। मैं
0: एब्सोल्युटली
1: कहूंगा कि हम अभी 4C पर लगे हैं। 4C कौन से? इसमें एक है क्रेडिबिलिटी, हमारी अब क्रेडिबिलिटी स्थापित हो गई है पिछले 5 साल में जो काम हुआ है। कैपेबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी बिल्डअप हो रही है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो पार्ट 2 अभी अनाउंस हुआ उसके
0: जी
1: तहत।
0: जी जी
1: पॉलिसी कंटिन्यूटी जो सरकार का चल रहा है, सेंट्रल
0: जी
1: गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स,
0: जी
1: और कमिटमेंट ये सारे इंडस्ट्री का, तो ये
0: वंडरफुल
1: 4C के तहत हमारे न्यू मजबूत हो रही है, हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, एज अ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और सेमी इंडिया, हम
0: एब्सोल्युटली
1: सरकार के साथ में, उद्योग के साथ में हाथ
0: जी
1: मिलाकर, कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ये देश का जो जर्नी है ये बहुत
0: जी
1: जल्दी आगे एक्सेलरेट होके सफल होगा।
0: थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक चंडाक जी और डॉक्टर रंजीत मेहता हमारे कार्यक्रम आने के लिए।
2: बहुत बहुत
1: थैंक यू।
2: धन्यवाद। थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 29वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, उद्यमिता से नए भारत की अर्थव्यवस्था। इसमें भाग ले रहे थे इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रमुख अशोक चांडक और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी गौरा धवनलाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप इसे हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र।

0: श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं नए दौर के कुछ सुपरहिट गीत जो युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। शुरुआत करते हैं एक प्यारे और रोमांटिक गीत से जिसमें प्यार की मासूमियत झलकती है।
1: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
2: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
1: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
3: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
4: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में प्यार की इस मधुर शुरुआत ने दिल को छू लिया। जहाँ एक ओर सादगी भरा प्यार होता है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में थोड़ा जोश और जुनून भी ज़रूरी होता है। इसी जोश और एनर्जी को लेकर आता है हमारा अगला गीत।

0: तो श्रोताओं, आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं तक। FM 102.5 MHz एवं न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही समय में अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क

0: पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित

0: का सामना भी नहीं करना पड़ता।
1: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती, अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
3: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
2: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74,316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22,997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
2: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से साए 5 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities, also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 7.

0: 24,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है. इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी.
0: The Prime Minister said a centre of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varunastra heavyweight torpedoes, worth over 1,500 crore rupees, was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the apex court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rules. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file their petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. Early in the day, the Supreme Court issued notice to the Election Commission of India on a plea filed by Mr. Gandhi and other India bloc leaders alleging large-scale voter deletions and irregularities in the SIR process. The apex court indicated that it will examine the conduct of one of the petitioners at the next hearing. During the hearing of another case, the Supreme Court today ruled that individuals converting from Hinduism to Islam or other non-Hindu religions cannot automatically claim reservation benefits under the backward class category, dismissing the Tamil Nadu government's plea against a Madras High Court verdict. The top court held that social backwardness suffered in an antecedent caste cannot be carried forward after conversion. While hearing another case, the apex court today sought replies from the centre and the National Medical Commission on a plea seeking greater transparency in the answer key and response disclosure process for NEET PG 2026. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision or SSR of electoral rolls with 1st of January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. This is Akashwani giving you the news.
2: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
0: Welcome back. You're listening to News at 9. The government has mandated caller name display service for telecom users from the 1st of the next month. The Department of Telecommunications has directed all telecom service providers to introduce the calling name presentation service across all service areas. Under the service, the name of the caller, as recorded in the subscriber database of the originating telecom service provider, will be displayed on the recipient's phone along with the caller's number. In the case of international calls from unsaved numbers, The display will show international call. India's net direct tax collections rose 13.21% year-on-year to over 13.37 lakh crore rupees as of yesterday in the current financial year 2026-27. According to data released by the Income Tax Department today, refunds increased at a faster pace, rising to 2.65 lakh crore rupees from 2.13 lakh crore rupees a year earlier. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today expressed hope that proposed India-US bilateral trade agreement would be finalized and operationalized soon once India secured a competitive advantage over peer countries. He was addressing the inauguration of the SRCC Centenary Conclave on Pathways to Viksit Bharat in New Delhi.
3: Our 9 FTAs or BTAs that we have entered into in the last 4.5 years, most of which are operational. The New Zealand FTA will be operational from Dasera, that's on 5 days from now, on 20th October. The European Union FTA with 27 countries will become operational by February or March 2027. And the US bilateral trade agreement first tranche has been finalized soon, and operationalize that once we get comparable advantage or competitive advantage over our peer countries.
0: The government today said that India's merchandise exports to the United States rose to around $51 billion during April-September this year, despite tariff-related disruptions. Commerce and Industry Ministry said in a statement that India's total exports for September this year are estimated at $80.75 billion, registering a positive growth of 10.99% as compared to September last year. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through initiatives like Give It Up campaign.
4: The Give It Up campaign, launched by Prime Minister Narendra Modi in 2015, has encouraged consumers to voluntarily give up their LPG subsidies. Under the campaign, more than 1 crore 13 lakh LPG consumers have voluntarily surrendered their LPG subsidy. The savings help provide LPG connections to poor households under the Pradhan Mantri Ujwala Yojana, particularly benefiting rural women who relied on firewood and cow dung for cooking. The government has provided over 10 crore 56 lakh free LPG connections under the scheme to adult women from poor households across the country. Addressing the Delhi Economics Conclave in 2015, Prime Minister Modi highlighted that the Give It Up movement inspired the citizens to come together to help underprivileged families acquire clean fuel.
1: We introduced the Give It Up campaign, seeking the cooperation of the public in voluntarily giving up cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazard of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
4: The Give It Up campaign has promoted a sense of social responsibility among citizens and has supported the government's efforts to ensure clean cooking fuel access for all. With Dipendra Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
0: Moving on to weather update, rain and snowfall across Kashmir over the past 24 hours have brought a sharp drop in temperatures, with snowfall reported in higher reaches including Gulmarg, Razdan Top and Sonmarg. Our correspondent has the details.
5: Snowfall was reported from several areas across Kashmir, including Gulmarg, Razdan Top and Sonmarg. Fresh snowfall at Peer Ki Gali has led to temporary closure of Mughal Road connecting Shopian with Poonch. Authorities have urged commuters to exercise caution while travelling on the hilly roads due to slippery conditions and to follow official traffic advisories. In view of prevailing weather conditions and falling temperatures, authorities have ordered changes in school timings. Meanwhile, farmers have been advised to take precautionary measures to protect their crops and agricultural produce from adverse weather conditions. Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
0: In Himachal Pradesh, light snowfall in the higher reaches and intermittent rain in the lower areas have led to a drop in temperatures across the state. We have a report.
6: Intermittent snowfall has been occurring since this morning over the high altitude areas of the tribal district of Lahol Spiti and the higher peaks of Kullu district, including Rohtang Pass. Rainfall has also been reported in Mandi, Kangra, Chamba and the upper reaches of Shimla district. Due to snowfall in the Lahol Valley, road traffic has been suspended on the Darcha Sarchu, Darcha Shinkula and Grampu Batal routes. Traffic between Rohtang Pass and north portal of the Atal Tunnel is now being permitted only from 6 a.m. to 5 p.m. The district administration has advised tourists and local residents to check the latest official advisories before travelling to Rohtang Pass. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: The IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall over south interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal tomorrow. It said southwest monsoon has withdrawn from the entire country today. Benchmark domestic equity indices ended higher today with Sensex climbing over 2%. We have a report.
7: The Sensex surged 1,534 points or 2.11% to close at 74,316. The Nifty rose 375 points or 1.66% to settle at 22,997. The broader market at the National Stock Exchange underperformed the frontline indices. Meanwhile, in the forex market, the rupee appreciated by 10 paise to close at 95 rupees and 5 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Reshma Tiwari for Akashwani News.
0: Prime Minister Narendra Modi today expressed confidence that India is poised to emerge as a global sporting powerhouse. Mr. Modi made the remarks while interacting in New Delhi with members of the Indian contingent that participated in the 2026 Asian Games concluded in Japan earlier this month. He described the recent Asian Games as memorable for India, highlighting the outstanding performances of Indian athletes across several sporting disciplines.
1: साथियों इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड शूटिंग में शानदार प्रदर्शन बॉक्सिंग में कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल
0: India finished fourth in the medal tally at the 2026 Asian Games in Naichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals including 21 gold. The 12th session of India-Japan Joint Working Group on Roads and Road Transportation Sector was held today in New Delhi. The Ministry of Road Transport and Highways said that the meeting provided an important platform for strengthening bilateral cooperation in the road transportation sector between the two nations. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities. Also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communications satellite and Varunastra heavyweight torpedoes. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 74,316. And Prime Minister Modi interacts with India's Asian Games contingent in New Delhi, says country is poised to emerge as a global sporting powerhouse. That is all in the news at 9. Good night.
8: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नजरसानी SIR में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फहरिस्त से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्फ़ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए जीसेट 7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टॉर्पीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। हुकूमत ने अगले महीने की पहली तारीख से टेली मुवासलात सारिफीन के लिए फोन करने वाले शख्स का नाम जाहिर करना लाजिमी करार दिया है। सेंसेक्स में 2% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया और ये 74,316 पर बंद हुआ। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सतह पर खेलों की एक बड़ी ताकत बनकर उभरने के लिए तैयार है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज लद्दाख में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया और मुल्क के नाम वक्फ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि लद्दाख की तरक्की मरकज के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचा मुस्तहकम होगा, पानी की दस्तियाबी में इजाफा होगा और खित्ते के मालामाल सकाफती विरसे के तहफ्फुज में मदद मिलेगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
8: जनाब मोदी ने इन प्रोजेक्टों के आगाज को लद्दाख के तरक्याती सफर में संगे मील से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनने के बाद से इसकी तरक्याती जरूरियात पर खसूसी तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम ने लद्दाख के सियाहत के शोबे में बढ़ते हुए इम्कान को भी उजागर किया और कहा कि रोजगार के मौके पैदा करने और मकामी मईशत को बढ़ावा देने के लिए मौसम सरमा और मुहिमजुई से मुतालिक सियाहत को फरोग दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
8: सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के दीगर रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च निकालने से मुतालिक अर्जी पर नोटिस जारी किया है। ये अर्जी उनके एहतजाजी मार्च पर तशवीश जाहिर करते हुए दायर की गई है। ये अर्जी अदालत की रजिस्ट्री में 12 अक्टूबर को दाखिल की गई थी। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दीगर फरीकों को नोटिस जारी किए। ये अर्जी 4 वकीलों की जानिब से 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एहतजाजी मार्च के खिलाफ दायर की गई थी। अर्जी गुजारों ने अदालत के इहाते में सियासी मुजाहिरों पर पाबंदियां आयद करने की दरखास्त की थी। इंतखाबी कमीशन ने 17 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को वोटर फहरिस्त की खसूसी मुख्तसर नजरसानी करने की हिदायत दी है। इसके लिए अगले साल 1 जनवरी अहलियत की तारीख मुकर्रर की गई है। इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में अंडमानों निकोबार जजायर, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरलम, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी मुख्तसर नजरसानी के अमल की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जहां वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी का अमल अभी जारी है या हाल ही में मुकम्मल हुआ है। इंतखाबी कमीशन ने अपने खत में कहा है कि उसने 29 सितंबर को हिदायत जारी की थी जिनके तहत वोटर फहरिस्त में उन अफराद के नाम दर्ज करने के लिए खसूसी मुहिम चलाई जानी थी जिनके नाम अब तक शामिल नहीं किए गए हैं। इस मुहिम का मकसद नौजवानों और पहली मर्तबा वोट देने के अहल अफराद को भी वोटर फहरिस्त में शामिल करना है। वजारत दिफा ने आज 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। इन मुआहिदों का मकसद भारतीय फजाइया के लिए मखसूस मुवासलाती सैटेलाइट G-SAT-7C और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारतीय टोरपीडो हासिल करना है। G-SAT-7C की खरीदारी के लिए 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआहिदा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु के साथ किया गया है। इसके अलावा वरुणास्त्र की खरीदारी के लिए हैदराबाद की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का मुआहिदा किया गया है। वरुणास्त्र एक मकामी तौर पर तैयार करदा और जहाज से दागे जाने वाला आबदोश शिकन टोरपीडो है, जिसे नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज ने तैयार किया है। जदीद समत बदलने की सलाहियत से लैस ये टोरपीडो दूरी से दुश्मन की आबदोजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस तरह ये भारतीय बहरिया की जंगी सलाहियत को मजीद मजबूत बनाता है। हुकूमत ने आइंदा माह की पहली तारीख से टेलीफोन सारिफीन के लिए कॉल करने वाले के नाम को जाहिर करने की सर्विस लाजिमी करार दी है। टेलीमुवासलात के महकमे ने तमाम टेलीमुवासलात सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों को हिदायत दी है कि वो 1 नवंबर से सर्विस के तमाम इलाकों में कॉल करने वाले शख्स के नाम को जाहिर करने की खिदमत CNAP मुतारिफ कराएं। इस सर्विस के तहत कॉल करने वाले शख्स का नाम जो टेलीमुवासलात खिदमत फराहम करने वाली कंपनी के सारिफीन से मुतालिक डेटाबेस में दर्ज होगा, कॉल मौसूल करने वाले शख्स के फोन पर कॉल करने वाले के नंबर के साथ दिखाई देगा। गैर महफूज शुदा नंबरों से आने वाली बैनुल अक्वामी कॉलों की सूरत में स्क्रीन पर इंटरनेशनल कॉल जाहिर होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि सब्सिडी छोड़ने की मुहिम जैसे इकदामात के जरिए इस नजरिए को किस तरह हकीकी शक्ल दी जा रही है।
9: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में LPG सब्सिडी छोड़ने की मुहिम गिव इट अप शुरू की थी, जिसके तहत सार्फीन को रजाकाराना तौर पर अपनी LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की तरगीब दी गई थी। इस मुहिम के तहत 1,13,00,000 से ज्यादा LPG सार्फीन ने रजाकाराना तौर पर अपनी गैस सब्सिडी छोड़ दी। इससे होने वाली बचत को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब कुंभों को LPG कनेक्शन फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस स्कीम से खास तौर पर देही इलाकों की उन खवातीन को फायदा पहुंचा जो खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपयोग पर इन्हिसार करती थीं। हुकूमत ने मुल्क भर में गरीब कुंभों की बालिग खवातीन को इस स्कीम के तहत 10,56,00,000 से ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन फराहम किए हैं। 2015 में दिल्ली इक्तसादी कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा था कि गिव इट अप तहरीक ने शहरियों को पसमादा कुंभों की मदद और उन्हें माहौलियात के लिए साजगार ईंधन फराहम करने के लिए मुत्तहिद होने की तरगीब दी।
1: We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazard of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
9: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने कहा कि गैस के चूल्हे ने खाना पकाने के अमल को काफी आसान बना दिया है और उन्हें धुएं की मुजर असरात से निजात मिली है।
10: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती हूं। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
9: LPG सब्सिडी छोड़ने की मुहिम ने शहरियों में समाजी जिम्मेदारी के एहसास को फरोग दिया है और सभी लोगों को माहौलियात के लिए साजगार ईंधन फराहम करने की सरकार की कोशिशों को तकवीत बख्शी है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
8: आज शेयर बाजार में काफी तेजी रही। घरेलू हिस्स इशारिया जबरदस्त इजाफे के साथ बंद हुआ। पेश है एक रिपोर्ट।
11: सेंसेक्स 1534 पॉइंट्स यानी 2.11% के इजाफे के साथ 74,316 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 375 पॉइंट्स यानी 1.66% इजाफे के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नई दिल्ली से आयुषी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
8: पाकिस्तान के शहर पिशावर में आज एक प्राइवेट स्कूल की छत मुनहदिम होने के वाके में 34 बच्चों और एक टीचर की मौत हो गई। पिशावर कैपिटल सिटी पुलिस के सरबराह मियां सईद ने कहा है कि ये वाकया शहर के अंदरूनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाके दीर कॉलोनी में पेश आया। अल खैर स्कूल की छत जिस वक्त मुनहदिम हुई उस वक्त ऊपरी मंजिल पर वाके क्लासरूम्स में 30 तालिबे इल्म मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि 3 मंजिला इमारत की छत सही तौर पर तामीर नहीं की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत खेलों का एक आलमी पावर हाउस बनने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने एशियन गेम्स के फातिहीन की सताइश की और कहा कि उन्होंने तिरंगे को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की हुसूलियाबियों से जोश इस्तेकलाल और यकीन की अक्कासी होती है।
1: साथियों इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
8: एशियन गेम्स में तारीखी संग मील को याद करते हुए वजीर आजम ने मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों की जानिब से सोने का तमगा जीतने का जश्न मनाया। खवातीन हॉकी टीम की जीत से 44 साल का इंतजार खत्म हुआ है। नौजवानों की उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया, नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खटसे के अलावा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा भी इस मौके पर मौजूद थीं। जापान के आईची नागोया में मुनाकिद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू मजहब से इस्लाम या किसी दूसरे गैर हिंदू मजाहिब में तब्दील होने वाले अफराद खुदकार तौर पर पसमानदा तबकात के जुमरे में रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत आलिया ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि किसी शख्स को उसकी साबिका जात की बुनियाद पर हासिल समाजी पसमानदगी का फायदा मजहब तब्दील करने के बाद बरकरार नहीं रह सकता। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फेरिस्ट की खसूसी जामे नजरेसानी में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फेरिस्ट से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हस्फ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए GSAT-7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टोरपीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
12: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

सात सुरों के इस हसीन सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, गीतों के रंग, स्वरों की भाषा पर अगर हम सोचें तो कभी लगता है कि स्वर एक आराम है, एक सुकून है, और कभी लगता है कि स्वर प्यार है, इकरार है और इजहार भी। लेकिन होता है ना कई बार कि कोई गीत बेहद खूबसूरत सा, लेकिन आपके भीतर वो एक बेचैनी सी पैदा करता है। सोचा है कभी आपने ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस वक्त आपके जो मन की रफ्तार है, आपके ख्यालों की जो रंगत है, वो उससे नहीं मिलती, इसलिए वो गीत आपके भीतर एक बेचैनी पैदा करता है। और गीत आप वही गुनगुनाते हैं जो आपके ख्यालों से बातें करता हो, आपके मन के साथ चलता हो। तो आज की रात कुछ गीत हम चुन लाए हैं खास आपके लिए, इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई गीत जरूर आपके एहसासों के करीब से गुजरेगा, आपसे आपकी अपनी बात कहेगा और आप उसे गुनगुना उठेंगे।

सोते जागते एक ही ख्वाब की दस्तक पर जिंदगी पलटती है बार बार। चांद एक कविता हो जाता है, हवाएं स्वरमालिका, और बज उठता है भीतर कहीं जिंदगी का राग।

एक नजर की रोशनी जो उतरी भीतर, एहसास है सोना सोना कि भीतर ही सुबहों का जागना है, भीतर ही शामों का गुनगुनाना है, भीतर ही फूलों का खिलना है, भीतर ही तितलियों का मंडराना है, एक मौसम का ठहर जाना है भीतर तेरा होना। हाँ, तेरा होना है भीतर कहीं एक मौसम का ठहर जाना।

दो नजरों के बीच एक चुप सा राग बहता है, दो नजरों के बीच एक चुप सा राग बहता है, तुम कहो ना कहो वो दिल का हाल कहता है।

तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहां तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का भी, धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का भी और चांद के मुस्कुराने का भी। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है।

साथ एक सुकून है, साथ एक सपना है, साथ से संगीत है, जीने की रीत है, साथ है तो समाधान है, साथ है तो मुस्कान है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

फिल्मी गीतों के सुहाने से सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुनीता सिंह है। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप तक भेजती हूँ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गीतों में मन का संसार सजता है, हमारी खुशियों ख्वाहिशों का इजहार सजता है। गीतों में कभी साझा सपनों का इंतजार सजता है, आंसू और मुस्कान लिए जीवन का प्यार सजता है। इसीलिए तो गीतों की दुनिया में हमारा आना जाना है। यहाँ एहसास के मोती हैं, चाहतों की खुशबू है, सुरों के दरिया से मन की गुफ्तगू है। तो चलिए, आज आपके पसंदीदा गीतों के इसी हसीन संसार में आपको लिए चलती हूँ। कुछ गीत जीवन के आपको सौंपती हूँ। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में है। राजा मेहदेली खान ने इसे लिखा है, संगीत मदन मोहन का है, फिल्म का नाम है वो कौन थी, और अनुरोध आप सबका है। मोटका माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। पटेल नगर मलोट पंजाब से इसी गीत को

पसंद करते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया। और ये खत आया हुआ है जिला 12 राजस्थान से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव।

आपकी फरमाइश का अगला गीत धर्मपुत्र फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज़ है, बोल साहिर लुधियानवी के और धुन एन दत्ता की। पसंद आप सबकी है। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज, मधु, राशि, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वेटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र, रविंद्र, सनी, मुन्ना और बड़ू दादा जलगांव से। सात रंगों के शामियाने हैं, दिल के मौसम

कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। ये खत आया हुआ है प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और ये चिट्ठी आई है छत्रपति संभाजी नगर से। श्रोताओं के नाम हैं राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है असली नकली। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है ये, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए हलाकू फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने। पसंद आप सबकी है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। और पालदा नाका इंदौर से इसी गीत को पसंद करते हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी, मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी। आहटें सुन रहा हूँ यादों की, आज भी अपने इंतज़ार में गुम।

कार्यक्रम का अगला गीत आशिक फिल्म से हमने लिया है। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का है और आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं। अनुरोध आप सबका है, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। छत्तीसगढ़ से दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिमरिया से दुर्गा राम साहू और सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान योगेश और उनके परिवार के सभी सदस्य। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगता है, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगता।

चेहरा। खामोशी फिल्म का गीत है किशोर कुमार की आवाज में, जिसे सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये और राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और बेबी प्रियांशी यवतमाल से। गुजर गई है मगर रोज याद आती है वो एक शाम जिसे भूलने की हसरत है।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं पारस मणि फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार इंदिवर और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अनुरोध आप सबका है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया, और हरिद्वार से ताज मोहम्मद।

अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। रोशनी फूट निकली मिसरों से, चांद को जब से गजल में सोचा है।

श्रोताओं, ये थे वो गीत जिनसे आपके दिल की दोस्ती है, जिनका साथ आपकी उदासी कम कर देता है और खुशियां दुगुनी कर देता है। तो इन नगमों से दोस्ती बनाए रखिए ताकि जिंदगी खूबसूरत बनी रहे। वैसे हमारा वक्त भी आपकी फरमाइश के साथ गाते गुनगुनाते बहुत ही खूबसूरत सा बीता। तो यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी फरमाइशें हम तक भेजते रहिए, इसी वादे के साथ कि हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। अब इजाज़त दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को, फिर मिलेंगे।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ऋषभ मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग। विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपके साथ संगत की है रामेंद्र सिंह सोलंकी ने।

0: राग रजनी। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋषभ मलिक का वायलिन पर बजाया राग जोग। तबले पर संगत की थी रामेंद्र सिंह सोलंकी ने। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोट

0: जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस क्षेत्र में कल प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में डीसीपी नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The contract for the GSAT-7C satellite, valued at over 2,500 crore rupees, was signed with New Space India Limited, Bengaluru. The contract for Varunastra heavyweight torpedoes worth over 1,500 crore rupees was signed with Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. The ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The Supreme Court has issued notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other India bloc leaders on a petition raising concerns over their march to the Apex Court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court and entered the court registry on 12th of this month to file the petition amid protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner over alleged SIR irregularities. It also issued notices to Congress leader Mallikarjun Kharge, Samajwadi Party, TMC MP Mahua Moitra, the the Kerala Pradesh Congress Committee. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. During the hearing of another case, the Supreme Court today ruled that individuals converting from Hinduism to Islam or other non-Hindu religions cannot automatically claim reservation benefits under the backward class category. Dismissing the Tamil Nadu government's plea against a Madras High Court verdict, the top court held that social backwardness suffered in an antecedent caste cannot be carried forward after conversion. The Election Commission has directed 17 states and union territories to conduct a special summary revision (SSR) of electoral rolls with 1st January next year as the qualifying date. These states and union territories are Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand and West Bengal. The government has mandated caller name display service for telecom users from the 1st of the next month. The Department of Telecommunications DOT has directed all telecom service providers to introduce the calling name presentation CNAP service across all service areas from 1st of November. Under the service, the name of the caller as recorded in the subscriber database of the originating telecom service provider will be displayed on the recipient's phone along with the caller's number. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said globalization cannot be reversed but must be navigated with greater resilience. He also highlighted the India-Middle East-Europe Economic Corridor IMEC as an initiative that is already shaping regional thinking on connectivity. He made these remarks during a discussion on the Continental Corridors Who Connects the Heartland at the Raisina Middle East event in Abu Dhabi. Prime Minister Narendra Modi today expressed confidence that India is poised to emerge as a global sporting powerhouse. Mr. Modi made the remarks while interacting in New Delhi with members of the Indian contingent that participated in 2026 Asian Games concluded in Japan. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट